एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनिएगा हिंदी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

0: रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये मानव जन्म हमें ईश्वर का नाम लेने के लिए ही मिला है। कहा जाता है कि कलयुग में केवल प्रभु नाम संकीर्तन से ही जीवन सफल हो सकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नहर उतर ही पारा। इसीलिए हमें हर पल हर क्षण अपने जीवा से अपने मन में केवल ईश्वर नाम का स्मरण करना चाहिए।

हमें ईश्वर का दर्शन हो सकता है अपने भीतर, अपने मन में, आत्मा में, लेकिन उसके लिए हमें अपने मन को साफ करना होगा। अगर मन पर विकारों का पर्दा पड़ा रहेगा तो ईश्वर दर्शन संभव नहीं। उसके लिए हमें लोभ, मोह, मद, अहंकार से दूर रहकर अपने मन को साफ करके भीतर निहारना होगा, तभी हमें ईश्वर का दर्शन संभव है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान। संगीत दिया है सतीश भाटिया ने और प्रस्तुति स्वर श्रीकांत पर गाव करके है।

देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें, ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थीं कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है, और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, आज मंगलवार है, विक्रमी संवत 2083 के अधिक पुरुषोत्तम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई आज के दिवस की, और आइए अब सुनते हैं ये देशगान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।
3: श्रोताओं, अभी इन संदेशों से पहले आपने सुना देशगान। FM बैंड 101.4 MHz पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

शाम 6:20 मिनट पर गीता संदेश के अंतर्गत सुनिएगा श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक 24 से 27 की व्याख्या। प्रस्तुति डॉक्टर विशंभर दास की रहेगी। आप सभी श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित कार्यक्रम आपकी बात होगा शाम 7:30 मिनट पर। युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:30 मिनट पर, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की। शाम 6:30 मिनट पर समय रहेगा कार्यक्रम किसानवाणी का, और शाम 7 बजे सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम संसार।

गीत संगीत और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सवेरे होगा सुबह 8:30 पर, जिसमें आज आपको जानकारी देंगे विश्व निष्पक्ष खेल दिवस की और साथ ही जानकारी सुनिएगा नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर। कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र हम लाएंगे सुबह 10:00, जिसमें आज आपसे बातचीत करेंगे स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन पर, साथ ही आपको जानकारी देंगे औषधीय गुणों से भरपूर है गाय का दूध विषय पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। हरियाणवी लोकगीतों के कार्यक्रम बाजे नगाड़ा का समय रहेगा सुबह 7:40 पर। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनिएगा शाम 5:05 पर। और रात्रि 8:00 होगा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। रात्रि 10:00 हम लाएंगे कार्यक्रम चांदनी रातें। तो श्रोताओं, ये थी हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 हुए जाते हैं। अब आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार, 7:00 होंगे हिंदी में समाचार और 7:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिनका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष

0: ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षा वन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
3: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
3: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं
3: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
3: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है
2: जी,
3: और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
3: तो श्रोताओं एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है
2: जी।
3: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है
3: जी।
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते
2: जी।
3: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं बिमलेश जी से।
2: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
3: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो
2: जी,
3: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
2: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
3: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
2: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
3: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
4: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: वो जग गया।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं।
3: गुब्बारे
1: गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
4: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
5: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
6: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
5: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
4: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
4: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
6: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
4: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
7: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
8: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
7: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
8: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
7: आप तो काम करती है ना?
8: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
7: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
9: नहीं करने देंगे।
10: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
2: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
2: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
5: गौरमा, गौरमा,
11: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
5: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
11: कौन लोग आ रहे हैं?
5: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
11: हाँ,
5: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
11: क्या?
5: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
11: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
12: हाँ गौरमा, हाँ गौरमा,
11: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
13: बिल्कुल,
11: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
12: हाँ, हाँ, हाँ, सब तैयार हैं।
13: हाँ,
12: हाँ,
13: हैं। किसी
12: भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
13: नहीं कटने देंगे।
5: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ओज था।
14: ये है जंगल के उपकार,
15: मिट्टी पानी और बयान,
14: मिट्टी पानी और बयान,
15: जिंदगी के आधार।
2: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
16: अरे
17: क्या
16: कर रहे हो?
17: भूखे ताक रहे हो?
16: अरे क्या कर रहे
17: हो? अरे क्या कर रहे
16: हो?
17: शुरू
16: करो।
17: अरे
16: अरे भाई कौन है? रुको, इस
17: अब चल जाएंगे पेड़ से।
11: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
17: सुनो, आगे बढ़ो।
16: अरे कहां से
17: तुम इनकी बातों में बताओ? मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू,
16: कहां पे छिपक जाएंगे? छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
11: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे आज।
5: नहीं लगाने देंगे
11: बहनों।
5: आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
10: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
17: ठीक है तो वहां चलो, उन पेड़ों में जाओ, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
2: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
17: ठीक है तो वहां चलो, अरे उन पेड़ों में काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
2: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
2: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
13: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहां से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहां के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बावला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्माण सहायक कुसुम लता। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। इस समय सुबह के 7:40 हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा, जिसमें हमारे आज के कलाकार हैं राजबीर।

और राम राम रटते रहो भाई जब तक घट

0: है रेडियो आकाशवाणी।
1: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम बाजे नगाड़ा। हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनिएगा हिंदी में समाचार। 8:15 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। कृपया अनुप्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार,
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।
0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत ईएफटीए समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते टीईपीए के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
2: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
3: Recognizing the ambitious
4: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज

0: निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $19 अरब है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
3: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है, ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
7: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
8: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी पांच नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic Summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under and the consequent creation of 1 million jobs in India.
10: एफ्टा कंट्री से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 billion इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, ये हमारी गारंटी है।
9: Mr. Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy.
10: 2030 तक हमने 500 gigawatt clean energy और 5 million ton green hydrogen produce करने का target रखा है। Green energy investment नॉर्वे वेल्थ फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
9: The summit was also attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. Earlier, in a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. On Prime Minister's visit to Norway, Secretary West in the Ministry of External Affairs C.B. George said that India welcomes the decision by Norway to join the Indo-Pacific Oceans Initiative, as both the countries are leading maritime nations.
11: Recognizing the ambitious maritime Amrit Kaal Vision 2047 of India, both leaders have called for scaling up the blue economy partnership, including in shipbuilding, green shipping, ship recycling, developing port infrastructure, training of seafarers, fisheries, aquaculture, and greening of ports.
9: Prime Minister Narendra Modi will attend the third India-Nordic summit today in Oslo, aimed at strengthening India's strategic partnership with Nordic nations in areas such as technology, renewable energy, defense, sustainability and trade. We have more from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi, along with his counterparts from five Nordic countries, will attend the third India-Nordic summit today. This summit will build upon the increased sectoral cooperation between India and the Nordic countries since the previous summit held in Copenhagen in 2022. The areas in focus are tech and innovation, sustainability, renewable energy and digitization. With TEPA in force, the summit will try to forge deeper trade and investment linkages. India's bilateral trade with this bloc currently stands at $19 billion. This summit will help in expanding our multifaceted cooperation with the region. It will also provide an opportunity to exchange views on global and regional issues of mutual interest. Prime Minister Modi will also hold bilateral meetings with the Prime Ministers of Denmark, Iceland and Finland on the margins of this summit. Sangeeta Godbole, Akashvani News, Oslo.
9: On the last leg of his five-nation visit, Prime Minister Narendra Modi will arrive in Rome, Italy on a two-day state visit today at the invitation of his Italian counterpart Giorgia Meloni. Prime Minister Modi will have bilateral talks with Prime Minister Meloni. He will also call on the President of Italy, Sergio Mattarella. Mr. Modi is scheduled to hold talks with business leaders to further promote trade and investment between the two countries. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no first use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda held high-level bilateral meetings with counterparts and representatives from Thailand, Iran, the Netherlands, Sweden and Mauritius. The meeting was held on the sidelines of the 79th World Health Assembly in Geneva yesterday. In a social media post, Mr. Nadda said the discussions focus on strengthening cooperation in digital health, pharmaceuticals, resilient public health systems and advancing universal health coverage. Health Minister Nadda is currently in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly, which began yesterday and will continue till the 23rd of this month. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download news on AIR app. Judges Inquiry Committee investigating allegations concerning Justice Yashwant Verma submitted his report to the Lok Sabha Speaker Om Birla at the Parliament House. It was presented in accordance with the statutory requirements under the Judges Inquiry Act 1968. We have a report.
12: The committee was constituted on August 12 last year by the Lok Sabha Speaker to inquire into allegations against former High Court Judge Justice Yashwant Verma. The report will be laid in both Houses of Parliament in due course. Presiding Officer of Judges Inquiry Committee, Supreme Court Judge Justice Arvind Kumar, along with Chief Justice of Bombay High Court Justice Sri Chandrasekhar and Senior Advocate Karnataka High Court B.V. Acharya, presented the report of Judges Inquiry Committee to Mr. Birla. With Anand Kumar, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
9: The West Bengal government has sanctioned the Enforcement Directorate ED to prosecute Sandeep Ghosh, former principal of RG Corps Medical College and Hospital. The official government order released by the Chief Minister Subhendu Adhikari clears the deck for ED to prosecute Ghosh for alleged financial irregularities and money laundering. Expressing strong disapproval of the previous Trinamool Congress-led government in handling of the situation, Mr. Adhikari said that the TMC government had forcibly and unethically stalled the investigation process of this case for a long time. He said that no one is above the law and truth cannot be suppressed forever. The case also pertains to the rape and murder of a trainee doctor whose body was discovered on the 9th of August in 2024 in the hospital's seminar room, triggering widespread protest. Meanwhile, Central Bureau of Investigation, CBI, later took over the probe. Union Home Minister Amit Shah will chair the meeting of the Central Zonal Council today in Jagdalpur, the divisional headquarters of Bastar in Chhattisgarh. The meeting will be attended by the chief ministers and senior officials of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand. Later, Mr. Shah inaugurated a public service center at Netenar village in Bastar district yesterday. We have more from a correspondent.
6: Union Home Minister Amit Shah said the government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, will compensate for the large-scale economic, social and cultural losses suffered by the people of Bastar due to nationalism over the past six decades within the next 5 years. He said that out of nearly 200 security camps set up in Bastar division, around 70 camps will be converted into public service centers over the next 1.5 years and developed as hubs for tribal welfare. Mr. Shah said these service centers will provide facilities related to banking, Aadhaar, ration cards, skill training and all welfare schemes of the central and state government. Vikalp Shukla, Akashwani News, Raipur.
9: Government has debunked a claim circulating online alleging that the government is going to issue gold bonds to temples in exchange for temple gold reserves. The fact-check unit of the Press Information Bureau stated that the claim is fake. It added that the government has not made any such statement. The PIB has advised citizens to stay away from fake claims and always refer to official sources only for verified information. U.S. President Donald Trump has said that he is holding off a planned military strike on Iran after requests from the leadership of Qatar, Saudi Arabia and the UAE, as serious negotiations are now underway. In a post on Truth Social, the U.S. President said he had been asked by the Emir of Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud and UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan to postpone the strike which was scheduled for today. President Trump said a deal acceptable to the United States and countries across West Asia could soon be reached. He added that the proposed agreement would ensure that Iran does not possess nuclear weapons. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Chennai Super Kings by 5 wickets in Chennai last night to secure a playoff berth. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs, with Karthik Sharma being the highest scorer with 44 runs. In reply, Sunrisers Hyderabad overhauled the target, losing 5 wickets in 19 overs, riding on Ishan Kishan's 70 and Henrik Klassen's 47 runs. Ishan Kishan was declared the player of the match. Today, Rajasthan Royals will face Lucknow Super Giants in Jaipur at 7:30 p.m. The India Meteorological Department IMD has forecast severe heat wave conditions today at places over Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. Hot and humid weather conditions are expected to persist during the day over coastal Andhra Pradesh and Odisha. Rajasthan, Bidarb and West Uttar Pradesh are expected to experience hot night conditions tonight. The weather agency also forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Thunderstorms and lightning are likely today over Bihar, Gangetic, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Telangana, Jammu and Kashmir and some parts of Northeast India. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
13: Thank you, Abhishek. Modi, the first Indian Prime Minister to visit Norway in more than 4 decades, is covered prominently by the dailies. Prime Minister urges peace in Ukraine, West Asia leads the pioneer. While the statesman leads with Prime Minister Modi, pushes tech, green ties in Norway. The Indian Express carries the picture of PM Modi receiving Norway's highest honour. The caption under the picture reads, PM Narendra Modi with King Harald V as he is conferred the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit in Oslo on Monday. The Economic Times in its editorial, Bringing It All Back Home, writes that the repatriation of 1,000-year-old Chola copper plates from Leiden University during Narendra Modi's visit to the Netherlands last weekend is a welcome assertion of India's proprietorial sovereignty. Excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy. The return of Chola plates mirrors that of Piprava, Buddha relic gems and restitution of 657 stolen antiquities from from the United States. UPSC to release prelims provisional answers, reports Hindustan Times. About the UPSC to release the answer key soon after prelims exams to enhance transparency and uphold the highest standards of to conduct the examination. Arun Rai runs over away with PGA Championship, first English-born winner in more than a century, states a pioneer. And finally, India's bullet train dream inches closer to reality. The Financial Express says project is being executed with assistance from the government of Japan. And with that, it's back to you, Abhishek.
14: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again.

श्रोताओं, गीत संगीत और जानकारियों का कार्यक्रम सुबह सवेरे आज आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं अनुराधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो जी हाँ श्रोताओं, आप भी तैयार हो गए हैं ना हमारी ताल से ताल मिलाने के लिए। जी हाँ, बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम गीत संगीत के साथ ताल मिलाते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, और उसी मन की खुशी के लिए आपके लिए ये खूबसूरत गीत।

जी हाँ श्रोताओं, हमें भी तो जीवन के ताल से ताल मिलानी है। कभी सुख होंगे, कभी दुख होंगे, कभी परेशानियाँ होंगी, कभी नाराजगी होगी, कभी गुस्सा होगा। इन्हीं सभी बातों को दरकिनार करते हुए जब हम जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पकड़ लेते हैं ना, तब जीवन के ताल से ताल मिल जाती है। और यही गुर, यही सीख हमें जीवन में आनी चाहिए। तो भाई अब बिना देरी किए हमारे श्रोताओं से हम आज का प्रश्न पूछ लें। तो भाई श्रोताओं, आज आपको बताना है कि जो ये बहुत से नए नए आविष्कार रोजाना होते रहते हैं ना, कुछ नया, कुछ रोमांचक इस संसार में बनाने के लिए, करने के लिए जद्दोजहद चलती रहती है ना, उसमें एक होता है कैंटीलीवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज। इसके बारे में ही आज आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा कैंटीलीवर ग्लास स्काई वॉक कहाँ उद्घाटित किया गया है। हमारे इस आसान से प्रश्न का जल्दी से दीजिए जवाब और बन जाइए कार्यक्रम सुबह सवेरे में हमारे साथ ही। नियम आप सभी जानते हैं कि आपको केवल एक बार SMS करना है और SMS में केवल 3 नाम भेजिएगा और अपनी जगह का नाम भेजिएगा, शहर का नाम भेजिएगा, गांव का नाम भेजिएगा और भेज दीजिए हमारे नंबर 9460211336 पर कि भारत का सबसे लंबा कैंटीलीवर ग्लास स्काईवॉक कहां पर, किस राज्य में स्थित है।

भाई हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि हमारे प्रश्न का जवाब देने का तरीका माध्यम होता है हमें टेक्स्ट मैसेज करना 94-660-21-336 पर। तो जो श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं कृपया कॉल ना लगाएं, हमें केवल एसएमएस करके ही आज के प्रश्न का सही जवाब दीजिए। प्रश्न आपको एक बार फिर से बता देते हैं, आज आपको बताना है कि कैंटिलीवर स्काईवॉक जो ब्रिज है वो कहाँ बनाया गया है, इसके बारे में आपको हमें इसका राज्य बताना है, और जल्दी से भेज दीजिए हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब।

श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में विषय। श्रोताओं, कहते हैं कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, यानी जब हम कोई भी खेल खेलें तो उसमें हमारी भावना वैसी ही होनी चाहिए। हमें दूसरों के लिए दुर्भावना नहीं आने देना चाहिए, किसी तरह के पक्षपात से बचना चाहिए, और इसीलिए मनाया जाता है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस। जी हाँ, इसे मनाया जाता है हर वर्ष 19 मई को, यानी आज का दिवस जो है वो विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, वर्ल्ड फेयर प्ले डे के नाम से जाना जाता है। और इस दिन को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 में घोषित किया गया था।

और इस पहली दिन का आयोजन हुआ था 19 मई 2025 को। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि विश्व निष्पक्ष खेल दिवस, और इसको मनाए जाने का उद्देश्य है कि खेल को खेल की भावना से खेला जाए, खिलाड़ियों के बीच किसी भी वैमनस्य या फिर कहें कि दुर्भावना का प्रचार ना हो, वो अच्छे से खेल को खेलें, मनों में किसी प्रकार की दूरियां ना आए, समाज में और खेलों में मित्रता, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेश और गैर भेदभाव की भावना जो है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनका बढ़ावा हो, और इसी के लिए इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी। श्रोताओं, कहते हैं कि खेल से जो आपसी रिश्ते हैं वो मजबूत होते हैं, उसका उद्देश्य किसी भी खेल का यही होता है, और इसका जो उद्देश्य है वही परिणाम में परिणित भी होना चाहिए, तभी तो ये दिवस सार्थक हो सकेगा। श्रोताओं, खेल में हार जीत की भावना से परे होकर ही खेल की भावना को खेला जाना चाहिए, और यही खिलाड़ियों के नैतिक आचरण को भी दर्शाता है, और इसीलिए आयोजन समिति जो कि राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल समिति है, वो इस दिन का आयोजन करती है, जिससे पूरे देश दुनिया में आज के दिवस को खेल निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी और दे दें तो अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल दिवस, जिसे खेल समिति, जिसे संक्षेप में CIFP या फिर IFPC भी कहा जाता है, यानी कमेटी इंटरनेशनल प्योर फेयर प्ले डे, और इस एक गैर लाभकारी और अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल की भावना को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, ये इसका प्रचार और प्रसार करता है इस दिवस का, ताकि खेल की भावना को अच्छी तरह से खेला जा सके और खिलाड़ियों के बीच इस भावना को मजबूत किया जा सके, जिससे समाज और देश दोनों को मजबूती मिले। तो श्रोताओं, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हमें किसी भी खेल को निष्पक्ष होकर खेलना चाहिए, चाहे कोई खिलाड़ी हमसे थोड़ा आगे निकले या फिर कोई खिलाड़ी हार जाए और हम जीत जाएं, या फिर हम हार जाएं, दूसरे खिलाड़ी जो हैं टीम हैं वो जीत जाएं, तो भी हमारे बीच किसी तरह की वैमनस्य या फिर दुर्भावना को नहीं आने देना चाहिए, और हमें इस दिन को सार्थक करने की ज़रूरत होती है। और अगर हमारे आसपास, भाई खिलाड़ी तो हम सभी होते हैं, कुछ ना कुछ जीवन में हम ज़रूर खेलते हैं, है ना, तो ये रिश्तों की मजबूती को अगर दर्शाए जाने का दिन है, तो हमें इसे मजबूती से मनाए जाने के लिए, समाज में अच्छी भावनाओं को प्रेरित करने के लिए ये दिन मनाया जाना चाहिए। और अगर नन्हे बच्चे हैं तो उनके बीच तो इस निष्पक्ष खेल की भावना को ज़रूर बीज इसका बोना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो बड़े होते होते होते समाज के लिए कुछ अच्छा योगदान करने के लिए ही तैयार हों, और इन्हीं सभी भावनाओं को हमें जो अच्छे निष्पक्ष रूप से मनाए जाने का है, उसे मनाने के लिए ही प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये जानकारी थी आज के दिवस की, और अब आइए फिर से कार्यक्रम को मनोरंजन की दुनिया में लिए चलते हैं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, आज कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे जो प्रश्न किया था, अब उस प्रश्न का सही जवाब बताने का समय हो चला है। तो आइए आपको बताते हैं प्रश्न का सही जवाब। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमने आपसे प्रश्न किया था कि भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक कहाँ और किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है विशाखापट्टनम। जी हाँ, विजाग यानी विशाखापट्टनम के कैलाश गिरी की पहाड़ी पर स्थित है और ये है आंध्र प्रदेश में। और ये भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक है और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको दे देते हैं। तो श्रोताओं, ये भारत का सबसे लंबा कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कैलाश गिरी पहाड़ी पर स्थित है और ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है और ये रोमांच देने वाला भी है, हम यूँ कहेंगे, क्योंकि यहाँ से शहर और बंगाल की खाड़ी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। श्रोताओं, विशाखापट्टनम के कैलाश गिरी हिल टॉप पार्क पर विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा भारत के सबसे लंबे कैंटिलीवर ग्लास स्काईवॉक को शुरू किया गया है और ये 862 फीट यानी करीब 262 मीटर ऊंचा है और यहाँ से शहर और बंगाल की खाड़ी का खूबसूरत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। श्रोताओं, यहाँ 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज़ हवा को भी सहन किया जा कर सकता है ये, और सुरक्षा के लिहाज से इसमें बहुत मजबूत टफेड ग्लास लगा हुआ है जिसकी क्षमता 100 से अधिक लोगों को के भार को सहन करने की है, लेकिन एक बार में 40 लोग इससे जा सकते हैं। तो आप भी ज़रूर कभी मौका लगे तो इसको देखने का कभी कोई विचार को योजना बनाइएगा, क्योंकि हमारे शहर में, हमारे देश में अगर ऐसी खूबसूरत जगह है तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। और अब बता देते हैं आपको उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमारे आज के प्रश्न का सही जवाब हमें भेजा है। तो भाई, सबसे पहले हमें सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सही जवाब हमें सबसे पहले भेजा है हमारे श्रोता दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदीप येले ने। फिर हमारे पास सही जवाब आया धूलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े, दीपमाला कवाड़े का। और सही जवाब भेजा है आपने दंत्रेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा ने। ढानी कुतुबपुर जिला हांसी से हैं रामधारी अवाना, अनाया अवाना और ओजस अवाना। सही जवाब दिया है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन और चैतन्य मस्कीन ने। सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। राजा जी नगर बेंगलोर से हैं एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद। विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, खुशप्रीत अम्बली हैं गांव फालसंडा जाटान कुरुक्षेत्र से। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे और शीला धनजे। भई आप अपना नाम लिखकर भेजें, अपने किसी मित्र का नाम साथ में लिखकर न भेजें। काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे और मायरा सुरोशे। टिया और कृष्णा हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से। योगी मोहल्ला बराड़ा अम्बाला से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और गुरशब्द सिंह राहुल। नागल से हैं इंद्राज, जगूड़ी से रणधीर बांगड़ और युगम। नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा हैं खैल बाजार पानीपत से। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी और सुभाष योगी। बन बघेरा राजनंद गांव छत्तीसगढ़ से हैं योगेश सारवा और आशा सारवा। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, निमित देशानी। जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े और करुणा कांबड़े। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे और हैं सांगली से। आकली दीवान मध्य प्रदेश से हैं रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी। सही जवाब दिया है रोशनलाल देवांगन ने भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। नेवासा खुपती से हैं बंडू लोहार पोपलघट और चंद्रकला पोपलघट।
जमशेदपुर से हैं हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया। सही जवाब दिया है अमीर खुसरो रोड गंज डुंडवारा से डॉक्टर दबीरुल हसन, शबनम अनवार और शेख मोहम्मद कलीम। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, ध्वनि छाबड़ा, सानवी। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं वीरम गांव गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार और भावेश, और इनके साथ हैं सनी। बिहार स्टेट से हैं डब्लू उल्लाह बेलदार, वली उल्लाह बेलदार, सोनम उल्लाह बेलदार। सही जवाब दिया है नारायण के हाली ने, और इनके साथ हैं सुधा बेंगलोर से। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, शरीफ नवाज, गिरिडीह झारखंड से, भटीपुरा मोहब्बा से हैं कृष्ण कुमार गुप्ता, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी और योगेश कुमार साहू, गौतम हैं कुरुक्षेत्र से, गांव नलोई जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, कार्तिक जांगड़ा और वेदांश जांगड़ा। सही जवाब भेजा है प्रवीण भाई सोनी और हमद भाई ने, हमद भाई बागवान ने। इनके साथ हैं नजमुल होदा गांधीग्राम गुजरात से, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से हैं कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी ध्रुव और निशांत ध्रुव, कल्याण मुंबई से हैं किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले।

संबलपुर का केस हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। छत्तीसगढ़ बोरसरा से हैं वैभवी साहू और विभूति साहू। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा और कार्तिक आर्यन वर्मा। पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सतेंद्र कुमार चंसौलिया। विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक और मयंक हैं बोरखेड़ा पित्रामल, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी, राजेश कुमार मेहरा, क्लासिक रेडियो श्रोता, संघ बकानी, खुर्द झालावाड़, राजस्थान से। आकली दीवान मध्य प्रदेश से हैं जी, आपके नाम तो हो गए। बीपी गौतम, सरिता गौतम हैं एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। किशोर की नगरी खंडवा से डीपी सैनी और गौरव सैनी। आफताब अहमद अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। वलीउल्ला अंसारी बिहार स्टेट डुमराव से। छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया। हनुमंत शिंदे, ऋषिकेश शिंदे हैं सांगली से। श्रोताओं, हमें एक बार ही SMS किया कीजिए, फिर बार बार नाम शामिल हो जाते हैं। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर यमिकर, प्रमोद यमिकर और प्रदीप यमिकर। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार। भिलाईगढ़ राजस्थान से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से वसीम वली चमौरिया, असलम वली चामोरिया और सरफुद्दीन वली चामोरिया। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, यश मंसूरी। अजीत भावसार जी, आपके नाम भी हो गए। रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, नजमा बेगम नाज और बेबी फातिमा गाजी। रश्मि झरना और भरत कुमार हैं राजकोट गुजरात से। पंचकुला चंडीगढ़ से हमारे श्रोता हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और तुलसी मस्कीन। सही जवाब दिया है बन भगेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवानी। ग्राम भाना ब्राह्मणा वाला नरवाना से मेघराज शर्मा। विशाखापत्तनम सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी और लवली। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला हुजरे और सबाहत हुजरे। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी हैं ऊपरकोट बुलंद शहर से। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, अंजलि करवा और बाला साहब। कुंडी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान और हिमांश। आंध्र प्रदेश जी हाँ बिल्कुल सही जवाब है ये, और भेजा है विनय मोहन खारवन ने जगाधरी से।

सही जवाब भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। सही जवाब भेजने वाले हमारे श्रोता हैं सौराष्ट्र राजकोट से परवीन गुजराती, जगदीश भाई गुजराती और हिरेन भाई। सही जवाब दिया है हमारे श्रोता जी। बिल्कुल हमारे पास से जिन श्रोताओं ने सही जवाब आज के प्रश्न का भेजा उनके सभी के नाम हमने कार्यक्रम में शामिल कर लिए हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और जिन श्रोताओं ने कार्यक्रम के जो नियम हैं कि एक ही बार नाम भेजिए, तीन नाम भेजिए, उन्होंने इस बात को जाना समझा और एक ही बार मैसेज किया, उनका भी धन्यवाद।

0: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
4: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
3: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है,
4: हम सबकी अपनी।

0: आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
1: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
0: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
1: आकाशवाणी
0: विश्वास की आवाज।
2: श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं भारत के छठे राष्ट्रपति और महान स्वतंत्रता सेनानी नीलम संजीव रेड्डी की जयंती के बारे में। श्रोताओं, भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती हर वर्ष 19 मई को मनाई जाती है। उनका जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के इल्लूर गांव में हुआ था। वे भारत के छठे राष्ट्रपति थे और महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। श्रोताओं, अगर उनके बारे में मुख्य बातों की बात की जाए तो वे प्रथम निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। वे 1977 में भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था और वे उस समय सबसे युवा राष्ट्रपति भी थे।

उन्होंने आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। वे लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी दो बार वर्ष 1967 और वर्ष 1977 में अध्यक्ष चुने गए थे। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपना पूरा जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों और सादगी को समर्पित किया। श्रोताओं, नीलम संजीव रेड्डी, जिनका जन्म 19 मई 1913 को हुआ और उनके जीवन काल की बात की जाए तो 1 जून 1996 तक वे रहे और वे एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने वर्ष 1977 से वर्ष 1982 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने अपना जीवन का योगदान दिया और वे मुख्य पदों पर आसीन हुए, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री और दो बार लोकसभा अध्यक्ष और एक बार केंद्रीय मंत्री और भारतीय राष्ट्रपति वे बने। उनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश के वर्तमान अनंतपुर जिले में। जन्मे रेड्डी के अड्यार में अपनी स्कूली शिक्षा उन्होंने पूर्ण की और अनंतपुर के सरकारी कला महाविद्यालय में उन्होंने दाखिला लिया। फिर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए पढ़ाई छोड़ दी और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया उन्होंने, और उसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वर्ष 1946 में वे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में मद्रास विधानसभा के लिए चुने गए और वर्ष 1953 में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वर्ष 1956 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वे 1964 से 1967 तक प्रधानमंत्रियों, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के अधीन केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे और वर्ष 1967 से 1969 तक उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी और उसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया।

इसके बाद वर्ष 1977 में उन्होंने छठी लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया और 3 महीने बाद वे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो श्रोताओं, ये जानकारी थी भारत के राष्ट्रपति के, पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती पर। और इस जानकारी के बाद आइए फिर से गीत संगीत की दुनिया में लौट चलते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

श्रोताओं, कहते हैं कि मेहनत का फल, मुसीबतों का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। तो भाई, जो ईश्वर के हाथ में है तो हमें उन पर ही छोड़ देना चाहिए और हमें सिर्फ अपना कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। और जीवन के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम अपने हिस्से का काम कर देते हैं तो भाई बाकी ईश्वर खुद संभाल लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो भाई श्रोताओं, हमें भी अपने जीवन की सभी दुख परेशानियाँ या फिर खुशी के पल, हंसी के पल जो भी है ना, उनको आराम से जीना चाहिए। जीवन में खुशियों के लिए काम करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए और सदैव उम्मीद की तरफ देखना चाहिए, सकारात्मक होकर अपने जीवन को जीना चाहिए। जब हम ऐसा कर पाते हैं तभी जीवन खुशगवार होता है ना। और यही सब खुशगवारी तो मतलब हमें मनोरंजन के साथ मिलती है। और आइए फिर से कार्यक्रम की दुनिया में लौट चलते हैं इसी विचार के साथ कि हमें जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए और जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण सदैव खुशी भरा रखना चाहिए। और कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि आज है मंगलवार और मंगलवार को हमारे सभी श्रोताओं जो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं उनका जवाब दिया जाता है शाम 7:30 पर कार्यक्रम आपकी बात में। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हमारा पता है आपकी बात akashvani@gmail.com। आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतज़ार। और इसी बात के साथ अब कार्यक्रम सुबह सवेरे का अंतिम गीत सुनिए और अनुराधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम स्वरांजलि में आइए सुनते हैं जगजीत सिंह को।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान,
0: आकाशवाणी।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: श्रोताओं, कार्यक्रम स्वरांजलि में अगली पेशकश गुरु रंधावा की आवाज में।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पलाश सेन को।

तो श्रोताओं, पलाश सेन के गाए इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि अब संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम स्वरांजलि। FM बैंड 101.4 MHz पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:45 हुए जाते हैं। अब आप सुनिएगा विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम।

आवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

वो समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किट में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते हैं।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

नवाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनके और कई बेहतरीन किरदार हमें देखने के लिए मिलते रहेंगे।

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने की

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से प्रसारित कार्यक्रम। FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

श्रोताओं नमस्कार, आज का कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ मैं अनुराधा। श्रोताओं जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम सजीव फोन इन होता है, हमारे श्रोता हमें फोन लगाते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी पसंद का गीत सुनते हैं और जानकारी भी साझा करते हैं हमारे विषयों पर। तो भाई श्रोताओं आपको आज का विषय बता दें, आज हम बात करेंगे स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन पर, साथ ही आपको जानकारी देंगे औषधीय गुणों से भरपूर है गाय का दूध। जी हाँ श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन की। जी हाँ श्रोताओं, ये बहुत हद तक हमारे हाथ में है कि हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अगर स्वच्छ पर्यावरण की बात करें तो ये किसी एक व्यक्ति का ना तो कर्तव्य है, ना एक व्यक्ति इस पूरे काम की जिम्मेदारी ले सकता है। इसमें हम सभी की सहभागिता सहयोग होगा तभी हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे और तभी हम सभी स्वस्थ भी रह पाएंगे। तो भाई श्रोताओं, और आज का जो समय है ना, उसमें अगर पर्यावरण की तरफ देखा जाए तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। कहीं तो हमारा जो धरती का तापमान है इतना बढ़ता जा रहा है कि उसे सहन करना मुश्किल होता जा रहा है। जैसी गर्मी पड़ रही है, जैसा आज बाहर निकलते ही गर्मी का प्रकोप है, उससे आप समझ सकते हैं कि ये चुनौती कितनी बड़ी है। दूसरी तरफ देखें तो हमें अपने जल, अपनी पर्यावरण, अपनी मिट्टी को भी स्वच्छ रखना, स्वस्थ रखना, साफ रखना मुश्किल होता जा रहा है। और ऐसे में अगर हम इस काम को पूरी तैयारी के साथ करने में नहीं जुटेंगे तब तक हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते। इस पर आप सभी श्रोताओं के क्या विचार हैं, क्या बात आप अपने साझा करना चाहते हैं हमारे साथ, आप कर सकते हैं हमारे स्टूडियो के नंबर 0174421322 पर फ़ोन करके अपने विचार बताइए इस विषय पर और कीजिए हमसे अपने मन की बात साझा। तो जब तक हमारे श्रोता फ़ोन लगाते हैं तब तक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये गीत। श्रोताओं, पर्यावरण की इस चुनौती को जीवन की जंग की तरह ही लीजिए, क्योंकि अगर आज हम अपने पर्यावरण को नहीं संभाल पाए तो हम भावी पीढ़ियों के जीवन को नहीं संभाल पाएंगे।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम बात करें स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जीवन की, स्वस्थ जीवन की, तो हमें अपने पर्यावरण को बचाना है। और पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे पहला ज़रूरी काम होता है कि हम पर्यावरण को हरित बनाएं, यानी पेड़ लगाएं। जब पर्यावरण में अधिक से अधिक हरियाली होगी तो जो मानव जनित काम है उनका असर पर्यावरण पर बैलेंस हो सकेगा, संतुलित हो सकेगा। और इसके लिए आज के समय में जब हर तरफ कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, वहाँ ऐसे में हरियाली को बनाए रखना बहुत चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। कम से कम हमें एक पेड़ अपने जीवन में ज़रूर लगाना चाहिए, या यूं भी कहें कि अपने जीवन की ऑक्सीजन का इंतज़ाम तो हमें स्वयं करना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर अपना घर है तो वहाँ कुछ जगह ऐसी ज़रूर रखें, कच्ची रखें, ताकि आप उसमें कुछ पेड़ पौधे लगा पाएं। नहीं तो आपको जहाँ भी कोई आपके घर के आसपास पार्क हो वहाँ पर पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हम जीवन में एक पेड़ भी लगाते हैं तो हम इसका समाधान कर सकते हैं। और अगर आपके घर पर गमले हैं तो उनमें भी हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं, पेड़ नहीं पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि इससे भी कुछ हरियाली होती है तो हमारा मन भी संतुलित रहता है और पर्यावरण में भी संतुलन लाने की कोशिश की जा सकती है। तो भाई श्रोताओं, बातचीत आपसे जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो,
1: जय श्री महाकाल।
0: जय श्री राम जी। कौन से श्रोता हमसे जुड़े?
1: मैं शिवा लोहा एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ। मैम,
0: मध्य प्रदेश विदिशा से हमारे साथ जुड़े हैं शिवा जी, है ना?
1: जी मैम
0: जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपकी मधुर आवाज सुनती और
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं।
1: जी बिल्कुल, और आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार हो।
0: जी धन्यवाद। तो शिवाजी, इस समय आप क्या कर रहे थे?
1: बस मैम घर पे ही था और कॉल मिला रहा था, कॉल मिल गया है, बहुत प्रसन्नता हो रही है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप कार्यक्रम ही सुन रहे थे या साथ में कोई और काम भी कर रहे थे?
1: नहीं मैम, कार्यक्रम को सुन रहे थे बराबर।
0: चलिए तो बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैम मूवी का नाम रहेगा बीकली लाइफ
0: जी,
1: और उसमें एक गाना रहेगा खुशी सही या तो खूब समाते हैं महंगाई दान संपत।
0: चलिए आपकी पसंद का गीत तो हम अब तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आज हम कार्यक्रम में बात कर रहे हैं स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर?
1: जी देखिए मैम, हम तो लगभग 1000 पौधे हर वर्ष रूप में टारगेट होता है और लगाते भी हैं। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आपके जन्मदिन रहता है
0: जी
1: या शादी की वर्षगांठ रहती है
0: जी,
1: तो आप पेड़ पौधे लगा के भी उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं
0: जी।
1: तो ऐसा नहीं है, उसमें पर्यावरण भी अच्छा रहता है। और देखिए अभी जैसे के युद्ध के दौरान देश की लत भी होगी
0: जी,
1: तो सभी लोगों को वही पुराना चूल्हा जलाना पड़ेगा, या क्योंकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है अभी
0: जी,
1: या अकेले की बात नहीं है।
0: हमें अपने देश की जो संसाधन है उन्हीं के हिसाब से इस समय चलना होगा और चलना भी चाहिए, है ना। हमें अभी तो ये संकट है तब हमें इस चीज की जरूरत है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि जिन संसाधनों पर हमारा देश तरक्की कर सकता है, जिन संसाधनों का उपयोग करके हमारा पर्यावरण भी बच सकता है और हमारा जीवन भी सुगम हो सकता है, उन्हीं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
0: चलिए,
1: तो ये कि सभी लोगों को पेड़ पौधे जरूर लगाना चाहिए। अगर हम आज पेड़ पौधे लगाएंगे तो आने वाली पीढ़ी का जीवन सुखमय और खुशमय होगा।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। तो चलिए शिवा, फोन करने के लिए धन्यवाद, और आप सुनिए आपकी पसंद का गीत।
1: थैंक यू मैम
0: जी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में हमारे साथ जुड़े हैं?
0: नमस्कार
1: जी नमस्कार।
0: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सुरन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, एमपी से।
1: जी, हमारे दूसरे कॉलर भी हमें मध्य प्रदेश से फोन लगा रहे हैं और विदिशा से ही बात कर रहे हैं आप भी।
0: जी,
1: जी हरुण जी, क्या करते हैं आप?
0: खेती बाड़ी करते हैं।
1: जी खेती बाड़ी करते हैं, तो यानी आज का जो हमारा विषय है उसका जवाब तो आप जरूर दे पाएंगे। आज हम बात करें स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन, यानी हमारा पर्यावरण अगर स्वच्छ रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, हवा अच्छी होगी, पानी अच्छा होगा, तो जीवन तभी स्वस्थ होगा ना।
0: जी जी, पेड़ लगाएंगे।
1: जी बिल्कुल, पेड़ लगाने चाहिए।
0: पेड़ लगाएंगे तभी तो छांव में लगेगी, तभी तो हवा पास होती है।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
0: और लेकिन पेड़ काट रहे हैं तो नुकसानदायक रहता है ना।
1: हाँ जी, तो
0: परेशानी आ रही है ना आजकल, आज के जमाने में।
1: हाँ जी,
0: आजकल जमाने में बहुत परेशानी आ रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, और अब छांव जो है पेड़ों की वो कहीं कहीं दिखती है ना।
0: जी, छांव भी नहीं है, पहले जंगल थे वगैरह हमारे पास।
1: जी
0: लेकिन अब पेड़ वगैरह तंबू वगैरह पैसा ही पड़ रही है, तो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, छांव वगैरह नहीं है आजकल।
1: जी, तो आप कह रहे हैं कि आप खेती किसानी करते हैं, तो आपने इस समय अपने खेत में क्या लगाया है?
0: अभी तो भिंडी का पेड़ है, कुछ पपीते के पेड़ लगाए हैं, दो चार।
1: अच्छा, तो यानी आप फलों के पेड़ लगाए हैं आपने?
0: जी फलों के पेड़ लगाए थे।
1: अच्छा जी, चलिए तो बताइए आज कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: आपको इधर गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: हाँ जी,
0: गर्मी कैसी पड़ रही है आपको इधर?
1: जी हमारे यहाँ गर्मी है, काफी गर्मी है, क्योंकि दिन के समय सुबह ही 9-10 बजे के आसपास काफी गर्मी हो जाती है।
0: हमारे तो काफी गर्मी पड़ रही है, हिम्मत नहीं निकल रही है बाहर निकलने की।
1: जी बिल्कुल, इस समय लू का समय होता है ना, गर्मी का समय होता है, हवा का समय। जी तो कोशिश करनी चाहिए धूप के समय बाहर ना निकले, है ना।
0: जी, छाया पेड़ पेड़ होते हैं तो अच्छे छाया में अच्छी हवा मिलती है, अंदर बैठने को जगह भी मिलती है।
1: हाँ जी, तो बताइए हरुण जी गीत कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: अकेले हम अकेले।
1: गीत की बोल बता दीजिए।
0: राजा को रखने से प्यार हो गया।
1: चलिए, आपकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन से श्रोता कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र में फोन लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं?
1: जी दीदी, ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ। दीदी
0: जी, भगवान सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, और एक महीने के बाद आपके आकाशवाणी कुरुक्षेत्र में कॉल मिलाया है दीदी।
0: जी बिल्कुल, धन्यवाद इस बात के लिए कि आपने हमारे और श्रोताओं को भी मौका दिया। एक महीने के बाद आप फोन लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान सिंह जी?
1: आपने 15 दिन का नियम तो रखा है दीदी, लेकिन मैं एक महीने बाद जुड़ता हूँ दीदी।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, उतने दिन आप कार्यक्रमों को सुना कीजिए, है ना?
1: जी जी,
0: बातचीत का आनंद लिया कीजिए।
1: जी
0: जी।

0: बताइए भगवान सिंह जी, क्या करते हैं आप?
1: जी दीदी,
0: क्या करते हैं आप?
1: दीदी हम खेती किसानी करते हैं और छोटे से गांव में रहते हैं दीदी।
0: अच्छा जी, तो आपका गांव कैसा है? हरियाली भरा, हरा भरा?
1: दीदी हमारे यहाँ हरियाली भरा गांव है, बढ़िया है, अच्छा गांव है दीदी।
0: तो मौसम कैसा है अभी सीहोर का?
1: मौसम तो दीदी 45 डिग्री टेम्परेचर दिन में रहता है दीदी।
0: जी बिल्कुल, आजकल गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सब जगह, है ना?
1: जी जी।
0: लेकिन गांव में अगर हरियाली है तो कुछ ठंडक का एहसास तो होता होगा?
1: नहीं दीदी, हमको ज्यादा गर्मी नहीं लगती क्योंकि हमारा गांव ऐसे ही खुली जगह पे है दीदी, कि यहाँ हवा आती रहती है और इतनी जमीन भी नहीं तपती हमारी। इधर जमीन काली जमीन है और गहरी जमीन, 60 फीट तक गहरी जमीन है।
0: अच्छा जी, तो हम आज बात कर रहे हैं स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ जीवन की, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: दीदी इंसान को पेड़ लगाना चाहिए, करीबन 1-2 पेड़ तो लगाना चाहिए, और लगाने से कुछ नहीं होता दीदी, उनकी देखरेख भी करना चाहिए, उनको पानी डालना चाहिए और उनको बड़ा करना चाहिए, जब जाके अपन सक्सेसफुल होंगे। और नहीं तो पेड़ लगाने से भी कुछ नहीं होता, अपन उनको बड़ा करके और उनके फल खाएंगे जब भी अपने को शांति मिलती है आत्मा को कि हमने कुछ पेड़ लगाया है।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर नन्हा है पौधा है तो फिर उसका खुद से बढ़ पाना मुश्किल हो जाता है, अगर कुछ समय देखभाल मिल जाती है तो थोड़ा ठीक रहता है ना, तो वो फलने तक थोड़ा, फूलने तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है पेड़ का भी।
1: जी हाँ दीदी, भले ही से इंसान एक इंसान 10 पेड़ की जगह 2 पेड़ लगा, लेकिन उनके देखरेख करता रहे तो बिल्कुल सही रहेगा और बड़े भी हो जाएंगे पेड़।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कुछ बातें और भी हैं, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो हमारा पर्यावरण साफ तभी रह सकता है, अगर हम जल की बात करें तो उसके लिए हमें अपनी नदियों, अपने जो पानी के स्रोत हैं उनको साफ रखना चाहिए, हमें नदियों में गंदगी कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, है ना?
1: जी बिल्कुल दीदी, आपने सही कहा।
0: और अगर हम नए घर बना रहे हैं या फिर हमें अगर वर्षा के पानी को हम संजो सकते हैं, है ना, तो उसके लिए भी हमें कार्यरत रहना चाहिए, बारिश के पानी को बचाना चाहिए।
1: सरकार ने चलाई थी स्कीम, घर में गड्ढा खुदवा के और उसमें गड्ढे में पानी छोड़ रहे छत का दीदी, उससे काफी वाटर लेवल में फायदा होता है दीदी।
0: जी बिल्कुल, उसी को वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, है ना, यानी पानी की खेती कह सकते हैं, जब वो पानी बूंद बूंद कर जमीन में जाएगा तो हमारे पानी का स्तर, जो जमीन के पानी का स्तर है वो बढ़ जाता है।
1: जी हाँ दीदी।
0: हाँ जी, तो चलिए बहुत अच्छी बात हुई आपसे भगवान जी। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है हीरो नंबर वन और गाने के बोल हैं सातों जन्म तुझको पाते, ये वाला गीत सुनना चाहते हैं दीदी। और हमारे हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप को डेडिकेट रहेगा, गौतम राय बोले जी हैं, धीरज भाई रावाड़ी जी हैं, इन दोनों को डेडिकेट रहेगा।
0: चलिए आपकी पसंद पर ये गीत आप तक पहुँचा रहे हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी।

श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन की। जी हाँ, अगर हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहते हैं, साफ रखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा और पहला योगदान हमें देना चाहिए अपने घर से उत्पन्न होने वाले कूड़ा करकट के प्रबंधन को। जी हाँ, हमारे घर में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया आता है, या फिर यूँ कहें कि घर में भोजन बनता है तो अपशिष्ट पदार्थ तो ज़रूर होते हैं, और उसी का हमें प्रबंधन करना है। यानी अगर हमारी रसोई का जो भी है, उसे हम दो तरीके से काम में ला सकते हैं। या तो आप उस हरियाली को, अपने खेती की जो किचन वेस्ट है, उसको आप खाद बनाकर गमलों में उपयोग कर सकते हैं, या फिर अगर आप उसे कूड़ादान में डाल रहे हैं तो उसे कभी भी पॉलीथीन प्लास्टिक के साथ ना डालें। अपने घर में दो कचरादान रखें ताकि उनमें आप अलग अलग गीला और सूखा कचरा अलग रख सकें। इससे आपका फ़ायदा होगा, एक तो आपकी जो घर में इसका प्रबंधन हो जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट है उसका भी प्रबंधन हो जाएगा, और जहाँ भी इसका निस्तारण किया जाता है वहाँ भी इसे अच्छे तरीके से निपटाया जा सकेगा। तो श्रोताओं, हमें कचरा के प्रबंधन को बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, और ऐसा आपने बाहर देखा भी होगा, कहीं हॉस्पिटल्स में देखिए तो वहाँ भी अलग अलग डस्टबिन कूड़ादान रखते हैं, बनाए जाते हैं। और इसी तरह से हमें भी बहुत बार कहा जाता है कि गीले और सूखे कचरे को हमें अलग अलग डालना चाहिए ताकि उसका सही तरीके से प्रबंधन किया जा सके। लेकिन इस पर हम थोड़ी सी लापरवाही कर जाते हैं। अपने घरों में भी हम ऐसा करते हैं कि हम उसका एक ही कचरादान में डाल देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, हमें घर में दो डस्टबिन लगाने चाहिए ताकि हम अपने घर में भी उसका ठीक से प्रबंधन कर सकें, अच्छी शुरुआत कर सकें।

0: उसके प्रबंधन की। और अगर हमारे पास गमले हैं, थोड़ी जमीन है, तो हमें उसकी खाद बनाना सीखना चाहिए और उसका प्रबंधन करना चाहिए, क्योंकि जो रसोई से निकलने वाला वेस्ट है ना, चाहे वो सब्जियों के छिलके हों, फलों के छिलके हों, उसका उपयोग हम एक अच्छी खाद बनाकर गमलों में कर सकते हैं। तो ये भी एक पर्यावरण को बचाने में बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। और श्रोताओं, पानी की बात करें तो बहुत बार देखने में आता है कि हम घर की साफ सफाई में बहुत अधिक पानी का उपयोग करते हैं, गलियों में पानी डाल डाल के पाइप लगाकर बहुत पानी को बर्बाद करते हैं। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। श्रोताओं, अगर आंकड़ों को देखें तो हमारा देश जनसंख्या के आंकड़ों में दुनिया में नंबर वन है, लेकिन प्रकृति ने हमें पानी के उतने रिसोर्स नहीं दिए हैं, और हमारे पास जो भूजल स्रोत है जिसका उपयोग हम पानी पीने के लिए करते हैं वो बहुत कम है। आपने बहुत बार समाचार पत्रों में या फिर टीवी में बहुत बार देखा होगा कि सूखे इलाके जहाँ पानी नहीं होता, वहाँ पानी को लाना, पानी के लिए प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर कहें कि सूखे इलाकों की, अगर आप राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले देखें जहाँ पानी को लाने के लिए महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को घंटों मशक्क़त करनी पड़ती है, उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत दिन का एक बहुत अधिक समय पानी को लाने के और ले जाने के लिए ही लग जाता है। तो हमें वहाँ जहाँ पानी है वहाँ उसकी बचत करनी चाहिए और उसे समझ कर, संभाल कर उपयोग करना चाहिए। श्रोताओं, आज का समय ऐसा है जहां हम अपने जीवन में धन को जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व हमें प्रकृति के मिले उपहारों को देना चाहिए, चाहे वो हमारी हवा हो, हमारा पानी हो या हमारी धरती हो। जब तक हम अपने पर्यावरण का प्रबंधन नहीं सीख पाएंगे, हमारा जीवन स्वस्थ सफल नहीं हो सकता। तो जरूर हमें इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, जन जन की भागीदारी इसमें होनी चाहिए। आप एक छोटा सा प्रयास करके भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने घर में पॉलीथीन का उपयोग बंद कर दें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दें, तो भी हम अपने पर्यावरण को बचाने में बहुत योगदान दे सकते हैं। अगर हम ऐसे छोटे छोटे कदम बढ़ाना शुरू करें तो हमारा पर्यावरण बच सकेगा। श्रोताओं, बहुत बार देखने में आता है कि घर में अत्यधिक बिजली का उपयोग होता है, यानी कमरे में अगर हम बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, टीवी चल रहा है, लाइट्स चल रही हैं, पंखे चल रहे हैं, तो हमें इस और भी समझदारी से कदम बढ़ाना होगा। हमें अपने घरों को भी ऐसा बनाना चाहिए कि जिसमें प्राकृतिक जो रोशनी है वो आए, और अगर उस समय जिस समय हम प्राकृतिक रोशनी का उपयोग ले सकते हैं तो उस समय हमें घर के पर्दे खोल देने चाहिए, लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। तो इस ओर हमारे श्रोता ज़रूर ध्यान देंगे, अपना योगदान देंगे और हमारे इस कार्यक्रम के विषय को ज़रूर सार्थक करेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो जी, नमस्कार। कौन से श्रोता हमारे साथ जुड़े? जी अशोक कुमार भारद्वाज जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है, थोड़े थोड़े
0: पहले
1: बाकी जानकारी दे रहे हैं, अच्छी लग रही है।
0: हेलो जी, जी बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो आप भी इसमें योगदान करते हैं कि आप अपने घर में प्लास्टिक की थैली लेकर आते हैं या फिर खरीदारी करने के लिए कपड़े का थैला उपयोग करते हैं?
1: ले जाते हैं
0: जी बिल्कुल। घर से निकलते समय जिस समय हमें जैसे ये याद रहता ना कि जेब में पैसे डाले या नहीं डाले, अपना मोबाइल फोन उठाया या नहीं उठाया, वैसे ही हमें घर से निकलते समय ये जरूर याद रहना चाहिए कि हमने कपड़े का थैला साथ लिया या नहीं लिया, क्योंकि घर से बाहर जा रहे हैं तो कोई ना कोई काम जा रहे होंगे और फिर वहां से आते हैं सोचते हैं कि चलिए फल सब्जी लिए चलते हैं, है ना, तो उसके लिए हमारे पास कपड़े का थैला होना बहुत जरूरी है।
1: हाँ, सामान भी सुरक्षित आ जाता है।
0: जी बिल्कुल, सामान भी सुरक्षित आ जाता है। और लेकिन इसमें एक समझदारी और दिखानी चाहिए, जहाँ से हम खरीदारी कर रहे हैं अगर वो भी हमें प्लास्टिक की थैली में डालकर दे रहे हैं ना, तो उन्हें भी मना करना चाहिए कि नहीं भाई, हमारे पास अपना थैला है ना।
1: ले जाते हैं जैसे सब्जी लेकर आनी है, कुछ और सामान लेकर, ज्यादा सामान लेना था तो थैला ले जाते हैं।
0: जी बिल्कुल सही बात है।
1: तो वैसे गर्मी पड़ रही है, पशु पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध जरूर करना।
0: जी बिल्कुल, हमारे सभी शुद्धि श्रोताओं से हम यही कहना चाहेंगे कि गर्मी बहुत ज्यादा है, ऐसे में हमें अपना भी ख्याल रखना है और जीव जंतु पशु पक्षियों का भी ध्यान रखना है। तो उनके लिए मिट्टी के कसौरों में पानी रखिए, उसे समय समय पर बदलिए, थोड़ा दाना डालिए और सुबह उठकर जल्दी ये काम कीजिए, क्योंकि भाई हमारे जो पक्षी है ना वो सुबह जल्दी आते हैं दाना लेने, पानी लेने, है ना।
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: हाँ जी, और उन कसूरों को समय समय पर साफ सफाई की भी जरूरत होती है, तो वो भी जरूर करें।
1: हाँ जी, पानी पर भरोसा रहना चाहिए जी हर रोज।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो बताइए अशोक जी, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज बॉबी फिल्म का सुना दे, झूठ बोले कौवा खाते काले कौवे से।
0: चलिए, आपकी पसंद पर बॉबी फिल्म का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखती रहियो, मैं तेरी सौतन लाऊंगा तुम देखते रहियो।

श्रोताओं, अगर हम कार्यक्रम के दूसरे विषय की बात करें तो हमने आपसे बताया था कि औषधीय गुणों से भरपूर है गाय का दूध। जी हाँ, बिल्कुल। अगर कहें कि ये हमें प्रकृति का अमृत है या फिर प्रकृति का उपहार है तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन B12 और विटामिन डी से भरपूर होता है, जो कि हड्डियों को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ सुपाच्य भी होता है। और इसके औषधीय गुणों की बात

0: करें तो ये हमारी बुद्धि और मानसिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे आयुर्वेद में मेध्या यानी मस्तिष्क के लिए टॉनिक कहा गया है, जो कि याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाता है। श्रोताओं, ये हमारे पाचन तंत्र के लिए भी उत्तम है। जैसे कि हमें अपने पाचन तंत्र को अगर स्वच्छ रखना है, सुयोग्य रखना है, तो आसानी से पचने वाली चीज़ों को लेना चाहिए, जिसमें गाय का दूध सर्वोत्तम है। श्रोताओं, ये हमारी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी एंटी एजिंग जो त्वचा होती है उसमें ये मददगार होता है, यानी हमारे बुढ़ापे के लक्षणों को धीमा करने के लिए मददगार होता है। और हड्डियों और मांसपेशियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होने के कारण ये जोड़ों और मांसपेशियों को ताकत देता है। तो इसीलिए हमें गाय के दूध का उपयोग करना चाहिए और इसके औषधीय गुणों का लाभ लेना चाहिए। इस पर थोड़ी सी जानकारी आपको और देंगे, लेकिन अभी हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं, आइए करते हैं उनसे बातचीत। हेलो,
1: नमस्ते कुरुक्षेत्र
0: जी। नमस्ते, कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में ही आपने फोन लगाया, कौन बात कर रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए।
1: उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ जी।
0: जी गुलजार जी, कैसे हैं आप?
1: जी अनुराधा जी, जी जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं जी?
0: जी हम बिल्कुल अच्छे हैं। हेलो हेलो
1: जी।
0: हाँ जी गुलजार जी, क्या कर रहे थे इस समय आप?
1: इस समय अभी फोन लगा रहे थे जी।
0: चलिए फोन लग गया तो बताइए, कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: इस गाने में मैं सुनूंगा जी, फिल्म का नाम रहेगा साया, और गाने के बोल रहेंगे ओ साथिया आई जे तेरी याद। और थोड़ी सी पर्यावरण के बारे में भी बात कर लेते हैं, कुछ ये होता क्या है
0: जी? बिल्कुल बोलिए बताइए।
1: और ये पर्यावरण के बारे में मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसी के बारे में जो है विषय के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि पेड़ में पानी डालने से कुछ नहीं होता, वो बात ये सुनी है कि अभी ना नासा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, और हमारी कौम का बच्चा हमारा हवा का रुख बदल देगा, क्योंकि जब पेड़ बड़ा होता है तभी तो सर फैलाएंगे, और जब छोटा होगा तो कहां से फैलाएंगे।
0: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हमें पर्यावरण का ध्यान देना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, है ना
1: जी। मैं कुछ मित्रों का नाम ले सकते थे जी।
0: जी बोलिए।
1: हेलो
0: जी बोलिए।
1: मेरे मित्र है राज मलिक, राज मलिक रीना मलिक जी, ये मेरे मित्र है। और दीदी जी मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ आखिरी बात चलते चलते, कि जैसे ये हनन कार्यक्रम आता है नमस्ते कुरुक्षेत्र, इसमें समय जवाब देना पड़ता है कि किस संस्था ने कितने दिन बाद फोन लगाया?
0: जी बिल्कुल, आप 15-17 दिन के बाद फोन लगाइए, ताकि हमारे सभी श्रोताओं को बातचीत करने का मौका मिल जाए, है ना?
1: हाँ जी। और जी अगर कोई 13 दिन कॉल कर रहा उसे उसका भी कौन ले जाएगा?
0: जी बिल्कुल नहीं लिया जाता, क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदा हम रजिस्टर में एंट्री करते हैं, सभी श्रोताओं का रिकॉर्ड रहता है, और कब फोन लगा रहे हैं उसी के हिसाब से हम अगला कॉल लेते हैं, ठीक है? बातचीत करने के लिए
1: 15 दिन के बाद।
0: जी आपकी पसंद का गाना हम आप तक पहुँचा रहे हैं, फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: गाना तो पहुँचा रहे हो दीदी जी, अगर कोई 14 दिन भी फोन मिलाओगे तो भी नहीं ले जाने का कॉल?
0: जी नहीं लेंगे, धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम। गाना सुना।

0: विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: जी श्रोताओं, हम आपको जानकारी दे रहे थे गाय के आयुर्वेदिक जो दूध है उसके आयुर्वेदिक तत्वों के बारे में। तो अगर हम इसे उपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। इसे हम गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध बनाकर भी ले सकते हैं और तुलसी और अदरक के साथ लेने के साथ ही बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ। तो श्रोताओं, ये सब जानकारी थी और इसी जानकारी के साथ अब आज के कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र को संपन्न करने की अनुराधा को दीजिए अनुमति। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाइएगा। हमारा पता है आपकी बात आकाशवाणी @gmail.com। दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम रंग तरंग में।

बधिकिया। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम रंग तरंग में, जो कि है पल के की आवाज में, महबूब के बोल हैं और के का ही संगीत है और लिया गया है पल एल्बम से।

0: हम सुन रहे थे सुनो एल्बम से लकी अली की आवाज में असलम के बोल और लकी अली के संगीत के साथ ये सुमधुर सा गीत कार्यक्रम रंग तरंग में। चलिए चलते हैं, सुनते हैं ये संदेश।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग।

हम सुन रहे थे ब्रीदलेस शंकर महादेवन की आवाज़ में और उनके ही द्वारा संगीतबद्ध किए गए इस नगमे को जावेद अख्तर ने इसे अपने बोल दिए हैं। आइए सुनते हैं अगला प्यारा सा नगमा जो नुमाइश एल्बम से है, पंकज उदास ने गाया और संगीतबद्ध किया है, जफर गोरखपुरी ने इसे बोल दिए हैं।

हम सुन रहे थे जान एल्बम से सोनू निगम की आवाज में फयाज अनवर के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया है निखिल विनय ने।

हम सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में संदेश शांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम रंग तरंग का अगला गीत जो कि है आंखों में तेरा ही चेहरा। आर्यन इस एल्बम से लिया गया है, जय वालिया ने इसे गाया है, जय वालिया ने ही इसे लिखा है और ललित ने इसे संगीतबद्ध किया है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है रंग तरंग। आइए सुनते हैं यूफोरिया एल्बम से यह गीत जिसे गाया है पलाश सेन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम रंग तरंग यहीं तक, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत

0: देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यावसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: भारत और स्वीडन ने फैसला किया है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग साझा समृद्धि और सतत भविष्य का रास्ता तय करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया के सामने एक निर्णायक विकल्प है, या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाना या फिर अपनी साझेदारियों को मजबूत बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवम्बर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और यात्रियों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि ये समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है।
2: दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल 94.08 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपए और डीजल की 96.07 रुपए दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपए और डीजल की 96.11 रुपए प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल होगा आपके बीच बस थोड़ी ही देर के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। यादों की महफिल में हम लेकर आते हैं किसी एक की याद, और आज हम लेकर आए हैं कवि प्रदीप के गीतों को। कुछ उन्होंने गाए हैं, कुछ उन्होंने किसी और गायन गायक की या गायिका की आवाज़ में हमारे बीच में प्रस्तुत किए हैं। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कवि प्रदीप की आवाज़ में ये पहला नगमा।

वामन अवतार फिल्म से हम सुन रहे थे ये गीत प्रदीप की आवाज में, प्रदीप के ही बोल और अविनाश व्यास के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल में। ये गीत लिया गया है फिल्म मशाल से, मन्ना डे की आवाज में, प्रदीप के बोल, सचिन देववर्मन का है संगीत।

विराम के पश्चात पुनः स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल का अगला गीत, शंकर सीता अनुसुईया। इस फिल्म से प्रदीप के बोल हैं, प्रदीप की ही आवाज़ है और शिवराम का है

0: हम सुन रहे थे गीत पैगाम फिल्म से मन्ना डे और साथियों की आवाज में प्रदीप के बोल सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आइए कार्यक्रम यादों की महफिल में सुनते हैं ये संदेश।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
2: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं यादों की महफिल में प्रदीप के द्वारा लिखा गया और प्रदीप के द्वारा ही गाया गया नागमणि फिल्म से यह गीत, जिसे संगीतबद्ध किया अविनाश व्यास ने।

कभी धूप कभी छांव फिल्म से सुन रहे थे ये गीत हम प्रदीप के बोल और प्रदीप की ही आवाज में चित्रगुप्त के संगीत के साथ।

0: हरिश्चंद्र तारामती इस फिल्म से सुन रहे थे हम इस गीत को हेमंत कुमार की आवाज में प्रदीप के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: मिलती हैं धाराएं तीन विचार स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
2: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

0: अब जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक और रचना जो कवि प्रदीप की कलम से निकली है। और ये खूबसूरत सी रचना को आवाज दी है कवि प्रदीप ने ही, वसंत देसाई ने इसे संगीतबद्ध किया है और फिल्म है दो बहाने।

हम सुन रहे थे अमर रहे ये प्यार आशा भोसले की आवाज़ में। हमने लिया ये गीत अमर रहे ये प्यार फिल्म से, प्रदीप के बोल हैं और सी रामचंद्र का है संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत नास्तिक फिल्म से, प्रदीप की आवाज़, प्रदीप के ही बोल हैं, सी रामचंद्र का है संगीत।

स्कूल मास्टर फिल्म से सुन रहे थे ये गीत लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज में, प्रदीप के बोल वसंत देसाई के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अंतिम गीत, जो कि है फिल्म जागृति से। मोहम्मद रफी की आवाज है, प्रदीप के बोल है, हेमंत कुमार का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

0: की अपनों के साथ जीते हैं। कल ही तो उसका जन्म हुआ और सुनी हमने फूलों सी हंसी, फिर वही बालपन का सच्चापन और बढ़ती उम्र की नटखट नादानियां, फिर वही उम्र जब किताबें साथी बन गई और उम्र का वो साल जिसे बाली उम्र कहते हैं आ ही गया, और कब किसी के नयनों से भेंट हो गई, फिर प्रेम की जीत हार संघर्ष, साथ में बड़ा नाम करने की ख्वाहिश भी और जीवन साथी संग विवाह भी, धीरे धीरे एक परिवार जहां बहुत प्रेम है और फिर सुकून भरी दुनिया, शायद यही जीवन है आपका हमारा हम सबका। और इस प्यारी सी इबारत के साथ में हमारे श्रोताओं ने बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेजे हैं और उन संदेशों को पढ़कर बड़ा आनंद आ रहा था। जैसे हमारे श्रोता ने बड़े अच्छे से लिखा है कि भारतीय संस्कृति दर्शन और आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से मनुष्य का जीवन चक्र एक बेहद खूबसूरत और व्यवस्थित यात्रा है। चाहे हम विज्ञान की नज़र से देखें या दर्शन की, मनुष्य का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। हर अवस्था का अपना एक अनूठा महत्व, सौंदर्य और कर्तव्य होता है। यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, ये हमारे श्रोता लिखते हैं कि यादें बचपन से बड़े होने तक का सफर, बच्चों की मासूम हंसी, सच्चाई नादानियां, उम्र के साथ किताबें, बाली उम्र में नैन से नैन मिलना, प्रेम की जीत हार संघर्ष, नाम करने की ख्वाहिश, जीवन साथी, परिवार, सुकून भरी जिंदगी, सुकून भरी दुनिया, यही है जिंदगी। ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं, हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि जीवन का कालचक्र मुख्य रूप से मनुष्य के जन्म, विकास और समय के साथ निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। शैशवावस्था और बचपन 0 से 12 वर्ष तक विकास और सीखने का प्रारंभिक चरण, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष शारीरिक मानसिक और भावनात्मक बदलावों का दौर, वयस्कता आत्मनिर्भरता, करियर और पारिवारिक जीवन की शुरुआत, इसके लिए उन्होंने 20 से 40 वर्ष का उम्र दिया है, प्रौढ़ावस्था स्थिरता और अनुभवों का चरम, वृद्धावस्था 60 के बाद की उम्र, शारीरिक शिथिलता और मानसिक परिपक्वता का काल। ये सारी बातें हमारे श्रोता हमारे लिए लिख रहे हैं और लिखते लिखते बहुत अच्छे से हमारी इबारत को भी उन्होंने सजाया है। प्रेम किसी परिभाषा की परिधि में बंधने वाला तत्व नहीं है, यह तो एक चिरंतर प्रवाह है। और प्रेम क्या है, किसी को पालने के लिए व्याकुलता और फिर स्वयं को मिटा देने की पराकाष्ठा, क्या यह कर्तव्यों की वेदी पर किया गया त्याग है या साधारण मानवीय चेतना में किसी को पालना ही प्रेम मात्र माना जाएगा। ये उन्होंने कई सारे प्रश्न प्रेम को लेकर किए हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर भी हम सभी को देने ही हैं। और बड़ी सारी बड़ी खूबसूरत सी इबारतें आई हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जीवन प्रकृति का सबसे खूबसूरत और जटिल सिलसिला कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जीवन की एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक चक्र की भांति घूमता रहता है। जन्म के अंत की बुनियाद को साथ लिए है, हम सभी मिट्टी से बने हैं, बनते हैं और फिर उसी मिट्टी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट न्यायाधीश एवं जांच समिति के पीठासीन अधिकारी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य द्वारा श्री बिरला को संसद भवन में सौंपी गई। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज साइकिल से सफर किया और सवेरे सुखना लेक पहुंचकर सुबह की सैर की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की और स्वस्थ भारत स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उन्होंने उचित कदम उठाए हैं और साइकिल का प्रयोग भी शुरू किया है।
2: जो मिड ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है, हमें पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज्यादा ईवी का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें।

0: पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक SOP तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठ के करने की बात हो उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं।
1: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर तमाम राज्यों के मंत्रियों और बड़े अधिकारियों ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री मेट्रो में सफर करते हुए नजर आए। बीजेपी नेताओं ने भी अपने काफिले को छोटा करते हुए सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सफर करना शुरू कर दिया है। उन्होंने विपक्ष से भी जनता के साथ मिलकर विकसित भारत के संकल्प में साथ देने की अपील की। गौरतलब है कि श्री मोदी ने पश्चिम मध्य एशिया में चलते हालात के मद्देनजर हाल ही में देश से ईंधन बचाने और सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की अपील की थी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत वन टाइम वन वे स्विच सुविधा को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर गत वर्ष 2 जुलाई को जारी अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की थी, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हुई। भारत सरकार द्वारा गत 25 अगस्त के कार्यकाल ज्ञापन के माध्यम से यूनिफाइड पेंशन स्कीम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में वन टाइम वन वे स्विच सुविधा प्रदान की। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल द्वारा हरियाणा अभिलेखागार विभाग ग्रुप बी सेवा नियम 1992 में संशोधन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा प्रबंधन नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र विशेष प्रावधान संशोधन अधिनियम 2025 के प्रावधानों को लागू करने हेतु संशोधनों को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य राज्यभर में अनाधिकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों के नियमितीकरण को सुगम बनाना और ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी नागरिक सुविधाएं एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना है। मंत्रिमंडल ने विकास एवं पंचायत विभाग के हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों को डेयरी फार्मिंग के उद्देश्य से श्यामलात भूमि उपलब्ध कराने के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की सहकारी समितियों को डेयरी स्थापित करने के लिए 500 वर्ग गज तक की श्यामलात देहभूमि पट्टे पर देने की अनुमति होगी। इसी के साथ ये प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: हम किसके साथ वो मस्ती कर रहे हैं या वो खेल खेल रहे हैं, हम बड़ा छोटा कद में रंग में रूप में यौवन में किसी भी चीज को हम नहीं देखते हैं। हम बस इतना देखते हैं कि ये जो है वो बस हमारा अपना है और हर कोई अपना लगता है। तो चलिए हम चलते हैं उस बाली उम्र की तरफ, उस बचपन की तरफ जो छोटा सा बचपन है उसके। पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन जवानी और वानप्रस्थ यही जिंदगी के तीन पड़ाव हैं जब हम अपने अपने और अपनों के साथ जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। बचपन खेलकूद नादानियाँ शैतानियाँ और फिर उसके साथ किताबों की दुनियादारी और जिम्मेवारी की तरफ बढ़ते हैं। उनके कदम के बीच यह रिश्ता ऐसा होता है कि शुरुआत में ज्ञान और पढ़ाई उनकी एकमात्र दुनिया होती है और लेकिन उम्र के साथ दोस्तों के साथ करियर जीवन साथी का आना जीवन का एक स्वाभाविक खूबसूरत पड़ाव। अक्सर जीवन में ये बदलाव बच्चे किताबों की दुनिया से निकलकर व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारियों की ओर आगे बढ़ते हैं। नए रिश्ते और उनके जीवन में ताजगी और एक नया नजरिया लेकर आते हैं। यही एक ठहराव है परिवार के रूप में होती है जहाँ हंसी खुशी सुकून शांति दूरियों का संजोग बन जाता है और इसी के बीच में चलती बढ़ती जाती है जिंदगी और इसी का नाम है जीना। बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। तो जन्म से लेकर हमारे कौश होता लिखते हैं कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक के जो अपने इंसान अपनों का साथ रहता है अब वो सब बचपन फूलों सी हंसी संगी साथी सब कुछ एक धुंधली सी याद बनकर रह जाती है। बाली उम्र में किसी से नए ना लड़ जाए तो जीवन साथी को पाकर एक प्रेम से भरी दुनिया बन जाती है। जीवन का संघर्षों का नाम है और जो इसका सामना कर सके वही आगे बढ़ गया, वही सच्चा इंसान है। अपने तो अपने होते हैं और बहुत सारे गीतों के नाम आपने लिखे हैं जो हम नहीं पढ़ने वाले। हमारे श्रोता एक और लिखते हैं, जीवन का कालचक्र का सुंदर वर्णात्मक झांकी प्रस्तुत की गई है। शैशव काल की मुस्कान किलकारियों से गुजरते हुए अल्हड़ बाल काल से नव यौवन का जब दस्तक देता है तो जीवन का सबसे संवेदनशील मोड़ होता है। ना अति परिपक्वता ना ही ना ही बचपना ना ही यह मूड आगामी जीवन के लिए सही बुनियाद होती है। संयुक्त परिवार के परिवेश में समुचित बौद्धिक विकास होता है। यह फिर युवा काल विवाह से गृहस्थाश्रम की ओर कदम पड़ते हैं। आज की एकल परिवार व्यवस्था में समुचित मानसिक बाधक है। मानव संकीर्णता तनाव और अपने आप में सिमट कर रह गया तब महसूस होता है कि जीवन की भीड़ में इकाई मात्र बनकर उम्र गुजार दी है। ऐसी कुछ व्याख्या बहुत अच्छे से करते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आपने चंद शब्दों में ही इंसान के पूरे जीवन चक्र और भावनाओं को बहुत गहराई से और खूबसूरती से पिरो दिया है। वाकई जीवन की यात्रा खूबसूरत बहती हुई नदी के समान है, जहां शैशव की निष्कलंक हंसी से लेकर किशोरावस्था के सपनों की से भरी उड़ान तक हर पड़ाव तक एक अनमोल है। संघर्ष, प्रेम, समर्पण के रेशों से बुना परिवार और परिवार के साथ वो सुकून भरी दुनिया हमारी असली दौलत वाकई जीवन में इन्हीं अनमोल यादों और रिश्तों की एक खूबसूरत सफर है। जिंदगी के इस बेहतरीन सफर को शब्दों में पिरोने के लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, स्मृतियों के झरोकों से अतीत की ठंडी हवाएं चलती हैं, मन का कोना कोना किसी भीनी खुशबू से महक उठता है। यादें जीवन की वह अनमोल पूंजी है जिन्हें ना तो समय चुरा सकता है ना ही वक्त की धूल धुंधला सकती है। यह इंसान के भीतर बसा एक खूबसूरत सा संसार है जहां बीता हुआ कल हमेशा आज बनकर सांस लेता है। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और अगले गीत की तरफ। हमारा प्रश्न ये है कि एक बात बता दीजिए कि आप जो छोटे वाले थे ना, बहुत छोटे वाले यानी मैं भी छोटी सी थी, उस समय आपने ऐसी कौन सी बदमाशी या ऐसी कौन सी शैतानी की थी जिस शैतानी के लिए या तो बहुत सारी डांट पड़ी थी या बहुत सारी पिटाई। जल्दी से बताइएगा, उस बचपन को याद कीजिए जिस बचपन में आपने बहुत शरारतें की हैं, बहुत मस्तियां की हैं, लेकिन अपने जीवन को खुल के जिया है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मिली फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, योगेश किवोल और सचिन देव बर्मन की आवाज, बड़ी सुंदर से संगीत के साथ में। और हमारे श्रोताओं ने, हमने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन क्या है ना, आपके पास इतना ज्ञान है जिसे सच में मैं कुछ कह ही नहीं सकती। हमारे विविध भारती के श्रोता बहुत ज्ञानी हैं और मैं उनके ज्ञान को प्रणाम करती हूँ। हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने लिखा, मिली, ढूंढने वाला पूछता है सवाल और जवाब भी वही है, मिली। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। और चलिए अब हमारे श्रोताओं ने क्या लिखा है, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं बचपन को लेकर कि बचपन एक ऐसा समय होता है जब मन में कोई स्वार्थ, ईर्ष्या और भविष्य की चिंता नहीं होती। बच्चा हर पल में जीना चाहता है। इस उम्र में बच्चा जिज्ञासु होता है, नई चीज़ों को छूना, तोड़ना, फोड़ना और हर बात में सवाल पूछता है। उसका स्वभाव होता है बचपन में रोने और हंसने में कोई मिलावट नहीं होती। अगर बच्चा किसी बात पर रुठता है तो बहुत जल्दी मान भी जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये बचपन होता ही बड़ा खूबसूरत है। और हमने आपसे पूछा था कि आप भी अपनी शरारतें हमारे साथ साझा कीजिएगा, तो हमारी श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बहुत बड़ी शरारत याद आती है जिसके लिए मम्मी की मार पड़ी थी। मैं और भैया बिना किसी को बिना बताए नदी में नहाने चले गए थे। हम दोनों ही छोटे थे और हमें ये लगता था कि इस नदी के साथ साथ हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच जाएंगे। अरे बाबा, अरे ऐसी बड़ी गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए, ये तो बड़ी गलती कर दी थी तो पिटाई तो शायद बनती है, क्योंकि आपके जीवन का भी तो सवाल बनता है ना। उसके बाद हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में बड़ा भाई, जो मुझसे 2 साल बड़ा है, को कसाई बोलने पर जो गुस्सा आता था, तब मैंने विज्ञान में वायु के उपादानों को याद करते हुए कसाई शब्द को जोर से उसकी तरफ देखकर पढ़ने लगा। वो उस पहले समझा मैं याद कर रहा हूँ, बाद में जब वो समझा तो खूब लड़ाई हुई। ये भोलापन, ये मासूमियत और ये लड़ाइयाँ बड़ी खूबसूरत होती है। वैसे हमारे श्रोता लिखते हैं, मैंने तो शरारत बहुत कम की है, पर एक बार मेरी माँ सब्जी लेने गई हुई थी, मैंने लाइट के जो पुराने काले बटनों के ऑन ऑफ करने वाले जो खटके होते हैं ना, हाँ, उसमें एक तार डाल दिया था और मुझे इतनी ज़ोर से करंट लगा कि आज भी याद आती है। सच में बहुत ज़ोर से करंट लगा होगा और बड़ी तकलीफ़ भी आपको हो गई होगी, ऐसे काम करने नहीं चाहिए भले वो बचपन हो या बड़े हो गए हों। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन की बात कुछ और थी, अपनी सोसाइटी के बच्चों की टोली का लीडर था, सोसाइटी में कोई छत नहीं थी जहाँ पे पतंग लेने ना गया हूँ। सच में वो क्या दिन थे, क्रिकेट, गिल्ली डंडा, आइस पाइस, खोखो, धूम खेले हैं, क्या बात है, बचपन की यादें ताज़ा हुई। बहुत सही, धन्यवाद। हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे और खूब मस्ती और खेल शैतानी करते थे, क्या बात है। हमारे श्रोता ने कहा कि हमारी पसंद का गीत है ये, मैंने कहा जो वो रोज सुन सकती हैं और कई बार इस गीत में फूलों के साथ सच में उन्हें हंसते हुए देखा गया है, सच बात है। और चलिए हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, जया की मस्ती ये गीत माला, बहुत खूबसूरत से गीत आपको पसंद आया। हमारे श्रोता लिखते हैं, कभी ना भूलने वाले बचपन के दिन आज भी भगवान से मानते हैं। बसंत पंचमी का दिन था और हमारे घर के पास मंदिर बन रहा था, वहीं पार्क में मैं और मेरी बहन खेल रहे थे, उसके सिर पर झूले की कील लग गई, बहुत सारा खून बहने लगा,

मैं उसे लेकर मंदिर में गई और शिव जी के सामने गाने लगी, क्योंकि पिक्चर में देखा था कि गाना गाने से सब ठीक हो जाता है। चोट तो ठीक नहीं हुई, ज़्यादा बिगड़ गई घर आने पर। बहुत पिटाई हुई, बहन के सिर पर 7 टांके आए, बस वही दिन सबसे अच्छे थे। सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मैंने बहुत मस्तियाँ की। मैंने दुकान के किराएदार की साइकिल के 1.5 पगिए पर बहुत सारे छेद करके उसको पंचर कर देता था और पास ही नवनिर्मित मकान में रात में पत्थर फेंकता था। गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए था। पर ठीक है, ये बचपन की शरारत है, बचपन की शैतानियाँ हैं, और ये हमारा बचपन हमारे साथ बना रहे, क्योंकि बचपन में मन कितना सच्चा और बच्चा होता है ना। बचपन में आपने शरारतें तो की हैं, कोई ऐसा काम किया जिसके लिए आपको शाबाशी मिली, आपकी पीठ ठोकी गई, वो बात भी हमारे साथ साझा कीजिए। और बताइएगा इस गीत में जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, उनका नाम क्या है, बताइएगा।

बच्चे मन के सच्चे, ये गीत हम सुन रहे थे दो कलियां फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़ में साहिल लुधियानवी के बोल और रवि के संगीत के साथ। और हमने आपसे एक बहुत सरल सा प्रश्न पूछा था कि ये बताइएगा कि इसमें जो अभिनेत्री हैं वो कौन है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि दोहरी भूमिका निभाते हुए नीतू सिंह इसमें हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। और हम आपसे पूछ रहे थे आपकी शरारतों के बारे में, और शरारतों के साथ हमने ये भी पूछा था कि ऐसा क्या किया कि जिसके लिए आपकी पीठ थपथपाई गई हो, तो ज़रूर से बताइएगा कहाँ कहाँ आपकी पीठ थपथपाई गई, बदमाश।

अच्छा तो हमने कर ली तो पीठ में पिटाई हुई, लेकिन कभी कभी वो पिटाई जो है वो बड़ी प्यार से सहलाते हुए भी आ जाती है, क्योंकि हम कुछ बढ़िया काम कराते हैं, तो वो भी साझा कीजिएगा। पर हमारे श्रोता जो हैं वो कम बदमाश नहीं रहे। पढ़ते पढ़ते मैं इस गीत के साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी, क्योंकि आपकी शैतानियों का पुलिंदा ही इतना बड़ा है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने बचपन में एक बार शैतानी की थी। मामला ऐसा था कि गणित विषय ने मुश्किल लगता था, तो एक बार मैंने होमवर्क नहीं किया, शिक्षक की डांडियाँ मार पड़ेगी, इस डर से मैंने घर से स्कूल के टाइम पर निकला तो सही, लेकिन नज़दीक ही पेड़ के पास बैठ गया। करीब एक घंटे बाद माँ किसी काम से निकली तो मुझे देख लिया, पास आकर बोली तू स्कूल ही गया? मैं कुछ बोल नहीं पाया, हाथ घसीट कर घर ले आई। फिर सच्चाई पता चलने के बाद बहुत मार पड़ी और उस दिन से बेवजह स्कूल कभी नहीं छोड़ी, लेकिन वो दिन याद करके आज भी हंसी आती है। अच्छा, हमारे श्रोता लिखते हैं बचपन में क्या नहीं किया, गर्मी की छुट्टियों में दादी के घर जाते थे, घर में बकरियां थीं जिन्हें हम नदी किनारे छोड़ जाते थे और वहीं नदी में नहाने लग जाते थे। मस्ती में कब टाइम निकल जाता था पता नहीं चलता था और माँ हमें खोजते हुए आती थी, उनको देख हम लोग दौड़ लगाते थे। दीदी तो निकल जाती, मैं माँ के साथ आ जाता और जो कुटाई पड़ती थी आहा क्या मज़ा आता था। तो ये बात तो बड़े मज़ेदार होते हैं, और कहते हैं कि माँ की मार भी बड़ी प्यारी होती है ना, बड़ी स्वादिष्ट होती है। हमारे गौर श्रोता लिखते हैं कि बचपन मानव जीवन का सबसे खूबसूरत दौरों में से एक होता है, यह खोज और अन्वेषण का समय है। इस अवस्था में दुनिया के बारे में खोज करते हैं, बच्चे के रूप में जीवन के आनंद की संभावनाओं को अंतहीन रोमांच समझ पाते हैं, बड़े होने पर दायरा बढ़ जाता है। स्वस्थ खुशहाल बचपन का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। बचपन मासूमियत और आश्चर्य का समय होता है, खेलना खोजबीन करना और एक बच्चा होने जैसी गतिविधियां खास होती हैं, तो क्योंकि सभी का बचपन बेफिक्री का हिस्सा है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं स्याही लगा के जनाब हीरो बन गए, क्या बात है, बहुत सारी बात। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि हम जो हैं वो शाबाशी वाला काम भी हमने किया है। पहले ज़माने में प्लास्टिक नहीं चलती थी और मुझे सिलाई का शौक था, तो मैंने मेरी माँ के पुराने कपड़े में एक थैला बना के दिखाया था तो उसमें शाबाशी मिली थी और पैसे भी मिले थे। क्या बात है, आप तो तब से ही जो पुरानी चीज़ें उसका उपयोग करना जानते हैं, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने बड़े प्यार से अपने बारे में लिखा है कि जो ये तकरीबन 7 साल के थे हमारे श्रोता, तो मम्मी जी के तकिए से 20 रुपये निकाले थे और पतंग की डोर खरीद कर खूब पतंग उड़ाए थे। जब चोरी का पता पिताजी को पड़ा था तो खूब पिटाई हुई थी। कड़ी दोपहर में उनके सारे कपड़े उतार कर धूप में छोड़ दिया गया था, बहुत रोए थे और तभी उनकी दादी ने उन्हें चुप कराया था और पापा को डांट भी पड़ी थी, और ये दिन ये भूलते नहीं हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन अक्सर क्या होता है, मासूमियत भरी शरारत के लिए बहुत मार पड़ती थी, कभी शरारत की हो तब ना की हो तो भी पड़ जाती थी। हाँ वो तो है कि जब जिसका दिल करे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है बचपन में मैंने टीचर को सर पर स्लेट मारी थी। अरे भाई ऐसे काम नहीं करने चाहिए, ये गलत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में आम के बाग थे, गर्मी के दिनों में बच्चे दमा चौकड़ी करते और पेड़ों पर चढ़ जाते। इकलौता बेटा होने के कारण माँ हमेशा पेड़ पर चढ़ने से मना करती थी, क्योंकि एक लड़के का पैर 1 साल पहले गिरने से टूट गया था। मना करने के बाद भी पेड़ पर चढ़ता था, पता नहीं होता था माँ को। लेकिन एक दिन माँ खोजते हुए बाग में पहुँच गई, बच्चों ने बताया कि देखो पेड़ पर चढ़ा है। मैं नीचे उतरा, माँ ने डंडे से खूब मारा, बाद में फिर पेड़ों पर चढ़ना बंद कर दिया। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि बचपन में शरारतों का अंबार था। पड़ोस की गुलाटी अंकल के हाथे में सब्जियां लगी थी, इसमें टमाटर बहुत लगे थे, सारे टमाटर अधपके होकर दिखाई दे रहे थे, खाने से मतलब नहीं था। अंकल उनके तरफ पिट्टू खेलने या रबड़ की बॉल ले जाने पर बहुत गुस्सा करते थे। अब उनके डांट का गुस्सा या टमाटर का लालच, हम भाई बहन बगल के टमाटर से सारे टमाटर तोड़ लाए और कुछ टमाटर हमने खाए और कुछ जो बच गए उनको हाथे में डाल दिया। कच्चे टमाटर पेट में जाकर हड़ताल कर दिए, उन्हें उल्टियाँ हुई, जब उल्टी हुई तो टमाटर तोड़ने का राज खुला। भैया को ज़्यादा लगा उल्टी होने से मैं बच गई, पर उनके हाथे में के बीच में हमारा आना जाना बंद हो गया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि चीनी के डब्बे में हाथ मारना, आम के बगीचों से आम खाना, टीचर के बोर्ड की तरफ मुड़ते ही क्लास में कागज के हवाई जहाज उड़ाना, इन शैतानियों के बाद मिलने वाली डांट या सजा भी बहुत प्यारी होती थी। चाहे कितनी भी बड़ी शरारत क्यों ना हो, प्यारी सी मुस्कान और सॉरी सुनकर सब साफ हो जाता था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोसाइटी की टोली के लीडर थे और ऐसी कोई छत पर नहीं गए थे जहाँ पर पतंग नहीं गई थी। बहुत बढ़िया बात हमारे श्रोताओं ने लिखी है। तो चलिए अपनी शरारतें और शाबाशियाँ बचपन की ज़रूर लिखते जाइए। ये एक गीत और उन सभी नटखटों के नाम जो बड़े होकर बहुत बड़े बहुत विशाल बन जाते हैं।

अमर प्रेम फिल्म से यह गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल आर डी वर्मन के संगीत के साथ। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे घर में 2 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक की एक सासू माँ है, एक नए मेहमान के आने की तैयारी चल रही है। जीवन का हर रंग रोज देखने के लिए मिलता है, जन्म की मासूमियत, बचपन की शरारतें, जवानी के सपने, संघर्ष की तपिश, रिश्तों की गर्माहट और अंत में सुकून ठहराव। सबसे सुंदर बात यह लगती है, जीवन किसी उपलब्धि से नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में खुशियाँ खोजने में, किसी की फूलों जैसी हंसी, किताबों से दोस्ती, परिवार का साथ, यही तो असली दौलत है। कल जो बच्चा था आज जिम्मेदारियों के साथ खड़ा है, इसलिए हर पड़ाव को जीना संजोना जरूरी है। जिंदगी तभी सुरमई बनती है जब उसमें अपने लोग, यादें और संघर्ष और प्यार सब साथ में चलते हैं। इतनी अच्छी बात लिखी है, बचपन कली जवानी, फूल और बुढ़ापा उसके साथ फल है, इसे बचपन की हंसी, जीवन का आगोश, बुढ़ापा समझदारी, इस रूप में देखा जाता है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। वह अंत में लिखते हैं कि जीवन का निचोड़ का फल है बुढ़ापा, और यही अनुभवों का कड़वा फल भूखता है, दूसरों को ज्ञान देता है। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है। चलिए अब हम चल रहे हैं, हमने आपसे बहुत सारी बातें करी थी और आपने भी अपनी बहुत सारी बातें लिखी हैं। हमारी एक श्रोता लिखती है कि स्कूल में लंच टाइम पर मैं और मेरे 2-3 साथी स्कूल के लिए पास ही खेत पर चले जाते थे, जहाँ पर इमली और आम के पेड़ थे, उन पर पत्थर मारते थे और फल गिरने पर उन्हें खा लेते थे। बहुत सी बार पत्थर वहाँ रहने वाले लोगों को लग जाते थे, तो इस सब में मार पड़ने के डर से हम चले जाते थे। हमारे श्रोता लिखते हैं कि शरारत बचपन में किसने नहीं की, बागों से आम, अमरूद, इमली ये सब तोड़कर खाना आम बात थी। हमने फिल्में बचपन से छुप छुप कर बहुत देखी है, क्रिकेट बहुत खेले हैं, अहो क्या बात है। और हमारे एक और श्रोता बड़े प्यार से बताते हैं ये जो फिल्म के गीत के बारे में, वो लिखते हैं कि फिल्म अमर प्रेम का गीत है, लता जी की आवाज़ है, आनंद बख्शी का गीत, आर डी वर्मन का संगीत, शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया गीत है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरे भैया देहरादून गए थे, मैं कुछ बड़ी थी तो मैं उनके पीछे पीछे TVS चलाई, लेकिन मेरे 2 छोटे भाई बहन उनने भी ट्राई किया, गाड़ी रेस होती थी, ज़्यादा तो नहीं लगा लेकिन थोड़ा गाड़ी को नुकसान हो गया, बाद में डांट पड़ी है। बिल्कुल सही बात है, सबने बाद में भाई ने आने के बाद सबको गाड़ी सिखाने का प्रॉमिस कर दिया। बचपन की शाबाशी याद नहीं है, ऐसा हमारे श्रोता लिखते, पर शरारत ज़रूर याद है और इतनी है कि गिनवाते गिनवाते प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, बाड़े में रहते थे, वहाँ 20 किराएदार थे, उसमें बारूद की सिगड़ी, मतलब सिगड़ी पर भोजन बनाया जाता था, सिगड़ी छत पर रख दी जाती थी ताकि धुआं ना हो। हम बच्चे उस सिगड़ी में लाल मिर्च डाल दिया करते थे, जिससे पूरे बारे में मिर्ची की गंध भर दुर्गंध भर जाती थी, वो पूरा बारा छींक छींक के परेशान हो जाता था। मेरी मम्मी मुझे बोलती थी बाग में जाना तो कच्चे आम तोड़कर नहीं खाना, पर हम कहाँ मानते थे, डंडे गुलेल से आम मार के खा भी लेते थे, जो बचता था घर ले आते थे, तब मम्मी मारती नहीं थी, कोई बात नहीं। हमारी श्रोता जो है कह रही हैं, रोटी बना रही हैं और कमेंट कर रही हैं, बस यही तो जीवन है, हम प्यार से हर रंग को जी लेते हैं। हमारे श्रोता बहुत खुश है कि उनके गीत को लिया गया। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि हम अपने बचपन में 10 वर्ष की उम्र में सुंदर कांड गाया था हारमोनियम बजाकर, हमें वो दिन याद आ रहा है, और ₹50 मिले थे पुरस्कार के रूप में, 11 दिन थे और ₹50 बहुत बड़ी चीज़ होती थी तब, ऐसा हम मानते हैं। हमारी श्रोता लिखती है कि बचपन में हमारी सहेली के दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था, वो लिख नहीं पाती थी, हम अपना भी लिख लिया करते थे, उसका भी लिख देते थे, और दोपहर में भोजन के समय में उसे खाना भी खिलाती थी। इस टीचर ने बड़ी तारीफ करी थी, हमारी सहेली के माता पिता को भी बताया था। ऐसे ही हमारे श्रोता एक और लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया इबारत है, जिसमें निस्वार्थ लिए हुए बचपन, दूसरी ओर अट्ठास लिए हुए यौवन, और सबका निचोड़ अनुभवी जीवन की प्रौणावस्था, इस उम्र तक आती आती यादों का गुलदस्ता बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, हमारे हम उम्र मामा जी ने मुझे चक्की में से सत्तू चोरी करवाई थी बचपन में, सुबह जब सबको पता चला तो मामा जी को तो डांट पड़ी, मुझे नहीं, क्योंकि मैं तो मेहमान बनकर गई थी। सही बात है। स्कूल के दिनों में गर्मियों के स्कूल में लड़कियों की अक्सर नकसीर फूट जाती थी, एक ही लड़की को हुआ, सारी लड़कियां डरकर भाग गई, पर मैं अपनी चचेरी बहन को देखा, ऐसे होते हैं, हम 2 सहेलियों ने मिलकर उसे ज़मीन पर लिटाया, उसकी नाक पोंछी, ठंडा पानी पिलाया और प्राथमिक उपचार किया, और स्कूल की टीचर को भी बता दिया, और बड़ी दीदी ने बड़ी पीठ थपथपाई थी आपकी। हमारी श्रोता लिखते हैं, गाय माता के बछड़े को खोल देते थे सुबह सुबह, दूध खाली कर पी जाता था तो पिताजी बहुत मारते थे, और खोलते इसलिए थे क्योंकि माँ बेटे दोनों रो रहे होते थे। हमारी कौशलता लिखती है कि एक बात और, हम अपनी सिर पर चुनी रख के आँखें बंद करके मस्ती में बैठ जाते, चुन्नी रख के बैठ जाते थे, और सबसे सब किसे कहते थे, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना का तो अर्थ पता ही नहीं था। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरा दोस्त और मैं रात को मेन मार्केट में रोड के दोनों तरफ खड़े हो जाते थे, हाँ, और एक रस्सी रखते थे, कोई निकलता था तो दोनों
दोस्त तो रस्सी को ऊपर कर देते थे, राह गिर गिर जाते थे, इस चक्कर में कई बार मार भी पड़े, ये तो गलत बात है। हमारे एक श्रोता सातवीं कक्षा में प्रथम आए थे और उन्हें शाबाशी मिली थी 1974 में। हम आपको आज भी शाबाशी देते हैं उस बात के लिए। बचपन में नवरात्रि में 9 दिन के सजाने का काम उनकी टोली करती थी, बहुत बढ़िया बात। हमारी शरारतें ऐसी थी, हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मम्मी कहीं जाती थी तो कभी जीन्स टी शर्ट भाई की पहनकर और अपनी सहेली को साड़ी और लहंगा पहनाकर डांस करते थे, फिल्मों को देखकर, फिर कैप लगाकर क्रिकेट खेलना घर के अंदर बिना नुकसान किया। बहुत अच्छे बच्चे थे। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी। अब चलते हैं हम उस ओर जो एक अलग दौर है, वो दौर में आपने जो विषय पढ़े हैं उन विषयों में से आपका पसंदीदा विषय कौन था, जल्दी से बताइएगा। आपके पसंदीदा विषय को बताते हुए ये भी बता दीजिए ये गीत में आवाज़ किसकी है।

हम सुन रहे थे जख्म फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल एवं करीम के संगीत के साथ। हमने आपसे पूछा था कि आवाज़ किसकी है, तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, अलका याग्निक की आवाज़ है। और हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि आपको कौन सा विषय पसंद है, तो हमारे श्रोताओं ने अपने अपने विषयों के बारे में बताया है कि वो संभाजी, एक और श्रोता लिखते हैं स्कॉलरशिप की परीक्षा संभाजी नगर डिवीज़न से दूसरे नंबर पर पास हुई, ये बहुत प्यारा किस्सा है और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे श्रोता को फिजिक्स मैथ्स रसायन पसंद थे और 9वीं 10वीं में उन्होंने यही विषय लिए थे। हमारे श्रोताओं का कहना है कि उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी और टीचर से वेरी गुड मिलता था। हमारे श्रोता लिखते हैं हिंदी रहा ये बिंदिया से प्रेम का सुमन याद नहीं, ये कुछ बात लिख रहे हैं और बहुत अच्छे से उस बात को बता रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि शब्द किताब के बहुवचन को एक वचन बना दिया, कुछ उन्होंने बताया है। और इसके साथ ही वह लिखते हैं कि बहुत सारे श्रोताओं ने बताया कि उन्हें हिंदी में बहुत अच्छी थी और आगे चलकर उन्होंने 25 देश विदेश में भ्रमण भी उन्होंने किया, ऐसा हमारे श्रोता कहते हैं। और हमारे श्रोता बताते हैं कि उन्हें डायग्राम बनाना बहुत पसंद है, इसलिए उनका सब्जेक्ट, फेवरेट सब्जेक्ट बायो, किसी का भूगोल बहुत पसंद है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और दूसरा पसंदीदा विषय उनको संस्कृत का विषय। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आप गाने कम सुनवा रही हैं, तो क्या करें, आप इतने प्यारे संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम आपको देते हैं और साथ ही अगला गीत भी बड़े प्यार से आपको सौंप देते हैं। अगला प्रश्न ये है कि मुझे इसका उत्तर सच में नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 16 बरस को ही बाली उम्र क्यों कहते हैं, बताइएगा इसका उत्तर, आपके हिसाब से क्या है इसका उत्तर। और ये बताने के साथ ये बता दीजिएगा कि इसके संगीतकार कौन है।

0: हम सुन रहे थे एक दूजे के लिए फिल्म से यह गीत, लता मंगेशकर अनूप जलोटा ने इसे गाया, आनंद बख्शी के बोल हैं। और आपसे पूछा था कि इसमें संगीतकार कौन है, तो आपने सही उत्तर दिया कि जो इसके संगीतकार हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हैं। बिल्कुल सही उत्तर। हमने आपसे पूछा था कि 16 बरस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो आपने मुझे तो ज्ञान ही मिल गया कि 16 बरस में दोनों ओर से आपका यौवन आ रहा होता है और बचपना छूट रहा होता है, किशोरावस्था छूट रही होती है और हार्मोनल बदलाव होते हैं, ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। और सौंदर्य आकर्षण जो है, निखार भी बड़ा खूबसूरत होता है ऐसा लगता है, इसलिए कवि की कल्पना 16 बरस तक पहुँचते पहुँचते जो बदलाव है ना, तो यौवन का दस्तक है, इसलिए कवि ने इस बात की कल्पना की है। बहुत बढ़िया बात आपने बताई और बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। उसके बाद प्रेम होता है, जीवन के संघर्ष होते हैं, हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ साथी बनते हैं और साथी बनने के बाद परिवार बनाते हैं, और उस परिवार के बाद जब सुख चैन से एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो शायद ये गीत हम सभी के लिए, हम सभी के पूरे परिवार के लिए बनता है। तो आइए सुनते हैं ये गीत, आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

आप सबके साथ ये सफर बहुत अच्छा बीता, आपके जीवन में भी ऐसे ही प्यार बना रहे, आपका जीवन मंगलमय हो, ये प्रार्थना करते हैं आज के इस कार्यक्रम के साथ सुरीला सफर में। सुरीले सफर के साथ आप सबके लिए बहुत धन्यवाद, और चलिए विदा लेते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर से। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, आप सबका जीवन मंगलमय हो।

0: 3 PM. Last night, Sunrisers Hyderabad confirmed its place in the playoff, defeating Chennai Super Kings by 5 wickets at M.H. Chidambaram Stadium. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to attend 3rd India-Nordic Summit in Oslo, aimed at strengthening cooperation in technology, renewable energy, defence and trade. Prime Minister Modi and his Swedish counterpart Ulf Kristersson, in a joint newspaper article, stress on partnerships in times of global uncertainty. Supreme Court refuses to recall its earlier order of keeping sterilised or vaccinated stray dogs in shelters. IMD issues yellow alert for heat wave in national capital for next 3 days. And in IPL cricket, Rajasthan Royals to take on Lucknow Super Giants in Jaipur this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्यूल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
2: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
1: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
3: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद हैं। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसी कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
6: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
7: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
6: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया, ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपये है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपये और डीजल 94.08 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109.70 रुपये और डीजल की 96.07 रुपये दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104.49 रुपये और डीजल की 96.11 रुपये प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
3: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
8: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451 जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी नवीकरणीय ऊर्जा रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगने में।

हम सुन रहे थे ये गीत ताजमहल फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की आवाज़ों में, साहिल लुधियानवी के बोल और रोशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सेहरा फिल्म से, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और रामलाल

जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।
2: वो जब याद आ

0: हम सुन रहे थे पारसमणि फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, असद भोपाली के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
5: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
6: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
7: देना साथ मेरा ओ हम नवा,
1: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
8: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

मुझे जीने दो, इस फिल्म का ये गीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में, साहिल लुधियानवी के बोल और जयदेव के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत, मेरी सूरत तेरी आंखें। इस फिल्म से मन्ना डे की आवाज़ होगी, शैलेंद्र के हैं बोल और सचिन देववर्मन का है संगीत। पूछो ना कैसे।

हम सुन रहे थे दोस्ती फिल्म का यह गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए चलते हैं सदाबहार नगमे के अंतिम गीत की ओर जो कि है हमराही फिल्म से। मुबारक बेगम मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत। आज्ञा दीजिए इस गीत के साथ, आप सबका कल्याण हो, नमस्कार। मुझको

0: सखी सहेली
1: सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों और सोनाली आपको भी दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
2: दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली बिल्कुल अच्छे हैं और देखो जो बाहर ये जो गर्मी से हमारी जो दो दो हाथ हम लोगों के हो रहे हैं उससे संभल के बच के चल रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे सारे सुनने वाले बल्कि सभी लोग अपना बहुत अच्छे से खूब अच्छा ध्यान रख रहे होंगे।
2: हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि भाई मुंबई में बहुत गर्मी है तो सखियों अपना ध्यान रखिए।
1: अरे धन्यवाद। और हम सच

0: और हाँ, एक बार क्लास में पढ़ी थी, वो बाद में हम बताएंगे जब हम इस सेगमेंट को लेंगे, वो क्यों पढ़ी थी वो भी बताएंगे। लेकिन कभी ऐसे परीक्षा के परिणाम के लिए मारनी पड़ी, लेकिन हमारे पिताजी की आंखें ही बस ऐसी हुआ करती थी ना, वो हमें नहीं डांटते थे, वो मम्मी के नाम को लेके मम्मी को बोलते थे क्या हो रहा है ये, बस इतना ही काफी था हम लोगों को पढ़ाई करने के लिए।
1: यानी वो जमाना ऐसा था कि बच्चे सिर्फ मम्मी पापा के आंखों से डर जाते थे, है ना?
0: आंखों से डर जाते थे।
1: और वैसे मुहावरों की दुनिया में आंखों का तारा होना, तो जैसे बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी के आंखों के तारे होते हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि विविध भारती जो है वो हमारी आंखों का तारा है।
0: क्या बात है। और ऐसे ही तो हमारे सारे श्रोता इस कार्यक्रम के तारे हैं, है ना?
1: सचमुच
0: जगमगाते हुए
1: जी। और उद्यमी महिला इस सेगमेंट के अंतर्गत आज हम जानकारी देंगे कल्पना सरोज के बारे में
0: जी। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने परीक्षा में कुछ गलतियां की हो, या कोई और भी अनुभव, सिर्फ परीक्षा की बात नहीं है, जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी आदत नहीं है या हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में हमें दिल में बहुत पछतावा देता है,
1: और
0: हम
1: उसको कचोटते रहता है
0: और ऐसा लगता है हाय मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसी हूं नहीं, या मैं तो ऐसा था नहीं, ऐसा मैंने क्यों कर लिया। ये अपराध बोध जो है ना, ये दिल को बहुत घर कर जाता है और कहीं ना कहीं वो हमें सताता रहता है। तो इससे बचना बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके, कहीं हम वो अटक के न रह जाएं। इसके बारे में हम बात करेंगे और हमारे श्रोताओं ने लिख के भी भेजा है, लेकिन आप हमें अब कोई घटना भी बताइए अगर आप चाहते हैं तो,
1: अगर कि बताना चाहते हैं
0: कि कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा अनुभव जहां आपको लगता है कि मैंने ऐसा कर दिया और उसका मुझे बड़ा पछतावा है, तो कहीं चाहते हैं कि दिल खोल कर कहिए, और बात अगर आपको सही लगती है तो बताइए। तब तक ये गीत सुनिए।

0: जैसा कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आए और अपने दोस्तों को लेकर आए।
1: तो भाई, हम तो अपने श्रोताओं से कहेंगे सृजन भारती के इस जो अंक में जो प्रोग्राम होने वाला है, अगर आपकी कोई रिश्तेदार या आप कोई खुद भी हैं तो ज़रूर पहुँचे इस कार्यक्रम में। सभी का आमंत्रण है।
2: बिल्कुल, स्वागत है सभी का। और आज हम जैसे उद्यमी महिला के बारे में जानकारी देते, तो आज हमने चुना है कल्पना सरोज
1: जी।
2: तो कल्पना सरोज भारत की एक प्रसिद्ध उद्योगपति, समाजसेवी और प्रेरणादायी महिला उद्यमी है। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्हें संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की मिसाल भी माना जाता है।
1: कमानी ट्यूब नामक एक कंपनी है जो बंद होने के कगार पर थी, सोनाली। उस समय उस कंपनी को फिर से सफल बनाने का पूरा श्रेय जो है वो कल्पना सरोज को जाता है। कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक गाँव है रोबरखेड़ा, वहाँ हुआ था। उनके पिता पुलिस विभाग में काम करते थे और जैसा कि होता चला आ रहा है अक्सर कि बहुत कम उम्र में उनका विवाह हो गया था। और वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां उन्हें आ रही थी और उन सब कठिनाइयों का वो डट कर मुकाबला कर रही थी।
2: और फिर जैसे होता है ना कि दीपा की बहुत सारी बाधाएं आई, उसके बाद में उन्होंने मन में ठान लिया कि कुछ तो जिंदगी में कर गुजरना है। और वे मुंबई चली आई और मुंबई आने के बाद कल्पना सरोज ने एक सिलाई कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत और लगन से अपना छोटा व्यवसाय आरंभ किया। पहले सिलाई का काम किया, फिर फर्नीचर और रियल एस्टेट के क्षेत्र में कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपनी एक पहचान सफल उद्यमी महिला के रूप में बना ली।
1: और कल्पना सरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि है कमानी ट्यूब्स, ये कंपनी को पुनर्जीवित करना। कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी और लगभग बंद होने की स्थिति में ही थी। कल्पना सरोज ने कंपनी की जिम्मेदारी संभाली, कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच एक संतुलन बनाया और अपने प्रबंधन कौशल से कंपनी को फिर से सफलता के मार्ग पर लेकर आई। वो
2: यानी कितनी बड़ी बात है ना दीपा, कि यानी किसी बंद पड़ने जा रही थी वो कंपनी और उसमें खुद जाकर और उसमें आगे बढ़ना, यानी कितना ज्यादा संघर्ष किया होगा उन्होंने।
1: सही बात है, बिल्कुल। और फिर साल 2013 में भारत सरकार ने उन्हें व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया। वे कई मंचों पर प्रेरणादायक वक्ता के रूप में भी जानी जाती है।
2: और इसके अलावा समाज के लिए भी उन्होंने योगदान दिया है। कल्पना सरोज केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं रही बल्कि समाज सेवा और युवाओं को प्रेरित करने का कार्य भी करती है। विशेष रूप से महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है। और दीपा, कल्पना सरोज का जीवन ही सिखाता है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आए, सफलता की राह में अगर बाधा है तो उससे हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, मेहनत और आगे बढ़ने की इच्छा हो तो उनका जीवन संघर्ष सफलता मिली जाती है। और एक प्रेरणादायक कहानी है उनकी जो हर व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम ये सेगमेंट लेते हैं ना दीपा, तब हमें इतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि एक महिला अगर कुछ मन में ठान ले तो वे कर गुजरती ही है।
1: बिल्कुल। और उसके लिए कोई आपको आपकी शैक्षणिक जो
2: योग्यता
1: है उसकी भी ज़रूरत एक बार के लिए तो थोड़ी पीछे हो जाती है। फिर वो मन में जो आपका जुनून, जोश जो आपका रहता

0: ना, कहीं से एक आंतरिक ऊर्जा जब निकल के आती तो वो शक्ति जो है, मात्र शक्ति, पता नहीं क्या है उसमें, क्या जज्बा है कि बस वो जब करने के लिए ठान लेती है तो कर ही गुजरती है।
1: और उसमें आत्मविश्वास अगर मिल जाए साथ में तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल सही कहा। और इस बात पर अभी तो हम लेते हैं एक अंतराल और भी बातें करेंगे
1: जी।

0: देखो सोनाली, हम सुन रहे हैं ये गाना धीरे धीरे मचल, और मन एकदम ऐसा ना उसमें खो सा गया था, तुम्हें नहीं लगता?
1: बिल्कुल खो सी गई थी, इतने सुंदर इसका संगीत है और लता जी की आवाज, हा हा हा क्या कहने बहुत सुंदर गीत
0: बिल्कुल। और देखो ना
1: ये गाने भी हमारे आँख के तारे हो जाते हैं
0: बस मैं मन में सोच रही थी शब्द तुमने दे दिए, इसे कहते हैं प्यार, है ना दोस्तों, सही कहा या नहीं?
1: बिल्कुल सही कहा। कभी कभी ऐसा था ना, हमारे दोनों की मन की बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
0: और
1: दोनों के
0: मुंह से। वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है, तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा। देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही ना
1: कोई ना कोई गीत तो आएगा ही। और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना। और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहाँ तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: तो बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
1: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
0: हाँ,
1: है ना?
0: बिल्कुल
1: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आँख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं आग का तारा कहते हैं, और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्ति क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात है? हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
0: और देखो होना भी चाहिए
1: जी।
0: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकती हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
1: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ के आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मंझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ के आंख के तारे ही होते हैं।
0: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद कितनी मिलती है ना
1: जी।

0: मनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आँख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आँख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं, माँ दुखी हो जाती है, लेकिन उनकी आंखों का तारा बनने में हमारी कोई कमी नहीं होती, उनके लिए हम वैसे ही बने होते हैं,
1: वैसे ही बने होते हैं। और फिर क्या होता है कि एक वक्त के बाद हमें ऐसा लगता है अरे मैंने फालतू में माँ का दिल दुखा दिया, और हम अपराध बोध से ग्रस्त भी हो जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल,
1: ऐसे हमारी इतनी प्यारी है, वो कहती है कि देर रात तक ना जागो, पर हम जागते हैं, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसा करो ऐसे कपड़े पहनो, इस तरह के कपड़े पहनो, मम्मी डांटती है। और फिर कभी
0: और जब हाँ कुछ सालों के बाद जब हम उस पे चिंतन करते हैं तो हमें लगता है कि माँ कितना सही कहती थी और हम कितना चिढ़ गए उस वक्त। और फिर वो एक मन में ना कहते हैं ना हम जैसे कि पछतावा होने लगता है,
1: और अगर माँ ना हो इस दुनिया में हाँ, तब तो और भी बुरा लगता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा। और बात तो तुमने बहुत गंभीर शुरू कर दी है सोनाली, लेकिन वक्त हो गया एक अंतराल का, तो अंतराल लेके इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुँचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपनाकर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियां हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखिए आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्म क्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियाँ हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उसे पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देशे कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है, तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वह शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो दिल की बात कहीं किसी को कह देनी चाहिए, कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सोनाली, मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप जरा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी, किसी से खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे, आप ही तो रोज़ स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। ज़िंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर नहीं जिए। वहीं एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरी दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहाँ पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है
0: बिल्कुल। और आपने देखिए, माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी, जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश, हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई, इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल जाता है।
1: पर ऐसा होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैंने अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की, और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो।
0: बिल्कुल, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं, भाई पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ, कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई, अगली बार आप मेहनत करके, हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम। उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है, लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो, मम्मी तो यहाँ भी काम आई
1: का तारा होते ना बच्चे।
0: इसीलिए
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार। हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूं। क्या बात है।
0: और एक हमारे साथी ने भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी, हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में, यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए, ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। मैं अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला

0: चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था, हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर दो नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया
1: है। बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कने बढ़ा देता है, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है, एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताज़ा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती है, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती है, परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं, परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो बस धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे तो अब भुगतो उसका नतीजा। और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं। और डिमांड पूरी हो जाती थी, पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
0: और तो गाना सुन ले
1: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सिल लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये। नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर यादें बनकर रह जाती है। तो भाई अगर आपने वादा किया है तो आपको अपनी बिटिया को गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा, और हमें भी आपको

0: सोनाली, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के।
0: चलो।

0: सॉरी, आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।

0: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
1: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
0: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है
1: कि वो आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
0: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच गया हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहाँ से शुरू हुई?
1: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी, जहाँ से मैं भाग जाती थी क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूज़िक

0: ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से,
1: जी
0: तो
1: जी
0: वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली,
1: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
0: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जाकर के शुरू हुआ।
1: जी,
0: अच्छा
1: जी।
0: लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए
1: जी,
0: तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं। तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
1: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक कहते हैं ना गाड़ियों की और लोगों की उस ज़माने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
0: अच्छा,
1: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया। एंड आई वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भाई आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूज़िक हॉल पे गई और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
0: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
1: कहां
0: है
1: कहां से कहां ये बात देखिए।
0: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ, लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है। तो क्यों ना हम ये गाना,
1: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा और यहाँ से एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
0: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
1: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहाँ, हम तो खड़े हैं यहाँ,

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है
0: जी।
1: मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन में गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल पे आपको गाना।

बैठ के गाना, तो वो देख समझ गई। वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है, और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी, और म्यूज़िक भी, म्यूज़िक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: जहाँ तक हौसला अफजाई की बात है, जैसे अभी आपने बताया कि लता जी ने आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बनाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं
1: जी। अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। तो मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं, कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे। और जो गाने वाले थे वो भी, अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है। समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
0: इंस्टेंट फूड की तरह
1: बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था
0: जी। हाँ। इतना पेशेंस रखते थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सकें।
1: और जो इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन, वो लेवल पे रिहर्सल। हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाओ है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है
1: जी। कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी। जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं, और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
1: अच्छा
0: जी हाँ, फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था। और उसका एक गाना था, मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
1: लेकिन एक चीज है
0: जी,
1: आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा वैसे बहुत अच्छा लगा,
0: अच्छा लगा
1: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
0: बहुत शुक्रिया
1: हमेशा भूलेगी। कमल जी ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
0: नहीं बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके। और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है, और ये आना चाहिए तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती
0: थी? शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज थी और शायद वो क्वालिटी के क्लियर कट आवाज है, एकदम सीधी सादी आवाज है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो, तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक ख़ास रियाज चाहिए, तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे एक गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का, गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूंगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ आता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस ज़माने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्पत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में आप ही क्या सभी के मन में इस किस्म की चीज़ हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गाए हैं।
1: अच्छा
0: जी।

0: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
1: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा कहते ना टॉप पे रहा काफ़ी दिनों तक, और यहीं नहीं जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
0: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
1: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है, उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद में रेडियो पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के ज़रिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम कहते हैं ना रेडियो के ज़रिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी ज़िंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुकी हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो नहीं सकती, ज़रूर मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद पार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
0: तो कैसा काम चल रहा है यार?
1: अच्छा चल रहा है, अभी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
0: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा रहा
1: है? हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारू, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मज़ेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी।
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी।
0: और फिल्मों में की संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हट करके हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूजिक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस जमाने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गजल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गज़लों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो ये तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रज़ा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूँगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप ज़रूर सुनवाइए। फैज़ अहमद फैज़ की ये रचना और बोल है, आज यूं मौज दर मौज गम थम गया।

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुई?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तजुब करेंगे, ऐसे ऐसे रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलें थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुंदरता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ, वो मुझे बहुत आनंद देता है।
0: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और तृप्ति नहीं होती, और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
1: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें

0: कमल जी, मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
1: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
0: जी,
1: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की एक परंपरा भी आपने शुरू की
0: जी।
1: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
0: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आइलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आइलैंड है। और उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा अच्छे से मैंने शो की तैयारियां होती थी।
1: अच्छा।
0: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
1: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं। तो
0: बड़ी अच्छी बात कही आपने।
1: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
0: फिल्मों से रही है।
1: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुकी होंगी, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
0: जी मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम ईस्ट अफ्रीका जाएं कोई अच्छे कलाकार के साथ।
1: तो कैसा रिस्पांस रहता है लोगों का?
0: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है स्टेज का, एक नशा है अच्छी चीज़ पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खासतौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूं मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूं या खुद गाऊं। अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूं कि जहां मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामास छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है नीला पानी सफेद रेत पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूज़िक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूज़िक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं।

0: कमल जी, जिंदगी में पुरस्कारों का और प्रोत्साहन का बहुत महत्व होता है, वाहवाही का, शाबाशी का, इन सब के अपने अपने महत्व हैं।
1: जी।
0: तो आपको पुरस्कार भी मिले होंगे और उपलब्धियां भी रही होंगी जिंदगी में।
1: ढेर सारे मिले हैं, बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे ख्याल में गलत व्यक्ति को इन्होंने दे दिया है, लेकिन मिला जरूर है मुझे। अच्छा। मैं 5 साल की थी तब मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। जब मैं दार इस्लाम में थी तो मुझे गोल्ड मेडल मिला था, फिर मैं जब यहाँ आई तो मुझे साइकिल कॉन्टेस्ट में मुझे बड़ी शील्ड मिली और वो भी एक किस्म का प्राइज था। फिर सुरसिंगार संसद की तरफ से फिल्म तानसेन बनी थी, जिसमें मैंने महेंद्र कपूर के साथ एक क्लासिकल ड्यूएट गाया था, उसके लिए मुझे एक ट्रॉफी मिली थी। और लीलोड़ी धरती के लिए मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 consecutive years बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला।
0: अब चूंकि ये प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव आ चुका है
1: जी,
0: आप क्या कहना चाहेंगी, कोई बात मन में रह गई हो जो आप हमारे सुनने वालों से कहना चाहती हैं?
1: जी, मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि अवार्ड्स तो लाइफ में मिलते रहते हैं, शायद और भी मिलेंगे आगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूंगी कि भाइयों और बहनों, आप मेरे गानों को सुनिए, जैसा पहले आप मुझे प्यार देते थे वैसा ही प्यार अब भी दीजिए, तो शायद कुछ और गाने गाने का मेरा दिल करेगा और आपके सामने मैं वो पेश कर सकूं।
0: क्या बात है, इस वक्त तो आपके किसी गीत में खोने को जी चाहता है।
1: बॉम्बे में जब भी मॉनसून का मौसम होता था, काले काले बादल मुंबई शहर पे आ जाता था, तो आपका रेडियो स्टेशन ये गाना जरूर बजाता था और वो गाना है गरजत बरसत सावन आयो।

0: कमल बारोड़ जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए, सेल्यूलॉइड के सितारे के लिए वक्त दिया और इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत और दिलचस्प बातचीत आपसे हुई, इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं आपके प्रति कि जो सक्रियता आपने कला के क्षेत्र में अभी भी बनाए रखी है वो इसी तरह से बनी रहे और इसी तरह से आपको सफलताएं मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपने मुझे आज स्टूडियो में बुलाया, इतना सारा मान दिया, सम्मान दिया, लोगों के सामने फिर से बोलने का मौका दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।

सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से कमल शर्मा की बातचीत। तकनीकी सहयोग था माणिक राव गायकवाड़ का और विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। सेल्यूलॉइड

0: जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। हमारी सायंकालीन सभा में तमाम सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन। आइए अब आपको जानकारी दिए देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

नियमित कार्यक्रम हमारा आप सुन सकते हैं गीता संदेश, जिसका समय रहेगा शाम 6:20 पर और प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर विशंभर दास की। युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:30 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी लेकर हम आएंगे शाम 6:30 पर और कार्यक्रम ग्राम संसार का आनंद आप ले सकते हैं शाम 7:00।

श्रोताओं, आज है मंगलवार और आज का इंतज़ार आपको और हमें सभी को रहता है। आज आपकी प्रतिक्रियाओं पर जो आप ईमेल्स भेजते हैं, जिसमें शिकायतें, सुझाव या कोई तारीफ होती है, उन सभी का पढ़ना होगा, उनका जवाब देना होगा। वो होगा कार्यक्रम आपकी बात शाम 7:30 पर और रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गाने नए पुराने। रात्रि 10 बजे आपकी फरमाइशें पूरी की जाएंगी। कार्यक्रम होगा चांदनी रातें, जिसमें आप सुन सकते हैं अपनी फरमाइश के फिल्मी गीत। हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे। रात्रि 9 बजे होगा, 9:15 पर होगा कार्यक्रम आपके लिए, और कार्यक्रम छाया गीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 9:30 पर।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिषमा की ओर से। और आप सुन रहे हैं एक फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जिसे आप सभी पसंद करते हैं, सराहते हैं, गाने नए पुराने। जी हाँ, नए पुराने गीतों का सुरीला सा सफ़र। और जब इतनी ही ख़ास सी ये बातों के संगीत, वो जादू जो पीढ़ियों को जोड़ता है, पुराने गीत जहाँ दिल को सुकून देते हैं, तो दोस्तों नए गीत जीवन में नई उमंग भर देते हैं। आइए यादों का तराना, और इस खूबसूरत सफ़र में हमारे साथ आप चलिए जहाँ हर गीत एक एहसास होगा और हर एक धुन एक कहानी होगी। अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर सुनेंगे कुछ सदाबहार पुराने नगमे और कुछ दिल को छू लेने वाले नए गीत। तो शुरुआत करते हैं इस एक बेहद ही खूबसूरत से, शानदार से गीत के साथ। और फिल्म का नाम है सुजाता, आवाज़ आशा भोसले की, गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है सचिन देव बर्मन ने।

और आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं फिल्म जहर से। आवाजें हैं श्रेया घोषाल की, आवाज श्रेया घोषाल की, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम जहर।

और कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है फिल्म झुक गया आसमां से, आवाज मोहम्मद रफी की, हसरत जयपुरी की शब्द रचना जिसे लयबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

और ये कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति सुनते हैं फिल्म मुन्ना भाई MBBS से। आवाजें हैं विनोद राठौड़ और श्रेया घोषाल की, गीत संगीत अनु मलिक का है और गीत को लिखा है राहत इंदौरी ने।

और दोस्तों इसी गीत के साथ समाप्ति की इजाज़त चाहेंगे आपसे इस कार्यक्रम के, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि गर्मियों के इस मौसम में लू से बचाव बेहद ज़रूरी है। तेज़ धूप और गर्म हवाएं शरीर को जल्दी प्रभावित करती हैं, इसलिए कुछ सावधानी अपनाना बहुत आवश्यक है। आप यदि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक अनावश्यक बाहर निकलने से बचें तो यह आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं घर से निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढकें, साथ ही हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी या ORS का सेवन कर सकते हैं आप। वहीं खाली पेट धूप में ना जाएं। यदि चक्कर आता है या सिर दर्द या अधिक कमजोरी महसूस आप करते हैं तो तुरंत छांव में आराम करें और पानी पिएं। सावधानी ही सुरक्षा है, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। और इसी के साथ इस कार्यक्रम से इजाज़त दें, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार। ज्योतिष्मा की ओर से अपने पन की बातें, मिठास की बातें, संगीत और रंगत और जानकारियों का खजाना है ये कार्यक्रम आपके लिए। जीवन की इस भाग दौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो मन को सुकून दें, आपके चेहरे पर मुस्कान लाएं और आपको कुछ आपकी जानकारियों में इजाफा भी दे जाएं। वहीं उद्देश्य यही है हमारा इस खूबसूरत से कार्यक्रम का, जहां आपसे बातें भी हों, आपके विचारों से भी मतलब जो आजकल चल रहा है उससे भी आपको अवगत कराएं, साथ ही जो सपने हैं आपके उनकी और भी कुछ परवाज हम भी देना चाहेंगे। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं उन विषयों की जो आज के युवाओं से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, चाहे वे आपका शिक्षा हो, करियर हो, समाज हो, संस्कृति या देश दुनिया या कैसी भी परिस्थितियाँ। साथियों, आज का युवा केवल अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता बल्कि देश और समाज की जिम्मेदारियों को भी समझता है। वर्तमान समय में विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और युद्ध जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में युवाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। युद्ध कभी भी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, शांति, संवाद और समझदारी ही मानवता का सबसे बड़ा मार्ग है। और युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वह समाज के अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसलिए जागरूक बनिए, एकता और भाईचारे का संदेश फैलाना है आप सभी को और देश के उज्जवल भविष्य के निर्माण में भी भागीदारी निभानी है। और युववाणी ये जो प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए, उसमें जहाँ आपको आपकी सोच को एक नई उड़ान देने की कोशिश की जाती है। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं गीत के साथ, और गीत के साथ करेंगे आपसे बातें।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम युववाणी में दोस्तों, और आज है विश्व निष्पक्ष खेल दिवस। हर वर्ष खेलों में ईमानदारी, अनुशासन और खेल भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है आज का ये खास दिन, और इसका मुख्य संदेश रहता है जीत से पहले इंसानियत और सम्मान। खेल केवल मनोरंजन या प्रतियोगिता का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमें अनुशासन, टीम वर्क, धैर्य और आपसी सम्मान भी सिखाते हैं। निष्पक्ष खेल का अर्थ है बिना किसी धोखाधड़ी, पक्षपात या गलत तरीके के ईमानदारी से खेलना। और आज के समय में खेलों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण कई बार खिलाड़ी जीतने के लिए गलत रास्ते अपना लेते हैं, जैसे डोपिंग, चीटिंग या नियमों का उल्लंघन। यह खेल भावना के विरुद्ध है, कतई विरुद्ध। निष्पक्ष खेल दिवस हमें याद दिलाता है कि असली खिलाड़ी वही है जो नियमों का पालन करते हुए सम्मानपूर्वक खेलता है और हार जीत दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। युवाओं के लिए यह दिवस विशेष प्रेरणा देता है कि वे खेलों के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्कूल्स और कॉलेजेस में इस अवसर पर कई खेल प्रतियोगिताएं या जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें भाषण हो, शपथ समारोह जैसे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि विद्यार्थियों में खेल भावना विकसित हो सके। खेल हमें जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर एकता और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। मैदान में सभी खिलाड़ी एक समान होते हैं, तो इस विश्व खेल निष्पक्ष दिवस पर हम संकल्प लें कि खेलों में हमेशा हम ईमानदारी, अनुशासन और सम्मान की भावना बनाए रखेंगे तथा स्वस्थ और सकारात्मक खेल संस्कृति को आगे निरंतर बढ़ाते रहेंगे।

0: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
1: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
0: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
2: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
0: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
1: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
0: आकाशवाणी
2: विश्वास की आवाज।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों, युवाओं और खेलों का रिश्ता बहुत गहरा है। खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास का भी महत्वपूर्ण आधार है। खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना विकसित करते हैं और आज भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की जा रही हैं, जैसे भारत सरकार का खेलो इंडिया अभियान, युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच देने का एक बड़ा प्रयास है। इसके अंतर्गत स्कूल्स और कॉलेज स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा फिट इंडिया मूवमेंट भी युवाओं को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। योग, दौड़, व्यायाम और खेलों को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जाता है। खेलों की दुनिया में आज युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध हैं। बच्चे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, एथलेटिक्स, शूटिंग, तीरंदाजी, तैराकी और योग जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य बना रहे हैं। खेल केवल खिलाड़ी बनने तक सीमित नहीं, युवा स्पोर्ट्स कोच, फिटनेस ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स कमेंटेटर, खेल पत्रकार और स्पोर्ट्स मैनेजर के रूप में भी अपना करियर चुन सकते हैं। और आज भारतीय खिलाड़ी विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और न जाने कितनी ही लंबी लिस्ट है हिंदुस्तान के पास। जैसे खिलाड़ियों ने युवाओं को नई प्रेरणा भी दी है। खेल युवाओं को नशे और नकारात्मक सोच से भी दूर रखते हैं तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए हर युवा को पढ़ाई के साथ किसी न किसी खेल से अवश्य जुड़ना चाहिए और हम सभी खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, अनुशासित रखें और ऊर्जावान रखें। साथ ही भारत के निर्माण में हम योगदान भी दें।

कहेंगे कि युवाणी कार्यक्रम आपको पसंद आया हो ऐसी उम्मीद है हमें। खेल है स्वास्थ्य, युवा शक्ति तथा सकारात्मक सोच से जुड़ी जो आपसे आज बातें की, जीवन में आपके नई प्रेरणा लेकर आए। याद रखिए कि युवा ही देश की सबसे बड़ी ताकत है और सही दिशा में बढ़ा हर कदम देश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। साथ ही अपने स्वस्थ शरीर और मजबूत मन, इसको अब इस पर काम कीजिए ताकि जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है उससे आप कभी दो चार ना हो। साथ ही खेल केवल मैदान तक सीमित नहीं होते बल्कि ये हमें अनुशासन, आत्मविश्वास, संघर्ष और टीम भावना भी सिखलाते हैं। और आज का युवा यदि अपनी फिटनेस, स्वास्थ्य और खेलों पर ध्यान दे तो वह न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकता है बल्कि देश के भविष्य को भी मजबूती दे सकता है। मोबाइल और तनाव भरी जिंदगी से थोड़ा समय निकालिए, मैदान से जुड़िए, दौड़िए, खेलिए, खुद को फिट रखिए, क्योंकि स्वस्थ युवा ही सशक्त भारत की पहचान बन सकता है। और इसी संदेश के साथ के आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रखेंगे अपने आप को, खेलों से जुड़े रहेंगे और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहेंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखेंगे, ना सिर्फ खुद खेलों के साथ जुड़कर रहेंगे बल्कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने इर्द गिर्द जितने भी जिस भी उम्र के लोग हैं सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे और नई नई उनके जो भी काम है उनके लिए भी उन्हें प्रेरणा देंगे और एक सशक्त भारत की और सभी को लेकर के जाएंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम से हम चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और शाम 6:10 पर आप सुन सकते हैं प्रादेशिक समाचार हमारे रोहतक केंद्र से। कृपया

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार $19 अरब के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रॉस्टेडाइटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। सरकारी विभागों को अनावश्यक सरकारी दौरा न करने और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। सुखना झील पर लोगों को ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 6 मार्गीय एक्सेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग का निरीक्षण किया। हरियाणा सरकार ने बिगड़ते लिंग अनुपात को लेकर 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित किया। और कैथल जिले के कस्बा कलायत में तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर अमल करते हुए राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त डॉ सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों और सरकारी विभागों को भेजे विस्तृत संदेश में सरकारी कामकाज में ईंधन बचाने के तरीकों को बढ़ावा देने की सलाह दी है। उन्होंने अधिकारियों को भविष्य में सरकारी खरीद में इलेक्ट्रिक और ईंधन बचाने वाली गाड़ियों को प्राथमिकता देने, अनावश्यक सरकारी दौरे, हवाई यात्रा और विदेश यात्राओं को कम करने और ईंधन की बचत के लिए कई सरकारी कामों को एक ही यात्रा में पूरा करने को कहा है। डॉ मिश्रा ने कहा है कि अधिकारी व कर्मचारी आने जाने के लिए अपनी निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो, बस और रेल जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने सहकर्मियों और आसपास रहने वाले लोगों के साथ कार पूलिंग और राइड शेयरिंग करें। विभागों को सलाह दी गई है कि वे साझा यात्रा की व्यवस्था को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली के महत्व पर जोर देते हुए डॉ मिश्रा ने कहा है कि यहां भी संभव हो कम दूरी की यात्रा के लिए पैदल चलें या साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकों को प्राथमिकता देने व सरकारी परिसरों में रहने वाले कर्मचारियों को अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के लिए PNG का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। मुख्यमंत्री सुबह चंडीगढ़ की सुखना झील पहुंचे, जहां उन्होंने सुबह की सैर के लिए आए लोगों से बातचीत की और स्वस्थ भारत, स्वस्थ हरियाणा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति और मध्य पूर्व में हो रहे घटनाक्रमों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग कर अनावश्यक ईंधन की खपत कम करके ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। हरियाणा सरकार ने भी प्रधानमंत्री की अपील के जवाब में राज्य स्तर पर एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। इसके तहत वर्चुअल बैठकों को प्रोत्साहित करने, घर से काम करने के विकल्पों को बढ़ावा देने और सरकारी वाहनों का अनावश्यक प्रयोग न करने का निर्णय लिया गया है।
1: तो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है। हमें पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज्यादा EV का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक SOP तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के, और उसमें चाहे वर्चुअली बैठ के करने की बात हो उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं।
0: उन्होंने कहा कि लोगों को इस पहल से जोड़ने के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और अभियान चलाए जाएंगे। उन्होंने विपक्ष से भी राजनीति से ऊपर उठकर विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के संकल्प को मजबूत करने में लोगों के साथ मिलकर काम करने की अपील की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 मार्गीय एक्सेस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए श्री गडकरी ने कहा,
2: हम लॉन्ग टर्म पर प्लानिंग करके और लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट

0: साथ काफी रिलीफ देंगे और जहां जहां प्रॉब्लम ध्यान में आएंगे उसको रिजोल्व करेंगे। देखिए हमारे डीपीआर के गलती के कारण जो ब्लैक स्पॉट्स हुए हैं उसमें हमने 40,000 करोड़ रुपए करके ब्लैक स्पॉट्स इम्प्रूव किए हैं और लगातार हमारी इम्प्रूवमेंट जोरों से चालू है। जो पहाड़ी क्षेत्र में लैंडस्लाइड्स होते हैं उसके भी हमने करीब 650 स्पॉट आइडेंटिफाई किए और 380 जगह पर वर्ल्ड की फेमस स्विट्जरलैंड और बाकी जगह से टेक्निक लाकर उसको भी उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर और सब जगह वो भी काम करे, अरुणाचल, सिक्किम, वहां भी हमने काम किया है।
1: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बचाने के लिए राहवीर योजना शुरू की है।
0: मैं आपके मार्फत एक अच्छी बात कहूंगा कि अभी रोड एक्सीडेंट होने के बाद लोग डरते हैं कि जख्मी को मदद करने के लिए कि लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए। अब हमने एक राहवीर योजना बनाई है, अगर कोई जख्मी को लेकर आप कोई भी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो जख्मी को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले को हम 25,000 रुपए का अवार्ड देंगे। बाद में किसी भी हॉस्पिटल में जिसको एडमिट करेंगे उसके लिए हमने स्कीम बनाई है कि 8 दिन का खर्चा मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत उस हॉस्पिटल को देंगे और उसकी जान बचाएंगे। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर के रिपोर्ट में आया है कि अगर हम तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो हम 50,000 लोगों की जान बचा सकते हैं।
1: इस अवसर पर उनके साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टम्टा, कृष्णपाल गुर्जर, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद और विधायक उपस्थित रहे। हरियाणा सरकार ने बिगड़ते लिंगानुपात को लेकर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए 4 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इन अधिकारियों पर कथित तौर पर खराब प्रदर्शन और लिंगानुपात में सुधार से जुड़े उपायों की प्रभावी निगरानी करने में विफलता का आरोप है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा द्वारा जारी संदेश के अनुसार निलंबित अधिकारियों में सोनीपत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुरखास में तैनात SMO डॉ. टीना आनंद, समुदाय स्वास्थ्य केंद्र रादौर में तैनात SMO डॉ. विजय परमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़ी में तैनात SMO डॉक्टर सतपाल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहलांग में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभा शामिल हैं। निलंबन की अवधि के दौरान ये चारों अधिकारी रोहतक, अंबाला, झज्जर और रेवाड़ी के सिविल सर्जन कार्यालयों से संबंधित रहेंगे। इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैथल जिले के कस्बा कलायत में आज सुबह कपिल मुनि तालाब में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मृतक युवतियों की पहचान 18 वर्षीय परमजीत और 20 वर्षीय पलक के रूप में हुई है। दोनों कलायत की ही रहने वाली थीं। हमारे संवाददाता ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही गोताखोरों को भी बुलाया गया और तालाब से लड़कियों की तलाश शुरू की गई। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों युवतियों को तालाब से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में कैथल के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर आयुष विभाग पलवल द्वारा आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में PTI और DPI का योग प्रशिक्षण दिया गया। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ. हमीदुल्ला ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
2: दरअसल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ये सारी तैयारियां चल रही हैं। जो जिले के स्कूलों के सारे PTI DPI को हमारे योगा इंस्ट्रक्टर, हमारे योग आयुष योग सहायक, ये सारे लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। 3 दिन के लिए प्रोग्राम है और यहां से ट्रेनिंग लेकर के ये PTI DPI सारे लोग अपने स्कूलों में जाएंगे और पूरे जिले के स्कूलों में बच्चों को करवाएंगे। हमारी जीवन शैली थोड़ी ठीक हो जाए, जो सरकार ने ये प्रोग्राम शुरू किया है ये हमारे लिए लाइफ लाइन है।
1: जींद के संत सेन भगत राजकीय महाविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री के OSD राज नेहरू ने आज मेधावी छात्र छात्राओं को डिग्रियां व पदक वितरित किए। समारोह के समापन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री राज नेहरू ने महाविद्यालय की सराहना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा,
3: इन्होंने आज डिग्रियां यहां से प्राप्त की हैं और दूसरा वो इन डिग्रियों का समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए प्रयोग करें और हरियाणा को जो इनोवेशन चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, नए एंटरप्राइज चाहिए, हरियाणा को उन्नत बनाने में और विकसित हरियाणा बनाने में मैंने उनको यही आह्वान किया है कि वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। हजारों समस्याएं हैं आसपास में, उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करें और उनके प्रति जागरूक होकर नए इनोवेशन, नए स्टार्टअप्स, नए सोशल एंटरप्राइजेस बन सकते हैं।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। सरकारी विभागों को अनावश्यक सरकारी दौरे ना करने और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का प्रयोग करने की सलाह दी गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ईंधन की बचत, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए साइकिल यात्रा की। सुखना झील पर लोगों को ईंधन की खपत कम करने के लिए प्रेरित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

0: FM 101.4 MHz पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। सायं के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीता संदेश, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 24 से लेकर 27 तक की व्याख्या। प्रस्तुति है डॉक्टर विशंभर दास की।
1: श्रोताओ, आज गीता संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 24 से आगे के श्लोकों की व्याख्या प्रस्तुत है। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमः प्रजा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। जिसने इस धरा पर जन्म लिया, चाहे वह ईश्वर हो या साधारण मनुष्य, धरती के नियमों को सब पर ही लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वह श्री कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें भी। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि मैं नियति द्वारा निर्धारित कर्म न करूँ तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक भी बनूंगा। यहाँ वर्ण संकर से अभिप्राय अवांछित जन समुदाय से है, जो सामान्य समाज की शांति को भंग करता है। इस सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं, जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत तथा सुव्यवस्थित हो जाती है। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा तथा अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। भगवान समस्त जीवों के पिता हैं और यदि वे जीव पथभ्रष्ट हो जाएं तो अप्रत्यक्ष रूप में यह उत्तरदायित्व उन्हीं का है। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए अवतरित होते हैं। किंतु हमें ध्यान देना होगा कि यद्यपि हमें भगवान के पदचिन्हों का अनुसरण करना है तो भी हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। अनुसरण और अनुकरण एक से नहीं होते। हम गोवर्धन पर्वत उठाकर भगवान का अनुकरण नहीं कर सकते, जैसा कि भगवान ने अपने बाल्यकाल में किया था। ऐसा कर पाना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं। हमें उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किंतु किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना है। मनुष्य को सदैव ही सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो वह मर जाएगा। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसे ही अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे ये सब भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वे अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, किंतु यह भूल जाते हैं कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, न ही बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ताः चिकर्षो लोक संग्रहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वत जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त भाव से कार्य करें। यहाँ कर्म में आसक्ति रखने वालों लोगों को अविद्वान या अज्ञानी कहा है, क्योंकि उन्हें कर्मयोग की समझ नहीं होती। वे सर्वदा कर्मों में आसक्त होकर फलों को केंद्रित रखकर ही कर्म करते हैं। विद्वानों और समझदारों को चाहिए कि वे भी लोक संग्रह की दृष्टि से निरासक्त भाव से कर्मों को करें। यहाँ ये भी बिंदु विचारणीय है, क्या यज्ञ करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं या कर्म को सही विधि से करने से हम ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें केवल कर्म तो करना है पर उसमें लगाव या आसक्ति नहीं रखनी है, परंतु ऐसा करना आसान नहीं है। यह तभी संभव है जब इंद्रियों के विषयों से त्याग

0: और भगवान के प्रति समर्पण भाव हो जाए। वस्तुतः अज्ञानी लोगों को भी शास्त्रों की किताबों का ज्ञान तो होता है, परंतु वे सांसारिक सुखों को त्याग नहीं पाते और इनका अंतिम लक्ष्य भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होता। इसलिए ऐसे अज्ञानी जन बिना किसी आलस्य या संदेश से आसक्त भाव से कर्मों को निष्ठापूर्वक करते हैं। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण विद्वानों या ज्ञानी जनों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि वे सभी निरासक्त भाव से जन कल्याण के लिए कर्मों को करें, जिससे कि समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत हो जाए। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगीनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन। अर्थात परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति रखने वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करें, किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे। यह भगवान के वचनों का अभिप्राय यह है कि किसी भी ज्ञानी जन की यह जिम्मेदारी है कि वह कोई भी ऐसा कार्य न करे अथवा कोई भी ऐसा कथन न बोले जो अज्ञानी लोगों को पतन की ओर ले जाए, क्योंकि आम लोग उन महान व्यक्तियों का ही तो अनुसरण करते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अज्ञानियों को अपने कर्तव्यों को ध्यानपूर्वक और सावधानी से करने के लिए प्रेरित करें। प्रायः लोग दो विकल्पों पर विचार करते हैं, या तो वे फल प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार होते हैं या श्रम साध्य कष्टदायक परिश्रम को छोड़ना चाहते हैं। काम करना काम को छोड़ देने से अधिक बेहतर होता है। अतः अज्ञानियों के मन में कर्म के प्रति विश्वास उत्पन्न करते हुए उन्हें ज्ञान प्राप्ति के कार्य में लगाना चाहिए। वे उन्हें समझाएं कि सारे अनुष्ठान सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में जो भौतिक कार्यों का निर्देश किया गया है वह सब उस परम तत्व को जानने का साधन है। यद्यपि सांसारिक सुखों में लगे हुए अज्ञानी जन को इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ दिखाई नहीं देता, तदपि उन्हें कर्म योग के वास्तविक अर्थ को समझाकर सन मार्ग पर प्रेरित करना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणहि कर्माणि सर्वसह अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अर्थात जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे कार्य प्रकृति के तीनों गुणों से संपन्न होते हैं। जीवन में अहंकार का त्याग नितांत अपेक्षित है। अहंकार से ग्रस्त मूर्ख व्यक्ति ही यह कहता है, मैंने यह किया, मैं ही करूँगा, मैं परिवार से संपन्न हूँ, मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन यह हमेशा याद रखना चाहिए कि सबका कर्ता एक ईश्वर है। होने वाले संपूर्ण कार्य तो पहले से ही निर्धारित हैं, मनुष्य तो केवल निमित्त मात्र है। यह निमित्त मात्र बनने का अर्थ यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य है अपनी पूरी शक्ति लगाकर कार्य करो, परंतु अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने परिश्रम में कमी मत रखो और अपने में अभिमान मत रखो। वस्तुतः प्रकृति के सभी कार्य सत्व रज और तम गुणों के आधार पर घटित होते हैं। सत्व गुण का अर्थ है अच्छाई, रजोगुण का अर्थ है किसी कार्य को करने का जुनून और तमोगुण का अर्थ है अज्ञान। जिस प्रकार लहर समुद्र का ही एक हिस्सा होती है, उसे अलग नहीं होती, उसी प्रकार शरीर भी प्रकृति का ही एक अंग है। प्रकृति से ही शरीर की रचना हुई है, फिर भी आत्मा स्वयं को ही सभी क्रियाकलापों को करने वाला समझता है। इसका कारण है अहंकार। जिस क्षण आत्मा अहंकार को समाप्त कर देता है और ईश्वर की इच्छा पर समर्पण भाव प्रदर्शित करता है, तब वह स्वयं को कर्ता के बंधन से मुक्त कर लेता है। हम संसार में देखते हैं, जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है या प्रसिद्धि को प्राप्त करता है, तब वह यह कहता है कि मैंने मेहनत की, मैंने ऐसा किया, और विपरीत परिस्थिति में वही व्यक्ति परमात्मा को दोष देने लगता है। मूलतः दोनों ही स्थितियों में त्रिगुणों से प्रभावित होने के कारण मनुष्य सुख दुख की अनुभूति करता है और जीवन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। अगर दोनों ही स्थितियों में वह समर्पण भाव को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो वह जीवन में कभी विचलित नहीं होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीता संदेश। प्रस्तुति थी डॉक्टर विशंभर दास की। FM 101.4 MHz पर यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारी की राम राम। साथ दिन मंगलवार कार्यक्रम किसान वाणी, और इस दिन हम लाए फोन इन, और फोन इन में एक ऐसा विषय जो जरूरी है मौसम समय परिस्थिति के हिसाब से, ताकि उससे संबंधित कोई भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप सीधे हमारे विशेषज्ञ से जो है स्टूडियो में कर सकें। और उस बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर जयंत भाटिया, जो पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई, जो संपर्क सूत्र रहेगा जिसके माध्यम से आप बातचीत कर सकें, अपनी समस्या का समाधान पा सकें, वो रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र दरबार के मोबाइल तक फोन करेंगे उनके वास्ते एसटीडी कोड बहुत जरूरी है, और एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744-221-322। साथियों तो एक बात जोड़ के विनम्र निवेदन है कि विषय से संबंधित ही फोन करें। तो विषय जो हमारा आज का हम ताजा कि धान की उन्नत किस्में व नर्सरी तैयार करने में सावधानियां, जिस भाई की इस तरह संबंध समस्या है वो फोन कर दे, और बाकी फोन ना करिए, क्योंकि कई बार आप फोन तो कर लोगे पर आपको भी डांगने का बारे में बता दो या किसी और चीज के बारे में बता दो, उस समस्या का समाधान तो आपका होने का नहीं, तो होगा तो विषय से संबंधित ही। तो इस वास्ते विषय से संबंधित ही फोन करना है, और विषय अटका फिर बता दें आपने कि विषय है धान की उन्नत किस्में व नर्सरी तैयार करने में सावधानियां। तो चला स्टूडियो में क्रम बातचीत शुरू।
7: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। तो इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें, फोन नंबर रहेगा 01744-221-322। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744-221-322। और हमारा आज का विषय है धान के उन्नत किस्में व नर्सरी तैयार करने में सावधानियां, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जे एन भाटिया जी, पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है।
8: हाँ, धन्यवाद वीरेंद्र भाई।
7: डॉक्टर साहब, जैसा आप जान हैं कि खरीफ का मौसम लगभग शुरू हो गया, इसकी तैयारियों में किसान भाई लग रहे हैं।
8: बिल्कुल सर।
7: और जो इस मौसम की हमारे क्षेत्र में जो अहम फसल मानी जाए वह धान की।
8: बिल्कुल जी।
7: अब धान के लिए जाहिर है किसान भाइयों ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो, अच्छी हो, तो उसके लिए कौन सी उन्नत किस्म है, और साथ ही नर्सरी की तैयारियां भी कर रहे हैं किसान भाई, तो इस दौरान किन किन बातों का खास ध्यान रखा जाए?
8: हाँ वीरेंद्र भाई, इससे पहले कि हम आगे चर्चा करें, थोड़ा सा हरियाणा के बारे में प्रकाश डालेंगे
7: जी,
8: क्योंकि जो हरियाणा है एक छोटा सा प्रदेश है जिसका जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो है 36 लाख हेक्टेयर, और 36 लाख में से जो 26 लाख हेक्टेयर है वहाँ पर जो है विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। और जैसे आपने बात करी कि खरीफ फसलों में जो आपकी जो धान की फसल है वो एक मुख्य फसल है, क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ पिछले साल हमारे हरियाणा में 18.37 लाख हेक्टेयर में धान की काश्त करी गई थी, और यदि मैं कुरुक्षेत्र की बात करूं तो 1.89 लाख हेक्टेयर में जो है धान की काश्त हुई थी। कहने का मतलब है पूरे हरियाणा के 10% एरिया अकेला आपके
7: कुरुक्षेत्र में था।
8: तो मैं थोड़ा सा इस फसल की जो है इम्पोर्टेंस के बारे में आपको,
7: इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है,
8: अहमियत है। दूसरी अहमियत ये है हरियाणा का जो टोटल एरिया है वो है 1.41%
7: जी,
8: और इस धान मतलब बांसपति की वजह से या जो धान की फसल की वजह से हरियाणा को 100 से ज़्यादा देश जानते हैं,
7: क्योंकि बाहर भी निर्यात होता होगा, यहाँ
8: बाहर निर्यात होता है 60,000 करोड़ रुपए की जो है विदेशी मुद्रा हमें
7: धान के जरिए मिल रही है।
8: और मैं बताऊँ पीछे मतलब धान की धान ने है ना जो हमारे किसानों को बहुत से नारे दिए आपको पता है
7: जी,
8: बासमती का बड़ा अच्छा रेट था, तो इसलिए इस फसल पे जो है चर्चा होना स्वाभाविक है,
7: बिल्कुल सही।
8: और दूसरी दो और अहम बातें हैं आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, एक तो है आजकल जो तापमान बहुत ज्यादा चल रहा है,
7: आमतौर
8: पर जो है पनीरी के लिए 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए
7: और आजकल तो 15
8: से 20 चाहिए वीरेंद्र भाई रात का ये दिन का
7: या, या।
8: और आज का चल रहा है आपका 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ चल रहा है 20 से 25
7: जी।
8: और दूसरा एक और समस्या है फिजी वायरस है जो बोनापन जो है
7: हाँ।
8: वो भी किसानों के दिमाग में जो है बड़ा चक्कर लगा रहे हैं,
7: बिल्कुल पिछली बार उसके कारण काफी नुकसान हुआ,
8: दो साल चुप रहा तो इस वजह से ये जो आज का विषय रहेगा सभी किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है एक तरह से
7: जी। तो डॉक्टर साहब जैसा आपने चर्चा करी कि भी बहुत ही अहम फसल मानी जाए, काफी अच्छा मात्रा में किसान भाई उत्पादन भी करें निर्यात भी करें और अच्छा खासा हम जो है उससे पैसा भी कमा रहे हैं,
8: बिल्कुल।
7: तो अब इसमें बात यह आ जाए कि हर साल किसान भाइयों की ये इच्छा रहेगी भी अच्छे से अच्छा पिछले साल से बेहतर उत्पादन हो,
8: बिल्कुल।
7: और कोई नई किस्म आई हो तो उसकी तरफ भी रुझान रहे कि चलो ज्यादा नहीं तो 2-4 किले लगा के देख ले,
8: बिल्कुल बिल्कुल।
7: और अपना घर का बीज हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। तो ऐसे में कौन कौन सी उन्नत किस्म है जिनका चुनाव किसान भाई आज के दौर में?
8: देखो वीरेंद्र भाई जो अपनी किस्में है ना तीन भागों में बांटी गई है।
7: अच्छा जी।
8: एक तो वो किस्में जो अगेती किस्में हैं, जो हमारा जो है 93 दिन से 110 के दिन जो लेती हैं
7: जी,
8: अगेती पकती हैं। और आमतौर पर जो किसान आलू लगाते हैं मटर लगाते हैं आमतौर पर वो इन मतलब जो है किस्मों को कहते हैं, एक तो ये किस्में हैं। दूसरी किस्में हैं जो मतलब मध्यम अवधि की,
7: दरमियानी अवधि की,
8: हाँ, जो 130 से 135 दिन लेती हैं
7: जी।
8: और तीसरी वो हैं जो ज़्यादा दिन लेती हैं 140 45 50 दिन लेती है। तो ये तीन भागों में बटी हैं अपनी मोटी किस्में भी और जो है
7: बारीक किस्में भी जो है बारीक दान कह दें जिसने,
8: हाँ बिल्कुल
7: जो है। की आगी वो हाँ। भी। तो अब समय कौन सी किस्मों का चल रहा है?
8: अब जो समय है आपका जो मतलब जो मतलब अर्ली जो है
7: अगेती किस्म,
8: अगेती किस्में हैं जैसे पी 1509 है आपका
7: जी,
8: पी बी 1692 है आपका, एच के आर 49 है जी, इनका जो टाइम बिल्कुल अब बिल्कुल सही चल रहा है। मतलब
7: तो इनकी किसान भाई जो है
8: 25 मई से लेके मान लीजिए 15 मई से कह लो आप
7: जी,
8: और 30 मई तक इनकी हमने बिजाई कर देनी है,
7: इनकी नर्सरी तैयार कर सकें अगेती
8: हाँ,
7: किस्म।
8: हाँ
7: तो अब बात आई डॉक्टर साहब के भाई जो मध्यम अवधि किस्म हाँ, है तो उनका समय क्या रहेगा?
8: उनका रहेगा मतलब 25 मई से लेकर 30 जून तक,
7: 25 मई से लेकर के 30 जून तक।
8: और जो मतलब जो 11 दिन की है उनका रहेगा 1 जून से 15 जून तक
7: जी। तो डॉक्टर साहब जिस हिसाब से आपने कहा है कि जो मध्यम अवधि किस्में है तो ये पौध तैयार करने का समय है या रोपाई के समेत समय है?
8: पौध का बिजाई करने का समय सर,
7: पौध और बिजाई करने
8: और 25 दिन बाद हम इसकी जो है रोपाई कर सकते हैं,
7: रोपाई कर सकें जो तैयार कर लें। और ऐसी जो बासमती की
8: है, दूसरा फिर एक सावधानी और हम बता रहे हैं वीरेंद्र भाई, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है 3-4 साल का तजर्बा हमारा कि जो जिनके यहाँ फिजी वायरस आई है बोनापन आया है
7: जी,
8: वो 25 मई से पहले बिजाई ना करें।
7: अच्छा मतलब पौध ही तैयार ना करें 25 मई से पहले।
8: आमतौर पे ये देखा गया है जिन किसानों ने 25 मई को ध्यान कर तैयार करी थी
7: वहाँ पर रोग आया
8: ना, क्योंकि
7: अगेती किस्मों में ज्यादा आया था जी,
8: तो ये भी चीजें हमें ध्यान में रखनी है एक तरह से।
7: यानी आपका कहने का अभिप्राय है कि 25 मई से तो पहले पौध ना तैयार करें। पर्टिकुलरली
8: जैसे 126 वैरायटी है
7: जी,
8: जो पीआर 126 है क्योंकि कम टाइम लेती है, है जी, और जो उत्पादन भी ज्यादा है, खाद पानी भी कम लेती है, तो उसमें तो आपने बिल्कुल ही मान के चलना भी 25 मई से आपने उसकी बिजाई कर दी है।
7: अच्छा हाँ। और इससे संभावना है कि उससे बचे रहेंगे जो हाँ। पिछले बार
8: और अब की बार एक और बता दूं मैं आपको
7: जी,
8: जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना हो सकता है पानी की दिक्कत रहे हमें अब की बार।
7: अच्छा भाई मानसून
8: सुनने में आ रहा है देखो कि राजस्थान में हरियाणा में पंजाब में मानसून कमजोर रहेगा आपकी बात।
7: डॉक्टर साहब चर्चा हमारी जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो हेलो
9: हाँ जी नमस्कार जी।
7: हाँ नमस्कार जी आपका नाम? हेलो
9: मांगेराम सैनी बोल रहे हैं।
8: मांगेराम
7: मांगेराम जी अपना प्रश्न करें, आपका स्वागत है
9: जी। डॉक्टर साहब ऐसा है जैसे पनीरी बोली जी।
7: हेलो
9: हाँ जी जैसे जीरी बोई ना जी।
8: ठीक है ठीक है
9: हाँ जी। तो ये आजकल टेम्परेचर बहुत हो रहा है, दिन में पानी दे घूमते पानी गर्म हुआ।
8: बिल्कुल बिल्कुल सर,
9: और रात को बिजली नहीं।
10: तो मांगेराम जी डॉक्टर साहब इसी बात कर रहे थे कि भी तापमान ज्यादा है, बाकी समझो।
8: देखो आपने ऐसा करना है, यदि रात का वार है आपका तो रात को पानी दे सकते हो आप, 11 बजे आपने निकाल देना है, सुबह मतलब 10-10:30 बजे निकाल देना उसका, एक तो ये करना आपने।
9: अच्छा जी।
8: दूसरा यदि दिन में आपका वार है तो आपने 11 बजे पानी देना है, 2 बजे निकाल देना है उसको। बिल्कुल, क्योंकि यदि आपने अच्छी पौध लेनी है तो 8-10 दिन पानी नहीं खड़ा रहना चाहिए आपकी पनेरी में,
9: ठीक है जी।
8: हाँ, ये सावधानी बरतो, और भी ज्यादा गर्मी हो, मान ले कई बार पनीरी जल जाती है, तो उसमें एक और सावधानी कर सकते हो आप, पानी का छिड़काव कर सकते हो वहाँ पर,
9: कोई नहीं ऐसी करेंगे डॉक्टर,
10: ताजे पानी का,
8: ताजे पानी का, क्योंकि जैसे हमने अभी चर्चा करी थी, क्योंकि नर्सरी के लिए जो तापमान चाहिए वो चाहिए 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड और 15-25 डिग्री सेंटीग्रेड रात का, लेकिन अब जो है ज्यादा चल रहा है तापमान, इसलिए थोड़ा हमें मतलब ये सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। यदि आप जैसे वीरेंद्र भाई हम बात करें
10: जी,
8: पनीरी किसान दो तरह से करते हैं।
10: हाँ जी।
8: एक तो करते हैं मान ले खेत तैयार कर लिया और सूखी बिजाई कर देते
10: हैं, बिजाई कर दी ऊपर, आजकल यही चल रहा है,
8: पहले पानी भर देते हैं,
10: पहले कद्दू करेंगे रहते हैं।
8: दूसरा एक है कद्दू करने का कि हम जो है जमाव कर देते हैं, तो दोनों में फर्क है और दोनों में फायदा नुकसान है,
10: दोनों में फायदा नुकसान।
8: यदि मान ले हम खेत तैयार करके और सूखे में बिजाई कर रहे हैं, सूखे में बिजाई करके हम पानी दे देते हैं, तो वहां पर हमें जो पनीरी मिलेगी वो जो है वो जलेगी नहीं बिल्कुल भी आपकी।
10: अच्छा, मतलब कि जैसे सूखे में खेत तैयार कर दिया, क्यारियां बना दी उसमें, और फिर उसमें ऊपर से छींटा दे दिया,
8: छींटा दे दिया ऊपर थोड़ी सी, या तो मिट्टी डाल दिया, फिर भूस डाल दिया,
10: या भूस डाल दिया और फिर उसके बाद पानी दे दिया,
8: उसमें पता खासियत क्या,
10: पानी बाद में देना पड़ेगा या पहले,
8: उसी टाइम देना है,
10: साथ ही
8: देना आपने, पूरा भर देना है,
10: या पानी दे के फिर गिरते छींटा दे दे ऊपर,
8: वो दूसरी विधि है जैसे पटलिंग करके।
10: जी जी।
8: तो इसमें क्या होगा, जो बीज है ना जमाव निकलेगा, उसकी जड़ें बिल्कुल एस्टेब्लिश हो जाएंगी जमीन में।
10: अच्छा।
8: तो वो मतलब जो है ना तो जलेगी वो, और ना ही जिस तरह कई बार इकट्ठी हो जाती
10: है, हो जाती है वो,
8: और जो हम जमा के बीज गिरते हैं ना,
10: जड़ा के
8: उसमें कई बार पानी रह जाए खड़ा, पानी गर्म हो जाए जल जाते हैं,
10: वो किसान भाई जो बात कर रहे थे वो उसी विधि की कर रहे हैं,
8: इकट्ठे भी हो जाते हैं।
10: अच्छा, इसमें जो पहली विधि बताई आपने उसमें जड़ाने की जरूरत नहीं,
8: उसमें जड़ाने की जरूरत नहीं,
10: ठीक ठीक।
8: हाँ, तो एक तो ये है, इन दोनों का एडवांटेज।
10: अच्छा।
8: तो जो किसान उसी हिसाब से
10: आप तो ये आपने एक अच्छी जानकारी दी कि भाई थोड़ा सा परंपरा से हटके भी थोड़ा तैयारी करें,
8: ये अनुभव की बातें हैं, मतलब जो
10: किसान भाइयों के अपने निजी अनुभव भी हैं और कृषि वैज्ञानिकों के अपने अनुभव हैं जो उन्होंने अपने फार्म पे करके देखे हैं।
8: दूसरा फिर मैं बता दूं, जैसे मोटी मोटी जो सावधानी बरतनी है
10: जी,
8: आपने किस्में तो बहुत है, जैसे आपने देखा होगा कि HKR 49 नई किस्म आई
10: है,
8: अभी नई किस्म आई है, पहले हमारे पास 47 थी, 47 जो है ज्यादा टाइम लेती थी, 49 जो है कम टाइम लेती है, तरह से पैदावार भी अच्छे बता रहे हैं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो है ये बोनापन भी नहीं आता।
10: अच्छा, 49 में,
8: 49 में।
10: और ज्यादातर डॉक्टर साहब जैसे किसान भाई और जान रहे हैं कि भी 126 ला दी,
8: हाँ
10: जी, 129 ला दी, ये अपने गिने चुने से नाम है,
8: नहीं नहीं बहुत किस्में हैं, जैसे आपने देखा होगा
10: भी ले,
8: हाँ आप जैसे PB 1500
10: है,
8: PB 1692 है, इनकी बिजाई का टाइम चल रहा है आपका
10: 1500,
8: आप जैसे आपकी जो PR 126 है इसका टाइम चल रहा है सारे का सारा, ये PR ग्रुप है पूरे का पूरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, ये अपनी वरायटी है, जैसे HKR 127 है जी, 120 है एक तरह से, है जी, तो ये बहुत सारी वरायटी हैं जो भी है किसान, हम दो वरायटी आई हैं जैसे 132-133 आई हैं मोटे धान में, PR 132-133 में, ये पानी कम भी लेती हैं, खाद भी कम लेती हैं,
10: ये आपने अच्छा बात करी कि जो पानी भी कम ले रही है और खाद भी कम लेती हैं,
8: हाइट भी कम है इनकी।
10: एक बार इनका नाम दोबारा बताना रख सा,
8: मतलब जो है PR 132 PR 133
10: PR 132 PR 133
8: सिर्फ 1.5-2 कट्टे में, मतलब जो है अच्छी पैदावार है, कम पानी लेती हैं, कम खाद लेती हैं,
10: हाँ।
8: और पैदावार भी बहुत अच्छी है इनकी, तो ये किस्में चुन सकते हैं।
10: तो जाहिर है किसान भाइयों को ऐसी किस्मों का भी चुनाव करना चाहिए कि जिसमें के कम पानी लगे,
8: हाँ।
10: कम।
8: और दूसरा एक और समस्या है वीरेंद्र भाई,
10: साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल के बाद। हेलो
9: हेलो,
10: हाँ जी, राम राम जी।
9: राम राम जी, राम राम जी।
10: आपका नाम?
9: बलदेव सिंह।
10: बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें।
9: सहरसा जी।
10: हाँ जी, सहरसा से बलदेव जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। धान की फसल झाड़ कौन सा दे रही है, कौन सी झाड़ वाली?
8: ऐसा है चौधरी साहब, आपने जो किस्में हैं जैसे जो पिछले साल उगाई है ना अपने खेतों में, या जो आपके पड़ोसी ने, एकदम नई किस्म पे नहीं जाना चाहिए आपने बिल्कुल किसी पे भी। कोई आजकल प्राइवेट वाले बहुत ज़्यादा किस्में या हाइब्रिड लेके आ रहे हैं, जो आपने जांच परख रखी है ना किस्में, वही आपने किस्में लेनी है एक तरह से। जैसे हमें हम जिक्र कर रहे थे, आपने जो पंजाब की दो किस्में आई हैं जो मोटे धान में, जो आपकी आपकी जैसे PR 132 आई है, PR 133 आई है, वो सिर्फ 110 दिन लेती हैं ये एक तरह से। और तो ये आप कर सकते हो, ज़्यादा पैदावार है इनकी, कम खाद लेती हैं आपके। अपनी जो HKR 49 किस्म आई है वो ले सकते हैं। पंजाब की जैसे एक जो PR 126 है वो भी कम टाइम लेती है, वो ले सकते हो आप। तो आपने आजकल जो टाइम आ रहा है ना, हमने जो कम टाइम में पकती हैं, कम खाद पानी लेती हैं, बीमारी कीड़े कम लगते हैं, उन किस्मों का चुनाव करना चाहिए हमने। क्योंकि यदि आपने हाइब्रिड ले ली या Pusa 44 ले ली, वो जो है 5-5 महीने में पकती हैं, खाद भी बहुत लेती हैं, कीड़े बीमारी बहुत लगती हैं। तो इसलिए हैं जी, हेलो
10: हेलो,
8: हाँ तो वीरेंद्र भाई हम बात कर रहे थे भाई, जैसे किसान भाई पूछ रहे हैं हमने भी कौन सी उत्तम किस्में लेनी है। तो किस्में तो वही हैं एक तरह से जो है, मतलब जो है, क्योंकि यदि मान लें हाइब्रिड लगाओगे आप, हाइब्रिड में खाद भी तो ज्यादा देना पड़ेगा, पानी भी तो ज्यादा देना पड़ेगा, टाइम भी तो ज्यादा
10: देना पड़ेगा,
8: यदि बीमारी आएगी वो फिर
10: वो भी।
8: तो हमने जो है जो एरिया निर्धारित करना है, माने 10 किलो लगाने हैं, उसका हमने बंटवारा सही जगह से करना है।
10: बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव सही कर रहे हैं।
8: कुछ अगेती लेनी है, कुछ बासमती लेनी है, क्योंकि हमने मोनोकल्चर नहीं कर दी है बिल्कुल,
10: और खेत भी आगे पीछे खाली हो जाए,
8: खेत भी आगे पीछे खाली हो जाए,
10: जो अगले मौसम की फसल लेनी है उसके अनुसार तैयारी भी।
8: जैसे पौध की बात भी कर रहे हैं हम, पौध भी कभी भी हमने सारी एकदम नहीं उगानी है,
10: एकदम बढ़ जाए फिर।
8: हाँ, उसमें कई बार जैसे बरसात नहीं हुई, कई बार आदमी पे मजदूर नहीं मिले आपके, और फिर यदि जो हम कहते हैं 25 दिन की पौधा है वो अच्छी पैदावार देती है, अच्छी जमीन में मतलब जो है सेट होती है वो,
10: और कई बार
8: 40 दिन की हो जाए फिर
10: घाटी
8: पड़ जाती है उसकी, यही 1500 में तो बड़ी दिक्कत आई एक चीज से कई बार देखे होगा।
10: बिल्कुल सही करे डॉक्टर साहब।
8: तो इसमें हमें
10: तो डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी एक फोन कॉल। हेलो
11: हेलो,
10: हाँ जी राम राम जी।
11: राम राम जी, ठीक हो?
8: हाँ बढ़िया सर बढ़िया।
10: आपका नाम?
11: डॉक्टर साहब मैं मालूम करना जी, जैसे नर्सरी भी आपने बताई है सुक्के में बोने के लिए जी, इसे 8 साल बोए, इसमें खाद भी आना है जी देसी, लेकिन हमें एक बात बताओ जी, कबाड़ जम जाए तो कबाड़ की दवा हमें पहले ही गिरे जमने के बाद गिरे,
10: खरपतवार ज्यादा हो जाएगा पनीरी में।
8: देखो ऐसा है चौधरी साहब, हम आमतौर पे जो खरपतवार के लिए दो दवाइयां हैं हमारी, एक तो है मतलब 60 और दूसरी है एरेज, हमें 1-3 दिन के बाद इसमें डालना है।
11: अच्छा,
8: मान लीजिए जैसे 1-3 दिन के बाद आपने या इरेज डाल दो आप 100 मतलब ML, या 60 डाल दो आप 60 ग्राम, और फिर बाद में आपने जो है ना 15 दिन में फिर डालनी है नोमनी गोल्ड, मतलब जो
11: अच्छा
8: है
11: जी,
8: चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हूँ आप, यदि हो आप डाल दो, नहीं तो ये दवाई है 60 ले सकते हो आप 60 ग्राम, या जो आप इरेज ले सकते हो 100 ग्राम, दोनों में से एक दवाई 2-3 दिन के बाद डाल दो आप, और जिस टाइम डालोगे ना आप उस टाइम खेत में पानी होना चाहिए आपका।
11: ठीक है सर।
8: हाँ, और यदि फिर भी खरपतवार हो चौड़ी पत्ती वाले, उसके लिए चौधरी साहब आपने जो है मतलब जो है 15 दिन के बाद जो है नोमदी गोल्ड जो है वो 100 ml डालेगी, वो डालनी है
11: जी सर।
8: हाँ, और दूसरा एक और बता दूं आपको मैं, आपकी जो डोड़ है ना उसको डोल को बिल्कुल साफ रखना आपने, उसमें जो है ना जिस टाइम बिजाई करोगे ना उसमें जो है अपनी जो राउंड अप है ना चारों तरफ डाल देनी है, कोई भी खरपतवार नहीं रहना चाहिए वहां पर, क्योंकि बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया, क्योंकि आपको पता है ना जो कीड़े मकोड़े आवा जो खरपतवार आवा वो वहीं से शुरू होते हैं और फिर वो आपकी सारी पनीरी को चपेट लेते हैं।
11: हाँ जी हाँ
8: हाँ सर।
11: राम राम
10: राम राम।
8: तो वीरेंद्र भाई हम बात कर रहे थे, मोटी मोटी सावधानियां हम जिक्र कर लें, सबसे पहले तो पनीरी हमने वहां लेनी है, यदि 2-3 साल हम न हो गए ना लगातार वो स्थान बदल लेना हमने।
10: अच्छा, खेत बदलने?
8: बिल्कुल बदलना है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो बीज जनित होती हैं, और जिनके यहाँ
10: पर किसान भाइयों ने यो रहो जा कि भाई यो खेत ऊंचा है, इसमें से पानी निकल जाए सौखा,
8: और भाई यो ही खेत लग जाए, बदल कितनी जगह चाहिए मेरी के लिए
10: जी?
8: तो एक कनाल की आराम से बदल सकते हैं। हाँ, ये आपकी बड़ी बात मान ली मैंने कि जो आपने पनीरी का जगह चुननी है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए जगह, पानी का उसमें निकासी होनी चाहिए, बिल्कुल ही पानी खड़े होने होनी चाहिए आपने, और जगह बदल लेनी चाहिए। दूसरा, डोले बिल्कुल साफ होने चाहिए हमारी, लेदर लेवलर से हमने जो है खेत तैयार करना चाहिए, बिल्कुल जितने भी अवशेष हैं वो हमें उसमें से निकाल देने चाहिए, बिल्कुल भी
10: ऊंचे नीचे ना हो, नहीं फिर जहाँ डूबा होगा वहाँ पौध
8: मर जाएगी। उसके बाद फिर बीज का चुनाव करना बहुत,
10: बीज का चुनाव बिल्कुल,
8: बीज के चुनाव करने में कई बार देखा है किसान कंप्लेंट करता है जी मेरी तो आधी बीज पौध जामी,
10: बिल्कुल सही,
8: वो बीज का चुनाव नहीं करता,
10: चुनाव नहीं करता,
8: बीज के चुनाव क्या
10: थोथा निकल गया,
8: थोथा निकला सारे का सारा, आधा कई बार आधा, क्योंकि आजकल लूटमार बहुत ज्यादा चल रही है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। बीज जब भी लेके आए आपने क्या करना है, जितना भी बीज आपका उसका 10 गुना पानी
10: जी।
8: अब जैसे 1 किलो बीज आपका 10 लीटर पानी डाल दो, उसमें जो है 1 किलो जो है नमक डाल दो आप
10: जी,
8: उसको धीरे धीरे बीज को डालो, जितना भी थोता बीज होगा
10: ऊपर
8: जितना भी सारा ऊपर आ जाएगा, उसको जो है छलनी से या वैसे हाथ से बाहर डाल दो
10: जी,
8: और जो नीचे बीज बच जाएगा आपका उसको आप 2-3 बार जो है साफ पानी में धो लो, इसको बोलते हैं बीज का चुनाव।
10: बीज का चुनाव
8: ये बिल्कुल सस्ता है आपका, और कोई ज्यादा मोटा पैसा भी नहीं है, और फायदा इसका बहुत ज्यादा है,
10: ज्यादा फायदा है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब बीज का उपचार भी करना चाहिए?
8: हाँ बिल्कुल, ये तो बीज का चुनाव हो गया, इसमें तो अपने थोते बीज काट दिए,
10: बीज उपचार और बीज चुनाव
8: अलग अलग
10: दोनों में अलग अलग है। कई बार किसान भाई सोच ले नमक का पानी ला दिया उपचार ही तो गया,
8: उसको बोलते हैं बीज का चुनाव। बीज के उपचार में फिर हम कहते हैं जैसे बहुत से बीज है जो मतलब जो है रोगग्रस्त होते हैं, बीज के अंदर जो बीमारी होती हैं जैसे बकाने बीमारी हो गई अपनी, ब्लास्ट बीमारी हो गई, इनके बीजाणु जो हैं सीड के अंदर होते हैं बीज के अंदर
10: जी।
8: तो इसके लिए फिर हमें क्या करना है भाई, यदि हम जैसे जो अपनी परमल किस्म है इसमें हम 10 किलो भी यूज करें, हाइब्रिड में हम 4 से 6 किलो यूज करें, बासमती में हम 6 से 8 किलो यूज करें, तो इसमें हम ये करेंगे यदि हम 10 किलो बीज ले रहे हैं उसके अंदर हम जो है 10 ग्राम बावस्टिन डालेंगे, दवाई बावस्टिन दवाई पाउडर आता है
10: बावस्टिन,
8: और 1 ग्राम जो है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन,
10: अच्छा
8: मतलब जो जीवाणु
10: जीवाणु
8: बीमारी आती है बैक्टीरिया के लिए, आपने 10 किलो बीज लिया, 10 ग्राम बावस्टिन डाली, 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डाली, उसको 24 घंटे तक पड़े रहने दिया
10: छाया में
8: नहीं पानी के अंदर,
10: पानी के अंदर, अच्छा।
8: तो 24 घंटे के बाद उसको आप निकालोगे, निकालने के बाद फिर उसको आप जो है मतलब यदि आपने सूखे में बिजाई करना हो उसको छाया में सुखा के आप सूखा कर लो, और यदि आपने जमाव के करना है उसको ढेर लगा दो कहीं भी छाया में,
10: ऊपर
8: गिल्ली बोरी डाल दो, उसमें 24 घंटे के लिए पानी डालते रहो, 24 घंटे में जमाव आ जाएगा, और जमाव आने के बाद फिर आप उसको जो है खेत में डाल दो, खेत में जो डालना है आपने 1 साल डालना है, बिल्कुल
10: 1 साल डालना है। और ये डॉक्टर साहब किस समय डालना है?
8: शाम के टाइम, ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया, शाम के टाइम डालना,
10: शाम के समय डालना है
8: हाँ,
10: जिससे रात भर आराम से टिक जाए,
8: बिल्कुल हाँ,
10: तेज धूप
8: का। और वो जो भी है ना, यदि हम जैसे पडलिंग कर रहे हैं
10: जी,
8: माने कद्दू काट के हम डाल रहे हैं, तो उसमें आपको वीरेंद्र भाई 3-4 घंटे रुकना पड़ेगा,
10: अच्छा
8: कई बार लेती है ना बीज बहुत नीचे चले जाता है, वहाँ भी जमाव कम होता है,
10: और रिग्गा सा उठ जा, लेती उठ जा उसमें,
8: ये भी बड़ी सावधानी वाली बात है,
10: बैठ जा अच्छे से टिक जा, फिर पानी
8: तो उसमें बीज में गहराई में चले जाता है, किसान कहता है मेरे तो
10: अमूमन पानी कितने सेंटीमीटर,
8: 3 से 5 सेंटीमीटर शुरू में और बाद में जब तक मतलब आपकी पनीरी 10 दिन की नहीं होती पानी नहीं खड़ा रखना है
10: भाई,
8: आपने ये काम मतलब
10: पतला
8: सिर्फ पानी दिया 1-2 घंटे बस
10: सारा निकाल दिया
8: क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है पानी गर्म होएगा, यदि आपने अंकुरण कर दिया ना वो सारा अंकुरण खत्म हो जाएगा आपका, और फिर आपको बार बार जो है ये करनी पड़ेगी समस्या।
10: अब वो तो खुले में डॉक्टर साहब, जब देखा जाए घर के ऊपर रखी जो टंकी है उनका भी
8: पानी नीचे पानी कितना गर्म है, वो तो उसके अंदर खेत
10: में, वो तो खुले में खेत
8: में ओपन में,
10: हाँ जी बिल्कुल।
8: दूसरा फिर एक और ध्यान करना है
10: जी,
8: आपने वीरेंद्र भाई जैसे आजकल बहुत खतरा है कहते हैं ना, यदि दूध का जला हुआ लस्सी को भी जो है तो फिजी बार इसका खतरा अभी टला नहीं है,
10: अच्छा
8: तो उसके लिए हमें सावधानी जरूर बरतनी है, और वो सावधानी आपको पनीरी में बरतनी पड़ेगी,
10: अच्छा जी।
8: एक तो कोशिश करनी है मक्का के खेत के आसपास हमने जो है वो पनीरी लगानी,
10: ना लगा उससे कितना फासला हो
8: मतलब जो है दूर हो, क्योंकि ये
10: किला दूर हो मतलब
8: जो व्हाइट बैग्ड प्लांट होपर है उसके जो मतलब जो कीड़े हैं ना वहां से आके जो अरो का कारण बनते हैं।
10: ये आपने अच्छी जानकारी दी कि भाई मक्का के खेत के आसपास किसान भाई पनीरी ना तैयार करें, उससे थोड़ा दूर करें यदि संभव है उनके लिए।
8: दूसरा फिर मैंने जैसे पहले बताया था जो डोले हैं वो बिल्कुल साफ होने चाहिए, उससे आपका जो है परणछद अंगमारी या सीथ ब्लाइट है
10: ये नहीं
8: वो भी नहीं आएगी, और ये जो कीड़े हैं जो मतलब जो और ये जो बीजाणु हैं जो ऑक्सीजन में वहां पर पनपते हैं
10: ये
8: वो भी खत्म हो जाएंगे।
10: डॉक्टर साहब इसके साथ साथ एक बात और किसान भाइयों के भी जहन में होगी कि बीज की मात्रा कितनी रखें।
8: हाँ देखो बीज बिल्कुल
10: क्या एक किस्म के अनुसार अगेती पिछेती के हिसाब अलग अलग
8: होगी। मैंने आपको शुरू में बताया था भाई यदि हम मान लें जैसे बिजाई मोटी परमल धान की किस्में कर रहे हैं तो हम कहते हैं 10 किलो ले, 8 से 10 किलो। यदि हम जो हाइब्रिड कर रहे हैं 4 से 6 किलो ले आप, और यदि हम बासमती कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं भाई 6 से 8 किलो ले आप, और यदि हम डायरेक्ट सीडेड कर रहे हैं वो 6 से 8 किलो ले आप।
10: अच्छा जी।
8: क्योंकि मैं बता दूं मोटी मोटी सी बात भाई, यदि आपने एक मरला बीजनी है पनीरी तो 2 से 2.5 किलो बीज आपके लिए काफ़ी है,
10: काफ़ी है, पर्याप्त है उसमें।
8: हाँ, और एक किले में करीबन मतलब जो 1.5 से 2 क्विंटल बीज पड़ता है यदि एक किला पूरा आपने करना हो,
10: करना हो पूरा,
8: और एक कनाल करना हो यदि आपने तो 50 किलो बीज बढ़ता है। एक स्क्वायर मीटर में आपका 40 से 50 ग्राम बीज डालना चाहिए,
10: 40 से 50 ग्राम। इस बात का ध्यान अंदाजन ध्यान रखना,
8: क्योंकि ये है यदि मान ले थोड़ा बीज डालोगे वीरेंद्र भाई आप
10: जी
8: तो पौधों की संख्या कम रहेगी, और यदि आप ज्यादा बीज डालोगे पौध पतली तैयार
10: होगी।
8: ये भी मतलब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, फिर मैं उसी पे आऊंगा फिजी वायरस पे बोना वायरस पे, क्योंकि हमने पनीरी में भी छिड़काव करना है। हमने क्या करना है वीरेंद्र भाई, एक तो 10 से 11 दिन में
10: अच्छा जी
8: एक ओसिन दवाई है और एक मतलब जो है टोकन दवाई है।
10: अच्छा जी।
8: ये डिनेट्रोफ्यूरान दवाई है, इसे 80 ग्राम का आपने छिड़काव करना है।
10: अच्छा।
8: और ये तो करना है 10 से 11 दिन में उस तेले के लिए जो
10: पौध में,
8: उसको
10: पौध में करना है छिड़काव।
8: हाँ, और एक मतलब जो है 20-22 दिन पे जो है तो मतलब पौध पड़ाई से 5 दिन पहले आपने जो है चेस्ट दवाई आती है एक चेस्ट
10: पाइमेट्रो जो उसमें देनी है
8: उसका 120 ग्राम का करना है।
10: और डॉक्टर साहब इसमें खाद वगैरह भी डालेगी कुछ?
8: हाँ बिल्कुल खाद डालेगी। मान लो यदि आप 1 किले की मतलब पौध तैयार कर रहे हो तो उसमें 10 किलो नाइट्रोजन डालेगी, 22.5 किलो यूरिया, और उसमें 10 किलो फास्फोरस डालेगी मतलब 62 किलो के करीब, 10 ही किलो पोटाश डालेगी उसमें, और जो है उसमें फिर 10 किलो जिंक भी डाल सकते हो आप।
10: अच्छा,
8: और जो
10: पौध में भी जिंक दे सके।
8: हाँ बिल्कुल, और क्योंकि आपकी मोटी तैयार होगी बढ़िया।
10: अच्छा।
8: और 22 दिन के बाद फिर आपने जो है 22 किलो यूरिया फिर देना है,
10: फिर देना
8: तो ये खाद का है भाई, इतना खाद आपने
10: जिसे रुपाई के लिए तैयार हो जाए।
8: हाँ मतलब बड़ी अच्छी खाद होगी, आमतौर पर किसान जो अवॉइड करते हैं
10: जी। हाँ, इनके लिए
8: पतली रहती
10: है, बस यूरिया का छिंटा देते हैं, चल भाई हो जाएगी।
8: तो ये स्वस्थ पौध के लिए,
10: स्वस्थ पौध के लिए,
8: मोटी पौध के लिए आपने जो है संतुलित खाद,
10: संतुलित खाद देनी है। डॉक्टर साहब
8: ये मोटी मोटी बातें हैं, हमें जो है किसान भाइयों को ध्यान देनी पड़ेगी, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है
10: जी।
8: तो यदि ये अपने जो कृषि अधिकारी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उसके साथ में संपर्क में रहेंगे। इसके अलावा जो समस्या आएंगी, कई बार पीलापन आ जाता है, हैं जी, तो उसके लिए फिर जिंक का छिड़काव, आपका लौह तत्व की भी कमी आ जाती है
10: उसके
8: लिए, यदि जलने लग जाए आपकी पौध उसके लिए पानी का छिड़काव, ये सावधानियां जो है किसानों को जरूर अपनानी पड़ेंगी, तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छी स्वस्थ पौध ले पाएंगे और तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे।
10: डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी, जाहिर है किसान भाई इससे फायदा उठाएंगे कि धान की उन्नत किस्में व नर्सरी तैयार करने में सावधानियों पर। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
12: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
13: अरे अरे अरे क्या कर रहा है?
14: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
13: उतला बोल रहा है?
14: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
13: मतलब
14: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहाँ,
13: पर हम तो सब ही डाले हैं।
14: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
13: सच है?
14: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
13: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जल्दी खेती शुरू करूंगा।
15: माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।
6: ये था हमारा आज का किसान वाणी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम का विषय था धान की उन्नत किस्में नर्सरी बिजाई में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर जैन भाटिया, पूर्व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। उससे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी
10: और वीरेंद्र भाई की
6: राम राम।

0: कार्यक्रम ग्राम संसार और इसमें मैं आपका अपना साथी गिरधारी
1: और मैं वीरेंद्र भाई
0: और मैं दोनों करते हैं कार्यक्रम के सारे सुनाने वाली मीठी मीठी प्यारी प्यारी
1: राम राम।
0: वीरेंद्र भाई
1: जी, गिरधारी भाई,
0: गर्मी बढ़ गई बहुत।
1: गिरधारी भाई देख लिया मैंने तो ही राम राम के टाइम आप ढीले पड़ गए।
0: गर्मी
1: में
0: ज्यादा
1: आप तो पुराना भी ले रहे थे और एक पानी की बोतल भी ले रहे थे, गिल्ली छोटी
0: की,
1: ठंडा पानी था और क्या था उसमें,
0: ठंडी कर ली कच्ची लासी।
1: अच्छा वो तो ठीक करे आपने,
0: दूसरी देख ले।
1: अच्छा इसमें क्या,
0: दही गिलासी में रखी।
1: अच्छा इसमें भी सांझे टाइम भी
0: बस अल्लाह से नाड़े हैं सांझा के,
1: तो पहले भी पता ही नहीं लगता अभी बात सही करे।
0: सरे 6 बजे भी इतनी तप चल रही थी, इतनी थपेड़ लग गए
1: नहीं। गिरधारी भाई ये तो आपने ठीक करे, खैर यह चीज तो मैं तो कहूँ सारे ने रखनी चाहिए, चाहे कच्ची लस्सी, चाहे दही की लस्सी, या फिर जो उनकी लस्सी हो नी मट्ठा कह दे, छाछ कह दे, गिरधारी भाई मिलना ना मिलना तो अपने हाथ में, डंगर रखो
0: अपने
1: इतनी गर्मी में इन चीजों का ध्यान रख के चल रहे हो तो इसका मतलब गर्मी से बचे रहेंगे।
0: इतने दूध दे रहे हैं कि पीना काम चल जाए।
1: अच्छा एक टाइम पर की दिक्कत है, यह बात लगी,
0: पीना काम चल गया, अपना दही काम चल गया, लस्सी बना तो मुश्किल है जब दूध देंगे।
1: हाँ नहीं गिरधारी भाई चलो वो भी पशुधन को भी बचाओ और खुद भी बचो और गैर

0: अब जेबी कितनी जोर की
1: गिरदारी भाई, आज तो नहीं बता हुआ है, तो 40-45 के तो रहता, पान पहुंच रहा था
0: 45 का स्वस्थ था।
1: हाँ, इतनी गर्मी कह रहे थे
0: ये अपने तो सजिंदे आए नहीं।
1: हाँ,
0: ये आज देर में आए सामी बैठे,
1: आज ये बेचारे गर्मी करके आए, दोपहर सट्टा अड़ के आए,
0: गर्मी में के बुला रहा था।
1: हाँ, वो तो रहे बेचारे पसीने पसीने है,
0: 10 मिनट तो बोलने को नहीं, सांस अड़ गए इनका।
1: नहीं गिरदारी भाई, वही बात है, अगले ने आकर कोई 2 घूंट पानी पिया, बैठे सांस लिया, फिर वो बोल
0: लेंगे सांस ले लिया, पर इन्हें बुला लिया।
1: हाँ, यह भी बात सही, तो इनमें सारा हो गया
0: लेने के लिए।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक

0: से अधिक बढ़ चुका है।
1: यह संदेश आकाशवाणी के सहयोग से पेश किया जा रहा है।
0: जलवायु परिवर्तन क्या है? यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु हमेशा प्राकृतिक रूप से बदलती रही हैं, जिसमें अत्यधिक ठंड और गर्म अवधियां शामिल हैं। वैज्ञानिक बर्फ के परतों, पेड़ों के तनों पर बने छल्लों और अनेक प्रकार के कोरल को देखकर इन परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज मानवीय गतिविधियां जैसे तेल, गैस और कोयला जलाना और जंगलों को काटना जलवायु परिवर्तन को तेजी से बढ़ा रही है। इससे मौसम में और भी ज्यादा उतार चढ़ाव, पौधों और जानवरों की हानि तथा पानी, भोजन और ऊर्जा की समस्याएं पैदा होती हैं। जलवायु परिवर्तन का मतलब है तापमान और मौसम के तरीकों में लंबे समय तक होने वाला बदलाव। यह एक रोचक तथ्य है। औद्योगिक युग से अब तक पृथ्वी का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: वेंद्र भाई
5: जी, गिरधारी भाई,
1: ये तो संदेश था रागनी का, और उसमें जो वहां साथी आए थे नी, थक के आर आए थे, अपनी बात कह दी।
5: बिल्कुल सही कह रही है।
1: लेकिन ये जो कुछ साथी हैं, कुछ कहना चाहें?
5: क्या कह रहे हैं,
1: लेकिन क्यों सुन लो। ये हैं जी आपके पास इंद्र, इंद्राज, परीक्षित, पार्थ, हार्दिक, उनके परिवार के सदस्य।
5: अच्छा जी, क्या लिखा?
1: सबसे पहले तो राम राम।
5: तुम्हारी तरफ से भी मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी
1: राम राम। इवन यू पूछ लिए कौन से काम के हैं।
5: बिल्कुल सही कहे,
1: नागड़ के। और आगे ये कह रही हैं कि आपके सारे प्रोग्राम माने अच्छा लग गया।
5: अच्छा जी,
1: 14-5 करोड़ साल भाई टपका विधि से पानी की बचत के बारे में बातचीत करी थी।
5: अच्छा,
1: तो बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने बातचीत बड़ी अच्छी लगी,
5: यानी के इनको जो थी ड्रिप इरिगेशन पे जो थी ये टपका सिंचाई विधि की
1: अच्छी की जानकारी आप देते हो, मैंने बड़ा अच्छा लग गया, क्योंकि आपकी जो जानकारियां हैं वह बहुत ही लाभदायक हो। तो वेंद्र भाई
5: जी,
1: जो हमारे साथी हैं इंद्राज, पार्थ, हार्दिक, तो इनमें हमारे जो कार्यक्रम है इसके बारे में लिखा, सुना और बताया कि भाई जो है हमारे इनमें श्रोता भी हैं, तो इनका ये कार्यक्रम सुनने का और संदेश भेजने का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे भी संदेश
5: गिरधारी भाई, एक चीज और देखिए, इनका संदेश भेजने का जो है अपना एक अलग ही अंदाज है।
1: बिल्कुल, ये
5: उसका सही प्रतिक्रिया दे हैं जो भी देखे।
1: बिल्कुल, तो आगे भी कार्यक्रम संदेश भेजते रहेंगे। जो अगला संदेश है ये है गांव ध्यांगड़ा से मांगेराम सैनी, दिनेश सैनी, देवदास, देवास है, देवास, प्रवीण और उनके परिवार के सदस्य हैं।
5: ये क्या लिख रहे गिरधारी भाई?
1: सबसे पहले तो राम राम,
5: तुम्हारी तरफ से भी
1: मिट्टी मिट्टी प्यारी प्यारी
5: राम राम।
1: आगे ये कह रहे हैं कि साला भाई, गिरधारी भाई, वीरेंद्र भाई, विनोद भाई, चित्रु भाई, सब ने बढ़िया प्रोग्राम पेश किया और सबका हमारा दिल से धन्यवाद।
5: तो गिरधारी भाई हमारी तरफ
1: से आगे भी क्या,
5: आगे भी कुछ लिख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं
1: कि हम आपके नियम स्रोत हैं, आपके सारे कार्यक्रम सुनो।
5: अच्छा, तो गिरधारी भाई जो सारे कार्यक्रम सुने और इनको कार्यक्रम अच्छे लगे, सभी के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम इनको अच्छे लगे, सबकी प्रशंसा करी, तो उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि हम इनकी जो
1: उम्मीद है
5: उसके ऊपर खरा उतरेंगे और अच्छे से अच्छे जो है प्रस्तुति सभी जो है देंगे, जिससे कि इनका जानकारी भी बढ़े, मनोरंजन भी हो।
1: और एक बात हो रहा है, ये साथी हैं जब भी हम प्रोग्राम दे पा रहे हैं।
5: गिरधारी भाई, या तो बात बिल्कुल सही कही आपने, जिसमें क्योंकि जब तक अच्छे श्रोता नहीं होंगे तब तक जो हम भी अच्छी प्रस्तुति शायद ना दे पाऊँ उतनी बढ़िया। जब इनसे के माध्यम से पता लगा है तो हमारा भी उत्साह वर्धन हो।
1: तो संदेश भी जनाने का एक बार फिर धन्यवाद। संदेश और भी हमारे पास आए, ये हैं गांव जोगुड़ी अमनगर से, लेकिन आप समझ गए होंगे, रणधीर सिंह बांगड़, गुरमेजो, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, कीरत और मनराज,
5: ये सभी गिरधारी भाई हमारे नियमित श्रोता।
1: तो ये कह रहे हैं जो पत्र उत्तर प्रोग्राम है आपका अन्नदाता प्रोग्राम है, किसान वाणी प्रोग्राम जी, है, सारे प्रोग्राम मैंने बड़े अच्छे लग गए। और क्योंकि रसाला भाई ने सूक्ष्म विधि का सिंचाई में प्रयोग, सिंचाई में सूक्ष्म विधि का प्रयोग, वो टपकारी बात करें
5: सिंचाई की सूक्ष्म विधि
1: उसी के बारे में बात करें कि बहुत उपयोगी जानकारी दी। और विनोद वरिंदर मोरवा रसाला गिदाई चतुरु सभी भाइयों ने मार्कंत रामराम ये सारे भाई जो है बड़ा अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। तो मार्कंत ने जो है मिट्टी मिट्टी पाई राम राम और ये अच्छा सुना है
5: उससे
1: हम प्रोग्राम देने का हौसला बढ़ाया,
5: हौसला बढ़ा। तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आगे भी कार्यक्रम में जो है अपने संदेश भेजते रहे। एक संदेश हमारे और बहुत पुराने साथी हैं, उनका है इनका पता बदल गया, अब ये हनुमानगढ़ राजस्थान से हो गए हैं। अच्छा। ये है रजाक मोहम्मद खान, समीम बेगम, इरफान खान।
5: काफी दिनों के बाद गिरधारी भाई इनका संदेश मिला, पहले पत्र आए करते थे,
1: पहले ये हनुमानगढ़ से, अब हनुमानगढ़ से है, पहले इनका कहीं और से आग्रह था। तो ये साथी हैं, ये कह रहे हैं कि हम आप प्रोग्राम सुनते हैं, हम कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं, संदेश बहुत दिनों बाद डाले है, ठीक है ना, स्वीकार करें। तो भाई देख सकते हमारे संदेश बहुत दिन पीछे डाले करो, तोड़ डाले करो।
5: हाँ, और यदि जगह बदल ली तो कोई बात नहीं, वहाँ भी हमारी पहुँच
1: जगह दिल थोड़ी बदले हैं,
5: दिल नहीं जगह बदल गई। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल में गैप वो नहीं आया, अंतर नहीं होना चाहिए और वो बरकरार रहना चाहिए। और
1: तो हम तो
5: मेल जोल संदेश के माध्यम से बने रहना चाहिए।
1: जिस तरह
5: बड़ा अच्छा लगा, प्रसन्नता हुई कि भी इतने दिनों के बाद इनका संदेश सुने।
1: जिस तरह ये आज तक लू पड़ रही नहीं, छाम की बाट थे, तो छा मिल जाए रास्ते में,
5: गिरधारी भाई या तो
1: लासी मिल जाए, उस तरह हम बाट देखा इनकी
5: ना, बिल्कुल सही
1: संदेश, संदेश आ जाए, बस
5: किस तरह संदेश आ जाए।
1: तो आज संदेश डालना,
5: आज जैसे ही इनका संदेश मिला तो बहुत ही ज्यादा खुशी हुई,
1: बस भाई खुशी है, तपती गर्मी में और
5: ठंडा मिल जाए गिरधारी भाई। वो कही कर नहीं है कि भाई जो गर्मी हो है और किसी दरख्त की छाव मिल जाए तो वह ऐसा लगा
1: सारा
5: सुख मिल गया, बस यही इच्छाओं की तरह।
1: तो संदेश भेजने का बहुत बहुत धन्यवाद। वृंद भाई एक बात और, चलो ये तो सारी बात हो जी, आपने उसकी बात भी कर ली, आप जब गांव में जाओ भी हो, गांव में रहो भी हो, अरे एक समय था कि गांव की व्यवस्था कुछ नहीं होती थी
5: जी,
1: फिर सहज सहज एक बात आई कि पंचायती राज एक्ट आ गया।
5: हाँ थोड़ा ये हो जाता, किसी का मन मुटाव हो गया, कुछ हो गया, आपस में मिलजुल के बुजुर्ग बातन बैठ देख रहे,
1: पंचायतों में थी फिर, लेकिन विकास की भी बड़ी कमी थी।
5: हाँ
1: फिर बोले भी चलो भी जब तक स्थानीय सरकार नहीं होने की ना, जब तक विकास नहीं होगा फिर
5: गांव में, क्योंकि वे समस्याओं को ज्यादा बेहतर जान,
1: हाँ समस्याओं बेहतर कर लेंगे, सड़क बना लेंगे, गली बना लेंगे, पानी की निकासी
5: की व्यवस्था हो जाएगी
1: कर लेंगे, तो उन सब वास्ते जो है फिर ग्राम पंचायत आई।
5: बिल्कुल सही कह
1: रहे हैं, इसका मतलब है कि जो उद्देश्य था ग्राम पंचायत बनाने का वो बड़ा सार्थक रहा
5: जी।
1: तो जितने भी हमारे गांव, आप देखो आज सारे गांव में ब्लॉक लग गए, पक्के सड़कें हो गई, पानी की निकासी है, जोड़ पक्के हो गए, स्कूल भी चमचमान लग रहे हैं,
5: जोड़ों पे घाट भी बन रहे हैं,
1: शमशान तक सुधर गए,
5: वहां तक भी हो गए,
1: आदमी अंतिम यात्रा करनी है
5: वो भी अच्छे, उसका भी नाम कर दिया स्वर्ग आश्रम।
1: हाँ तो इसका मतलब क्या है कि जो पंचायतें हैं वो वास्तव में गांव के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा,
5: बहुत अहम भूमिका है गिरधारी भाई, क्योंकि हर तरह से देखो अब चिकित्सालय तक हो रहे हैं गिरधारी भाई, आदमी आदमी आगे नहीं पशुओं के,
1: बिल्कुल। तो वहां हमारा एक फर्ज बना है
5: क्या
1: कि जब भी हम पंचायत सुना और चुना बड़ी ईमानदारी,
5: यह बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि वही पंचायत जो है काम करेगी जो ईमानदार होगी, अब मन से जुड़ी होगी उस गांव के साथ,
1: बिल्कुल। अब जब पहले आप उन पर खाए पी लोगे, दारुआ चल रही है और मिठाइयां चल रही
5: है, कहेंगे भाई उस पते तो इतने मिल गए, मैंने उस पते इतने मिल गए, और कहीं नहीं करें उस पर भी ले गए, उस पर भी ले गए,
1: वह पंचायत काम
5: वह काम कोई नहीं,
1: अपने पीछे पूरा करेगी या काम करेगी,
5: काम करेगी, बिल्कुल सही कही भाई। ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए और ना ही चुनना चाहिए यदि कोई ऐसा है तो।
1: तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अपनी पंचायत चुनो, ईमानदार से चुनो,
5: बढ़िया चुनो, साफ सुथरी पंचायत चुनो, जिसमें के एक जज्बा हो, लगन हो कि भी मैंने गांव का चमकाना है, गांव का विकास करना है,
1: तो काम करो। आप ये रागनी सुनो।
5: अच्छा ये भी कुछ कहना चाहिए,
1: सुन लो उनकी,
5: सुनाओ फिर क्या कहें।

0: वीरेंद्र भाई
1: जी, गिरधारी भाई
0: बात तो सारी सही थी।
1: हाँ बिल्कुल, नकली थोड़ी बात कही गिरधारी भाई
0: की बात। फिर मानना कौन आज क्या सर बदल गया?
1: समय तो बदल रहे गिरधारी भाई, परंतु
0: जो बात मना करी थी नहीं, लोग उन पर
1: ज्यादा रहे जबकि नहीं जाना चाहिए।
0: फिर एक बात है, अपने टाइम तो बन जाना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कह गिरधारी भाई, हमने समय की माननी चाहिए।
0: तो इसके अलावा आज का किसान वाणी ग्राम संसार कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी
1: और वीरेंद्र भाई की
0: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात।

श्रोताओं को ज्योतिष्मा का स्नेह भरा नमस्कार। और दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से, जहां हम आपके ईमेल्स के साथ हाजिर हैं, संदेशों के साथ, वो माध्यम जहां आप अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाते हैं, अपनी शिकायतें, सुझाव या प्रशंसा, जो कुछ भी रहता है आपका, वो सभी आप ईमेल्स के ज़रिए हम तक पहुंचाते हैं। और आपके सुझाव भी शामिल हैं, शिकायतें भी हैं, प्रशंसा हैं, अनमोल प्रतिक्रियाएं हैं, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं, क्योंकि यही हमें बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। और इस सप्ताह देश के विभिन्न कोनों से ढेरों सारे ईमेल्स मिले हैं, जिनमें आपके विचार, भावनाएं और कार्यक्रम के प्रति जो आपका अपनापन झलकता है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपके भेजे हुए ईमेल्स को शामिल करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे और उनसे जो भी आपका जैसा भी उचित आपको लगेगा, आप अगले हफ्ते फिर अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आज की आपकी बात कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं इस ईमेल के साथ, जो कि हमें पिछले हफ्ते मिला था, लेकिन ईमेल्स के आंसर करते करते इसके लिए वक्त नहीं मिला, थोड़ा लंबा है ये। और एक आग्रह जो हम करना चाहेंगे, ये ईमेल आया है ग्राम वे पोस्ट ढाणी कुतुबपुर तहसील व ज़िला हांसी से रामधारी अवाना जी का। आप कहते हैं कि 5 मई को प्रसारित आपकी बात सुना कार्यक्रम में सभी प्राप्त ईमेल निर्धारित समय पढ़कर संतोषजनक उत्तर दिए गए, तथापि ईमेल की घटती संख्या इस बात का संकेत करती है कि आपको श्रोताओं की अपेक्षाओं पर और गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसमें कार्यक्रम में सहभागिता एवं प्रभावशीलता और अधिक सुदृढ़ हो सकें। साथ ही आपने आगे जो लिखा है वो पीले रंग में लिखा है, तो थोड़ा सा पढ़ने में हमें परेशानी हो रही है इस चीज़ को। दिनांक 9 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा में बिहार राज्य की संस्कृति, इतिहास और विशेषताओं का अत्यंत सुंदर प्रस्तुतिकरण सुनने को मिला। इस उत्कृष्ट कार्यक्रम हेतु आकाशवाणी निदेशक श्री विनय श्री खुराना जी, श्री महेंद्र मोहन शर्मा जी और श्रीमती अनुराधा मोहन जी को हार्दिक बधाई। मेरा विनम्र सुझाव है कि ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को 2 भागों में प्रसारित किया जाए, ताकि प्रत्येक राज्य की अधिक विस्तृत और रोचक जानकारी श्रोताओं को मिल सके। अब देखिए, ये आपने पीले रंग में लिखा है, जिसे पढ़ने में वाकई ही थोड़ा कष्ट होता है। और दिनांक 9 मई 2026 को आपके केंद्र से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम सुबह सवेरे अनुराधा जी की प्रस्तुति में सुना। उनकी प्रस्तुति हमेशा ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और प्रभावशाली रहती है, किंतु कार्यक्रम में फिल्म स्त्री 2 का गीत झूठी खाई थी कसम प्रसारित किया गया, जो आकाशवाणी की गरिमा और प्रसारण मानकों के अनुरूप प्रतीत नहीं होता। भविष्य में ऐसे अशोभनीय गीतों के प्रसारण से परहेज करने की अपेक्षा है। और दिनांक 10 मई 2026 को प्रसारित सुबह सवेरे कार्यक्रम में प्रमिला सैनी जी की मधुर और मुस्कुराती आवाज़ में सुनने का जो आनंद मिला, विश्व मातृत्व दिवस के अवसर पर उन्होंने माँ के आंचल में का महत्व तथा अपने बच्चों के प्रति उनके त्याग, स्नेह और समर्पण पर अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला। पूरे कार्यक्रम में मातृत्व दिवस की भावना के अनुरूप मधुर और सुकून भरे गीतों का उत्कृष्ट चयन किया गया, जिससे श्रोताओं को विशेष आनंद और आत्मीयता का अनुभव हुआ। दिनांक 10 मई को 7:30 पर जय जवान कार्यक्रम में प्रदीप जी की प्रस्तुति अत्यंत प्रभावशाली रही। देशभक्ति गीतों ने मन की गहराई से स्पर्श किया। कार्यक्रम को और अधिक ओजस्वी बनाने हेतु देशभक्ति कविताओं और शायरी का समावेश किया जा सकता है, क्योंकि उत्कृष्टता की संभावना सदैव बनी रहती है। वहीं आपने प्रत्येक रविवार 6:30 से 7:30 प्रसारित थारे संदेश महारे गीत कार्यक्रम में विविधता लाने हेतु महिला प्रस्तुतकर्ता का समावेश किया जाना उचित होगा, क्योंकि अब तक यह कार्यक्रम केवल पुरुष प्रस्तुतकर्ता द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति अधिक संतुलित, आकर्षक और प्रभावशाली बनेगी। तो सर्वप्रथम तो हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने वक्त निकाल करके ये अपना ईमेल भेजा और आज हम इसको पढ़ा। तो पढ़ करके देखिए कितना कुछ नया नया सुनने को और समझने को मिलता है कि भाई आपको आपकी बात जो आपने सुना उसमें आपको संतोषजनक उत्तर मिले। 5 तारीख की आप बात कर रहे हैं, गत जो 5 मई था उसका आपने जिक्र किया है और आपने कहा कि ईमेल की घटती संख्या, तो ऐसा नहीं कि ईमेल्स की घटती हुई संख्या है,
क्योंकि ईमेल्स तो काफ़ी आते हैं, उनको पढ़ने के लिए ही वक्त, अब इतने आपका ही देखिए ना इतना लंबा ईमेल हमारे पास में है, जिसमें कि आपने टाइमली यानी डेट वाइज आपने सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो भी प्रस्तुति रही हैं हमारे प्रस्तुतकर्ता साथियों की, उन सभी की आपने चर्चा की है, चाहे वो अनुराधा जी हों, प्रोमिला सैनी जी हों या फिर प्रदीप जी हों, तो उन सभी का आपने जिक्र किया है और सभी के कार्यक्रमों की आपने सराहना की है। जो आपके थोड़े सुझाव हैं, जो आपने सुझाव दिए कि महिला उद्घोषिकाओं को शामिल किया जाए कार्यक्रम थारे संदेश महारे गीत में उसमें, और साथ ही साथ आपने जो अन्य बातें कही हैं कि भी कोई गीत जो है वो आकाशवाणी जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है वहाँ से इस तरीके के गीतों को ना बजाया जाए, तो ये बात भी निश्चित तौर पर आपकी बात विचारणीय है कि हाँ इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कि पूरी दुनिया भर में या पूरे देश भर में आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों को सुना जाता है, और जब से ये न्यूज़ ऐप पर आप सुनते हैं तो वो तो कहीं पर भी आप किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो साथ ही आपने जो सराहना भेजी है हमारे ख़ास कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा की, उसमें बिहार राज्य की बात आपने कही है, तो ये बात बिल्कुल लाजमी है कि हाँ एक ही एपिसोड में यानी 45 मिनट के कार्यक्रम में किसी भी भारत के किसी भी राज्य को, जो कि इतने विविध हैं, जहाँ पर कि अगर बिहार जैसे राज्य हो या पंजाब हरियाणा कोई भी अगर हिंदुस्तान का राज्य लिया जाए तो उन सभी का इतना विस्तार है, उनके पास अपना एक समृद्ध इतिहास है और सभी की अपनी संस्कृति है, खान पान की व्यवस्थाएँ हैं, सभी का अपना प्राकृतिक भूगोल है, वो सब चीज़ें एक 45 मिनट के कार्यक्रम में थोड़ा सा और गीतों के साथ में अगर आप करते हैं तो वैसे कोशिश अच्छी है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसको दो भागों में भी किया जा सकता है। सुझाव बहुत ही बेहतरीन है आपका और हम अपने अधिकारियों को ये बात ज़रूर, उन्होंने नोट कर ली होगी वैसे आपकी बात कि भाई इस कार्यक्रम पर अगर आप तवज्जो दे रहे हैं तो इसको दो भागों में भी बांटा जा सकता है। वहीं आपने लिखा कि सुबह सवेरे कार्यक्रम में प्रोमिला सैनी जी की प्रस्तुति, तो जी हाँ वो तो अव्वल दर्जे की हमारी प्रस्तुत करता है और हमेशा ही उनका मातृत्व दिवस हो या कोई अन्य दिवस हो वो सभी पर ही गाने जो हैं वो कार्यक्रम के अनुरूप ही चुन करके लेकर आती हैं। और साथ ही आपने लिखा कि प्रदीप जी की प्रस्तुति की सराहना की है और साथ ही कि कार्यक्रम जो है सैनिकों का जो कार्यक्रम आता है हमारे केंद्र से जय जवान, उसमें ओजस्वी बनाने के लिए देशभक्ति कविताओं और शायरी जो है उसका समावेश किया जा सकता है क्योंकि उत्कृष्टता की संभावना सदैव रहती है। जी हाँ, बेहतर से बेहतर, जो बेहतर है उसको और बेहतर करने का प्रयास, आप जैसे सुधीर जो श्रोता हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, तो आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। और साथ ही साथ आपने जो भी बातें नोट कराई हैं वो हमने अपने अधिकारी गणों को भी भेजी हैं, साथ ही साथ जो हमारे अन्य प्रस्तुतकर्ता साथी हैं वो भी कार्यक्रमों को सुन रहे होंगे और अपनी जो भी प्रशंसा हैं या जो भी खामियां हैं उनको आगे से दुरुस्त करने का वो ज़रूर प्रयास करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और आपके इस ईमेल के लिए, आपके इस वक्त के लिए और एक अनुरोध बस आपसे कि आप जो भी लिखते हैं उसको सिंपल ब्लैक एंड वाइट में लिखिए ताकि पढ़ने में थोड़ी सरलता रहे, या फिर खाली लाल पेन से लिख दीजिए जिससे कि ये जो रंग पीला है वो तो कतई थोड़ा सा परेशानी होती है उसको पढ़ने में, सिर्फ हमें ही नहीं अन्य जो हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी हैं उन्हें भी ऐसी ही किल्लत पेश आती है। तो रंगों का आप इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ज़िंदगी जितनी रंगीन हो उतनी ही बेहतर है, रंगों का अपना महत्व है हम सभी के जीवन में। तो अनुरोध आपसे बस इतना ही कि थोड़ा सा बस पीला रंग जो है वो पढ़ने में स्क्रीन पर मुश्किल हो जाती है, तो ख्याल रखिएगा इस चीज़ का, ऐसी हम आशा करते हैं। और इस ईमेल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगले हफ्ते फिर आपके ईमेल का इंतज़ार हमें रहेगा। अगला ईमेल हमारे पास है आदरणीय प्रदीप जी, विपिन सहगल जी और ज्योतिषमा जी कुशल होंगे, हम सभी परिवार के सदस्य भले अलग अलग रहते हैं लेकिन हम साथ भोजन तो कर सकते हैं, इससे हम हर समस्या सुख दुख की बातें एक साथ बैठकर कर सकते हैं। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के सेवानिवृत्त अनाउंसर कार्यक्रम अध्यक्ष और अधिकारीगण की 90 साल की प्रसारण यात्रा के उपलक्ष्य में मुलाकातें पेश करें, आदरणीय सुनील आशू जी की हो सके तो मुलाकात प्रसारित करें, और साथ ही सुबह सवेरे कार्यक्रम सर्वोत्तम पेशकश के लिए आदरणीय प्रोमिला सैनी जी, आरती जी, संध्या जी, कीर्ति जी, अनुराधा जी, शशिवारा जी, श्वेता जैन जी और गेशना जी, कोई और नाम रह गए हो तो सभी को हृदय से धन्यवाद। गत मंगलवार को आपकी बात कार्यक्रम में हमारे ईमेल का हृदय के भाव से उत्तर देने के लिए ज्योतिषमा जी को हृदय से धन्यवाद। हमारा सुझाव के अनुसार
आपकी बात कार्यक्रम दो आवाज में प्रस्तुत करें तथा साथ ही सुबह सवेरे कार्यक्रम के मूल कार्यक्रम के पीछे दूसरी आवाज़ आती है, व्यवधान का हल करें, कोई भूल हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, आपका नियमित श्रोता। जी हाँ दोस्त, आप हैं हमारे श्रोता डेर पाटन गुजरात से धीरज भी रावारी। तो सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में, जिसमें जो कि आप ही लोगों के लिए है और आपकी ही बातें इसमें होती हैं और कार्यक्रम का नाम भी है आपकी ही बात। सर्वप्रथम तो आपका स्नेह और आत्मीयता से भरा जो ये ईमेल हमें मिला है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के कार्यक्रमों के प्रति जो आपका लगाव है, प्रेम है, अपनापन है और जो आप सुझाव भेजते हैं उनके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं, धन्यवाद पेश करते हैं आपको। और जानकर के खुशी हुई कि आप नियमित रूप से हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और सुनते ही नहीं सराहते भी हैं, और जो भी आप महसूस करते हैं कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के लिए वो भी आप प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते हैं। आपने कहा कि परिवार साथ बैठकर भोजन करने तथा सुख दुख बांटने जैसी बातों को जिस सुंदर ढंग से व्यक्त किया गया वह आज के समय में बहुत प्रेरणादायक है। जी हाँ, आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन है उसमें जिसमें सिर्फ एकल परिवारों की जो है अब हमारे समाज में जो पहले अमान्यता थी वो अब बढ़ती जा रही है, जिसमें कि शायद बच्चों के ऊपर जो असर आ रहा है वो सब उसी का परिणाम है। और जो जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो चीज़ें एक दूसरी बड़ी पीढ़ी जो थी वो दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र करती थी, आगे हस्तांतरित करती थी उन चीज़ों को, तो उसमें थोड़ा सा व्यवधान तो आया है। हाँ, लेकिन परिवार के साथ चाहे दो सदस्य हैं चाहे 20 सदस्य हैं, सभी लोग अगर एक वक्त में अपने साथ भोजन बैठ कर के खाते हैं तो उसमें सुख दुख बांटने का मौका भी मिलता है और खुशियां जो हैं वो डबल हो जाती हैं और जो दुख होते हैं वो आधे रह जाते हैं जब परिवार एक साथ होता है। तो परिवार जो है वो किसी भी समाज की, देश की सबसे बड़ी ताकत जो है वो परिवार ही हो सकता है। जब छोटे छोटे परिवार मिल कर के बनते हैं तभी समाज और देश का निर्माण होता है। और अपने अगली बात कही कि सेवानिवृत्त अनाउंसर, आपकी बात तथा सुबह सवेरे कार्यक्रम के संबंध में जो आपके सुझाव हैं वो बेहद ही बिल्कुल सराहनीय हैं और हम खुद चाहते हैं कि जो हमारे पुराने प्रेजेंटर्स रहे हैं या जो हमारे अनाउंसर साथी रहे हैं उन सभी को आमंत्रित किया जाए, क्योंकि आकाशवाणी अपना 90 वर्ष पूरे कर रही है तो उसमें अगर हमारे पुराने जो अधिकारी रहे हैं या प्रस्तुतकर्ता रहे हैं उन सभी को आमंत्रित करके अगर उनका कोई इंटरव्यू टाइप इस तरीके का कोई प्रोग्राम अगर पेश किया जाएगा तो वो वाकई जो हमारे पुराने साथी हैं जो 20-30 साल से केंद्र के साथी, आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के साथ जुड़े हैं तो उन्हें सुन करके उनकी बातें बहुत ही अच्छा लगेगा। और रही बात आपने की सुबह सवेरे के संबंध में जो प्रोमिला सैनी जी की प्रस्तुति रहती है वो तो हाँ जी सभी को पसंद आती हैं, और आपने दो आवाज़ों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा है तो प्रसारण के दौरान आने वाले व्यवधान की जो और ध्यान आकर्षित कराया है तो वो हम अपने तकनीकी विभाग को ज़रूर इस बात के लिए संदेश देंगे कि आप और वो सुन ही रहे हैं आपकी बात, और भविष्य में प्रसारण और अधिक स्पष्ट और प्रभावी रहे इस सब के लिए प्रयास हमारी ओर से और हमारी जो साथी हैं उन सभी की ओर से रहेगा। और आपकी इस ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथी आपने जिन सभी प्रस्तुतकर्ता और अधिकारियों के कार्य की सराहना की है उनके उत्साहवर्धन के लिए भी हम आपके आभारी हैं, और जितनी जागरूकता से आप और संवेदनशीलता से आप ईमेल भेजते हैं वो वाकई में ही प्रेरणा देता है हमें, और आशा है भविष्य में भी आपका स्नेह, मार्गदर्शन और सुझाव हमें निरंतर यूं ही प्राप्त होता रहेगा। इस ईमेल के लिए धन्यवाद। और अब सुनते हैं ये कुछ संदेश।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, कार्यक्रम है आपकी बात। और दोस्तों, अगला ईमेल जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें मिला है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक और परी खर्चे साथ ही हैं आराध्या खर्चे, वैष्णवी खर्चे। और आप देखिए, इन्होंने जो मैसेज हमें भेजा है वो सिर्फ अपने नामों के साथ लिख करके भेज दिया है। सहभागिता तो आपकी दर्ज हमने कर ली है, लेकिन आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार की जो भी फरमाइशें आप भेजते हैं या अपने नाम की जो लिस्ट हमें भेजते हैं उसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि उनको सिर्फ और सिर्फ जो हमारा रात का प्रोग्राम आता है चांदनी रातें, आप उसमें शरीक करा सकते हैं इस प्रकार की ईमेल्स को। आपकी बात कार्यक्रम जो है वो ख़ास तौर पर सिर्फ आपके भेजे हुए सुझाव या शिकायतें या प्रतिक्रिया या जो कुछ भी आप विषय जो साझा करना चाहते हैं उन सभी से है। और इससे संदेश को उचित रूप से शामिल करने में असुविधा हो रही है हमें। नाम बेशक हमने आपके पढ़ दिए, लेकिन संदेश को हम नहीं शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये कार्यक्रम की जो एक रूपरेखा है उसके अनुरूप नहीं है। अगली बार जब आप अपना ईमेल इस कार्यक्रम में भेजें तो आपसे अनुरोध कि आप कोई बात लिख करके भेजिए जिससे जो कि कार्यक्रमों से संबंधित हो, या आपका कोई सुझाव हो, या आपकी कोई शिकायत हो, या आप किसी की करना चाहते हो कोई तारीफ, तो ऐसी कोई बात लिख करके भेजिएगा जिससे कि आपके नामों के साथ साथ हम आपके जो विषय हैं, जिस विषय पर आप कहना चाहते हैं उसको भी हम पढ़ सकें।

कार्यक्रम में अगला ईमेल हमें मिला है संजीव कुमार जी का। आपने ये ईमेल हमें भेजा है, गांव है खुखुनी, डिस्ट्रिक्ट करनाल, और आप लिखते हैं कि 16 तारीख को आई हैड लिसन द प्रोग्राम। हमेशा की तरह इनका ईमेल जो आया है वो इंग्लिश में ही है, तो उसको हम पढ़े देते हैं। आई हैड लिसन द प्रोग्राम किसानवाणी एंड ग्राम संसार। दिस प्रोग्राम वर प्रेजेंटेड बाय एंकर प्रेजेंटर मिस्टर विनोद मोरवाल इन द प्रोग्राम किसानवाणी। आई हैड सेंड करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन और मैसेज वॉज इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम बाय एंकर मिस्टर मोरवाल। थैंक्स टू मिस्टर मोरवाल, थैंक्स टू आकाशवाणी कुरुक्षेत्र इन द प्रोग्राम ग्राम संसार। मिस्टर मोरवाल हैड प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। बिफोर दिस आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज डेज। आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज इंटरेस्टिंग एंड नॉलेज प्रोवाइडर। थैंक्स अगेन टू मिस्टर मोरवाल, थैंक्स टू आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। एंड टुडे ऑन संडे यानी कि 17 तारीख की आप बात करें, आई लिसन द प्रोग्राम सुबह सवेरे, इट वॉज प्रेजेंटेड बाय मिसेस कीर्ति। इन दिस प्रोग्राम मिसेस कीर्ति हैड प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, एंड दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज प्रोवाइडेड थैंक्स टू मिसेस कीर्ति। एंड सजेशन है आपका कि वाइल सेंडिंग द मैसेज इन द प्रोग्राम सुबह सवेरे थ्रू टेक्स्ट मैसेज, आई जनरली फेस नेटवर्क प्रॉब्लम। आई हैव रेज दिस इशू विद सीनियर अथॉरिटीज मेनी टाइम्स, कंप्लेंट्स आर रजिस्टर्ड मेनी टाइम्स एंड द प्रॉब्लम अकर्स अगेन एंड अगेन। इफ पॉसिबल प्लीज रेज दिस इशू विद द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंसर्न अथॉरिटीज। पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम्स को सुना, और आप जितने सचेत हैं कि भाई आप प्रोग्राम्स को सुनते हैं, और जो इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स रहते हैं जिनका कि इन्फॉर्मेशन रहता है उद्देश्य, तो वो आप सुनने के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं उन प्रोग्राम्स को। आप नॉलेज सीकर हैं ये हम जानते हैं, आपको अपने ज्ञान में इजाफा करना, ज्ञान की वृद्धि करना, ये सब चीज़ें आपको पसंद आती हैं। तो ऐसे जो सुधी श्रोता होते हैं उनसे ना सिर्फ उनका बल्कि दूसरों का भी भला हो जाता है। कि आपने सर्वप्रथम ये लिखा है कि भाई दिस प्रोग्राम किसानवाणी और ग्राम संसार की आपने बात कही, तो विनोद मोरवाल जी निश्चित तौर पर वो हमारे बहुत ही एक कहेंगे कि ज्ञानवान, साथ ही साथ बहुत ही खुश दिल इंसान और खुश मिजाज इंसान हैं, जो कि किसानवाणी प्रोग्राम या हमारे ग्राम संसार प्रोग्राम को पेश करते हैं। और आपने जो उनकी सराहना भेजी है उसको अगर वो सुन रहे होंगे तो ज़रूर वो उनको खुशी हो रही होगी। 16 मई का जो प्रोग्राम उन्होंने कर रहा उस जिसमें आपने करेक्ट आंसर भेजा और आपके नामों को शामिल भी किया गया, तो लिसनर जब अपने नाम सुन लेते हैं तो जाहिर बात है उन्हें खुशी तो होगी ही होगी। और आपने ये भी कहा कि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को धन्यवाद, तो हम आपको सभी की ओर से धन्यवाद कहते हैं, चाहे विनोद मोरवाल जी हैं, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है, क्योंकि आपकी बात प्रोग्राम हम दे रहे हैं तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि अगर आप हमें थैंक्स बोल रहे हैं तो हम आपके थैंक्स को एक्सेप्ट करते हैं, और साथ ही साथ अपनी ओर से आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेज भी भेजते हैं। और साथ ही कि आपने ये भी लिखा कि इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी, जानकारी जो दी, जो कि उस दिन था इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, प्रकाश का दिन, और वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे, तो ये 17 मई को मनाया गया। और इन सब विषयों पर जो आपको जानकारी नहीं थी, तो यही तो उद्देश्य है आकाशवाणी का, चाहे आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है या कोई अन्य केंद्र है या विविध भारती है, ये सभी इसी मकसद से चल रहे हैं कि भाई ना सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन कराया जाए बल्कि आपको इन्फॉर्मेशन या जानकारियाँ भी साथ के साथ दी जाएँ। तो आपको जो जानकारी थी वो पहले नहीं थी, और इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में आपको जानकारी मिली, आपकी जानकारी में, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, ये जानकर के बहुत खुशी हुई। और विनोद मोरवाल जी वो माध्यम बने जिसके के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए मिली, किसानवाणी और ग्राम संसार। और साथ ही आपने एक और हमारे प्रस्तुतकर्ता साथी के लिए मैसेज भेजा है, वो है कीर्ति। तो कीर्ति ने संडे का प्रोग्राम जो है वो सुबह का पेश किया था, सुबह सवेरे, वो भी आपने सुना। और आपको जो उन्होंने जानकारी दी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जी हाँ, हाइपरटेंशन सुनकर के ही टेंशन हो जाती है, तो
उस पर भी जो जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी और आपने उनकी सराहना भेजी है। तो कीर्ति जहाँ भी हों, कीर्ति इस प्रोग्राम को सुने और भाई एक्सेप्ट करें अपना अप्रिसिएशन जो आपको मिल रहा है। और साथ ही आपने लिखा है कि एक सजेशन है आपका, वाइल सेंडिंग द मैसेज, जब भी आप मैसेज भेजते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम में, वो टेक्स्ट मैसेज होता है और आपको जनरली फेस आप करते हैं नेटवर्क का इशू, तो नेटवर्क का इशू तो कहीं पर भी हो सकता है। और आपने ये कंप्लेंट पहले भी भेजी है कि जो भी कंप्लेंट नंबर आपने लिख भेजा है उसका, कि ये जो समस्या आप जिससे दो चार आपने जिक्र किया है कि दो चार होते हैं, तो भविष्य में ना हो ऐसा हम अपने हमारे अधिकारी जो हैं उन्होंने ज़रूर इस चीज़ को नोट किया होगा और भविष्य में ऐसी कोई कंप्लेंट ना हो ऐसी हम कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो भी रेज दिस इश्यू विद द सर्विस प्रोवाइडर एंड कंसर्न अथॉरिटीज़, तो जी हाँ जिक्र ज़रूर किया जाएगा, ना सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर से बल्कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन सभी ने इस चीज़ को नोट कर लिया है और आगे ऐसा ना हो। नेटवर्क का इशू तो देखिए आपके एंड पर भी ऐसा हो सकता है कि कोई टेक्निकल अगर ग्लिच है तो वो तो कहीं पर भी, चाहे इस एंड पर हो या उस एंड पर हो, तो वो तो सभी हेल्पलेस हैं ऐसे में काम करने में। आपने ये नहीं जिक्र किया कि किस किस्म का प्रॉब्लम आप फेस करते हैं। आई हैव रेज दिस इशू विद दी अथॉरिटीज मेनी टाइम्स, जी हाँ किया आपने, जिक्र किया है इन चीज़ों का। तो मैसेज अब आप भेजते हैं तो टेक्स्ट मैसेज रहता है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, तो ये तो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज हैं उनका भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन देखिए ना, आपका ईमेल हर हफ्ते शामिल होता है, साथ ही साथ आप सुबह सवेरे में भी अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क कराते हैं, तो अच्छी बात है, इतने अच्छे लिसनर्स हम लोगों को मिले हुए हैं आकाशवाणी कुरुक्षेत्र को, तो ये आपका अपना मोहब्बत है, आपका अपना प्यार है और साथ ही साथ आपकी अपनी जो है भाई आपका अपना केंद्र है, तभी तो आप लोग इसको इतने प्यार से सुनते हैं। और ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि सराहना, प्रशंसा, तारीफें जो भी चाहते हैं आप, अपने सजेशंस भी हमें भेजते हैं, उन सभी के लिए हम कहेंगे धन्यवाद और इस ईमेल के लिए भी कहेंगे धन्यवाद। तो संजीव कुमार जी जिन्होंने ये ईमेल भेजा था, गाँव खुखनी से, करनाल में है ये, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक अंतिम ईमेल जो कि पिछले सप्ताह प्रस्तुत किए गए साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर है, जो कि प्रभावशाली और भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया है। वाणी, भाव व्यक्ति, भाव अभिव्यक्ति और कहानी कहने की शैली ने हमें प्रभावित किया। ये ईमेल हमें भेजा है मेघा, सरिता और राज ने मिर्ज़ापुर, आकाशवाणी मिर्ज़ापुर कुरुक्षेत्र से। तो आपकी इस उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपने जो हमें प्रेषित किया उन्हें हम स्वीकार करते हैं। उज्जवल भविष्य और निरंतर सफल प्रस्तुतियों की हम कामना करते हैं। तो धन्यवाद इस ईमेल के लिए आप सभी का। आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जो गत सप्ताह सुनाई गई थी वो पसंद आई, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद। और इसी के साथ अब चलने का वक्त हो चला है। चलने से पहले हम नोट कराए देते हैं अपना ईमेल एड्रेस जो कि है aapkibaat@gmail.com, aapkibaat@gmail.com। और कहना चाहेंगे आपसे कि हाँ, इजाज़त तो हम ले रहे हैं लेकिन कार्यक्रम के इस थोड़े से देर के बाद में आप दूसरा प्रोग्राम सुनेंगे, कुछ बातें कुछ गीत, लेकिन अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो नियमित तौर पर आप भेजिए। प्रोग्राम्स को सिर्फ सुनिए नहीं, अपनी जो भी प्रतिक्रिया रहती है उसको दर्ज आप ज़रूर कराइए। और इसी सब के साथ इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से, अगले हफ्ते तक नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम आपकी बात FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को बहुत ही प्यारा सा नमस्कार ज्योतिष माँ की ओर से। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र, स्वागत है आप सभी का। आज क्यों ना बातें करें वक्त की, जो कि कभी ठहरता नहीं। कभी ये बचपन की गलियों में हमें बेफिक्री से हंसा देता है, तो कभी जिम्मेदारियों के बीच खामोश खड़ा कर देता है। पहले लोग एक दूसरे के घर बिना बताए पहुंच जाया करते थे, अब मिलने से पहले भी मोबाइल पर समय मांगना पड़ता है। पहले चिट्ठियों में भावनाएं होती थी, आज इमोजी में एहसास ढूंढे जाते हैं। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, वो है दिल से दिल का रिश्ता। समय चाहे कितना भी बदल जाए, अच्छे गीत, प्यारी यादें और अपनों की बातें हमेशा दिल को सुकून देती हैं। आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत, में हम बात करेंगे बदलते दौर की, रिश्तों की, सपनों की और उन यादों की जो आज भी हमारे दिल के किसी कोने में मुस्कुरा रही हैं। बातों के साथ ही सुनेंगे कुछ ऐसे गीत जो कभी हमें पुराने दिनों में ले जाएंगे तो कभी नई उम्मीदों से भर देंगे। तो श्रोताओं, अगले कुछ पलों तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सफ़र होगा बातों का और जज्बातों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत से सफ़र को इस एक गीत के साथ।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण
1: हर घड़ी
0: 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: और दोस्तों, जिंदगी जो कि हर वक्त अपना रूप बदलती रहती है, केवल धुन नहीं जबकि शब्द उसके बदल रहे हैं, बदलते दौर समय की सच्चाई को कितने ही खूबसूरत ढंग से ये बनाते हैं कि भाई ना सिर्फ समय बदलता है, दौर भी बदल जाते हैं और रियासतें सियासतें सब बदल जाती हैं। सभी समय जो है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता, हर दिन हर पल जीवन नए रंग दिखलाता है। पहले जहां लोग परिवार के साथ बैठकर बातें करते थे, वहीं आज मोबाइल

और सोशल मीडिया ने संवाद का तरीका बदल दिया है। सुविधाएं बढ़ी हैं और रिश्तों में दूरियां भी कहीं ना कहीं बढ़ती सी दिखाई देती हैं। जो पुराने समय में सादगी, अपनापन और धैर्य जीवन का हिस्सा हुआ करते थे, आज का दौर तेज रफ्तार का है, जहाँ हर कोई समय के पीछे भाग रहा है। तकनीक ने जीवन को आसान बनाया, लेकिन मानसिक शांति और आपसी जुड़ाव कम होता जा रहा है। हालांकि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है और समय के साथ चलना भी आवश्यक है। हर पीढ़ी अपने साथ नई सोच और नए अवसर लेकर आती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आधुनिकता को अपनाते हुए हम अपनी संस्कृति, अपनी संवेदनाएं और मानवीय रिश्तों को भी साथ लेकर चलें। और जीवन जो है वो परिवर्तन का नाम है। सुख दुख, सफलता असफलता, बदलते हालात सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए हर पल को पॉजिटिविटी या सकारात्मकता के साथ जीना और समय की कद्र करना ही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी हो सकती है।

और दोस्तों, जब जीवन में खुशियों के पल आते हैं, अपनों का साथ मिलता है, मन खुश होता है और हर क्षण आनंद से भरा लगता है, तब अक्सर हमारे दिल से यही आवाज़ निकलती है कि समय तो धीरे चल। इंसान चाहता है कि सुखद पल ठहर जाएं, क्योंकि खुशियां हमेशा कम समय की लगती हैं। बचपन की यादें हों, परिवार के साथ बिताए गए पल, दोस्तों की बातें, किसी प्रियजन का साथ या जीवन की कोई विशेष सफलता, ये सब ऐसे क्षण होते हैं जिन्हें हम हमेशा अपने पास संजोए रखना चाहते हैं। उस समय लगता है कि घड़ी की सुइयां जो हैं वो बहुत तेज़ चल रही हैं, क्यों ना ये थोड़ी धीरे हो जाएं। दरअसल समय अपनी गति से ही चल रहा होता है, लेकिन हमारी भावनाएं उसकी रफ्तार को महसूस करती हैं। दुख के समय वही समय बहुत लंबा लगता है और खुशियों में बहुत छोटा। इसलिए कहा जाता है कि जीवन के हर पल को पूरी सच्चाई और प्रेम से जीना चाहिए। समय कभी नहीं रुकता, लेकिन उसकी यादें हमारे जीवन को सुंदर बना देती हैं। इसलिए जब भी जीवन में खुशियाँ आएँ, उन्हें खुलकर जीना चाहिए, ताकि आने वाले समय में वही पल मुस्कान बनकर याद बन जाएं।

जी हाँ, अगर हम चाहें कि समय तो धीरे चल, तो क्या वक्त अपनी गति को रोकता है या थोड़ा धीमा करता है? नहीं, एक बार जो समय चला गया वो कभी नहीं आएगा। शायद जीवन का सबसे अनमोल धन जो है वो वक्त ही है, क्योंकि एक बार जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि कल जो चीज़ें आज हमारे पास हैं, वो हों या ना हों, ये पल हैं जो वो कल हों या ना हों, इंसान हैं, धन हैं, वस्तुएं हैं, या बहुत सी चीज़ें दोबारा हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन वक्त को नहीं। खोया हुआ समय कभी भी वापस नहीं मिल सकता, चाहे आप लाख दौलत खर्च कीजिए। जीवन में सफलता, रिश्ते, खुशियां और सपने सब समय के सही उपयोग पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। वही समय को व्यर्थ गंवाने वाला जो व्यक्ति है, वो बाद में पछताता है। और आज की इस तेज भागती दुनिया में हमें हर पल को समझदारी और सकारात्मकता के सोच के साथ जीना चाहिए। अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के लिए समय निकालना भी उतना ही ज़रूरी है। कहीं बाद में हाथ मलते न रह जाना पड़े कि काश हम कुछ वक्त साथ बैठ पाते या अपनी बातें कह पाते एक दूसरे के साथ, क्योंकि यही पल आगे चलकर यादें बन जाते हैं। और दोस्तों, वर्तमान ही यानी जो प्रेजेंट है, वही सबसे बड़ा सच है। इसलिए हर दिन को खुशी से, मेहनत करते हुए और प्रेम के साथ जीना चाहिए, क्योंकि आने वाला कल कैसा हो ये कोई नहीं जानता।

और दोस्तों, हर पल अपना तब लगने लगता है जब उसमें किसी अपने का साथ हो और अपनापन शामिल हो। जीवन की असली खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि रिश्तों की गर्माहट में छिपी होती है। जब कोई हमारा अपना सुख दुख में साथ खड़ा होता है, हमारी बातें बिन कहे ही समझ जाता है, भावनाओं को महसूस करता है, तब साधारण पल भी बेहद खास बन जाता है। परिवार, मित्र, प्रियजन और हमारे जीवन को सभी अर्थ देते हैं ये। उनके साथ बिताया गया समय दिल को सुकून और आत्मीयता से भरता है। यही अपनेपन का एहसास हमें कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत देता है और जीवन को सुंदर बना देता है।

जी दोस्तों, जीवन में समय और अपने लोगों की अहमियत सबसे अधिक होती है। बीतता हुआ वक्त ये सिखलाता है कि खुशियां बड़ी चीज़ों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं। अपनों के साथ बिताया गया वक्त जीवन की सबसे सुंदर पूंजी बन जाता है। इसलिए अपने रिश्तों को समय दीजिए, मुस्कुराइए, प्रेम बांटिए और हर पल को दिल से जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त रुकता नहीं लेकिन उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। और इसी खूबसूरत संदेश के साथ इजाज़त चाहेंगे और इस गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है और अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनेंगे आप अंग्रेजी समाचार और रात्रि 9:15 से होंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कृपया रेल की प्रतीक्षा कीजिए।

0: गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक $350 अरब का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें $100 अरब का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में 1 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली NCR में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और KL राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends 3rd India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
4: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
3: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
4: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
3: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
4: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
3: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital, Rome, later tonight. We have more from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
5: Talent and innovation exchange between India and Italy is expected to grow in the coming years. Speaking ahead of Prime Minister Narendra Modi's visit, which forms the final leg of his five-nation tour, Indian Ambassador Vani Sarraju Rao said the trip would provide an important opportunity to address issues related to the mobility and welfare of the Indian community. Ms. Rao noted that the Migration and Mobility Agreement signed in 2023 is already operational between the two countries. She expressed optimism that the movement of Indian students, currently around 5,000 in Italy, as well as academicians and researchers, is likely to increase in the near future. She further highlighted trade, defense, mobility, maritime security and port-related cooperation as key priority areas for bilateral discussions.
6: Defense will be an important area where we are going to see how we can boost industrial partnerships. Both countries attach a great deal of importance to maritime security, and we are looking at strengthening our respective supply chains, building resilient trade partnerships, energy security, and also to ensure that the industrial ecosystems of the two countries become competitive globally.
5: This is Suparna Bhatia from Rome.
3: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today called for deeper collaboration between industry and government to advance ease of doing business, enhance India's competitiveness, and accelerate the country's journey towards Viksit Bharat. The minister was speaking at the India Business

एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत अभी आप सुन रहे थे इशारा फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

जंगली फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम आपके लिए यहीं समाप्त होता है। इजाजत दीजिए।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

श्रोताओं नमस्कार, आज के फनकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये दुनिया फिल्मी पर्दे पर एक हीरो देखना चाहती है। फिल्मी हीरो यानी तड़क भड़क से भरा बलिष्ठ शरीर, दिल लुभाने वाला अंदाज जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाएं। फिल्मी हीरो के सेट मानसिकता को तोड़कर बड़े पर्दे पर एक आम इंसान को खास महसूस करवाने का काम किया हमारे आज के फनकार ने, जिन्होंने ये दिखा दिया कि आपका अभिनय आपको किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। रोल छोटा हो या बड़ा, अपनी छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त है। आज बात एक ऐसे फनकार की जिनके अभिनय का लोहा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी माना गया है। आज के फनकार हैं मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी।

0: आज जिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हम जानते हैं, उनके पीछे छुपी है सालों की कड़ी मेहनत और एक लंबा संघर्ष। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में एक किसान परिवार में 8 बच्चों में पहले बच्चे के रूप में आए नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उनकी किशोरावस्था उत्तराखंड में बीती और हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में रसायन शास्त्र के साथ स्नातक हुए। यहाँ से वडोदरा चले गए और एक केमिस्ट के रूप में काम करने लगे। एक नए काम की तलाश में वो आ गए दिल्ली और यहाँ से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया।
1: एक

प्ले देखते हुए उन्हें लगा कि वो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं। उन्हें मन ही मन यकीन हो गया कि अब तक की जिंदगी में एक यही ऐसा काम है जो उन्हें दिल से खींचता है। बस इस दिशा में पहला कदम बढ़ाते हुए वो जा पहुँचे NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाज बताते हैं कि NSD का हर दिन उनके लिए खास था, वो कुछ ना कुछ नया सीख रहे थे। यहाँ जब वो तीसरे साल में थे तब मॉस्को से आए एक डायरेक्टर ने उन्हें एक ऐसी सीख दी जिसने उनके अभिनय का रुख ही मोड़ दिया। नवाज को समझ आया कि अभिनय किसी टेक्निक का काम नहीं बल्कि किसी किरदार को आत्मसात करना है।

एनएसडी के दिन जितने बेहतरीन रहे उतने ही मुश्किल भरे दिनों से सामना हुआ मुंबई आकर। नवाज रोजाना काम की तलाश में ऑडिशन पर ऑडिशन देने जाते। यहाँ उनकी काबिलियत से पहले उनके लुक और रंग पर ही उन्हें नकार दिया जाता। नवाज खुद बताते हैं कि उन्हें कभी भी अपने लुक अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं रहा। उनका आत्मविश्वास सिर्फ अपनी अभिनय क्षमता को लेकर ही था, लेकिन इस अभिनय क्षमता को लोगों तक लाने के लिए तकरीबन 10 साल की कड़ी मेहनत रही।

नवाज पर्दे पर ये गीत गाते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना भी आसान नहीं था। मुंबई जहाँ सभी को मौका देती है, वहीं वो लोगों को पूरी शिद्दत से परखती भी है। 10 साल के लंबे संघर्ष में रहने खाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए नवाज ने एक्टिंग वर्कशॉप लेनी शुरू कर दी। वो खुद फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कई नए अभिनेताओं को फिल्मों में जाने के लिए तैयार भी कर रहे थे। उनके शिष्यों में अभिनेता रणवीर सिंह का नाम भी शामिल है, जो अपनी फिल्म बैंड बाजा बारात के लिए नवाज के पास तैयार हो रहे थे।

आखिर वो दिन भी आया जब नवाज को काम मिलना शुरू हुआ। सबसे पहली बार वो फिल्मी पर्दे पर नजर आए आमिर खान के सामने। 1999 की ये फिल्म थी सरफरोश। मात्र 2 मिनट के सीन में नवाज ने मानो अपने अभिनय से जान फूंक दी। उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलने लगे। इनमें से कुछ फिल्में हैं शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, फैमिली, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल। तकरीबन 8 सालों तक वो ऐसे कई किरदार निभाते रहे जिनके नाम तक नहीं होते थे। साल 2007 में आई फिल्म ब्लैक फ्राइडे, इस फिल्म में उनके किरदार को पहली बार नाम मिला। पहली बार मुख्य भूमिका में नजर आए फिल्म पतंग में। ये फिल्म फेस्टिवल्स में काफी सराही गई, लेकिन अब भी वो सफलता उनसे दूर थी जिनके वो हकदार थे।

नवाज अपने अभिनय से हर छोटे किरदारों में भी अपनी पहचान बना रहे थे, लेकिन अभी भी वो समय नहीं आया था जब लोग उन्हें उनके नाम से जानें। इस बीच साल 2011 में आई फिल्म देख इंडियन सर्कस, इस फिल्म ने कई फिल्म फेस्टिवल्स में पुरस्कार अपने नाम किए। अब नवाज का समय आ चुका था, उनकी अभिनीत फिल्में तो नाम कमा ही रही थीं और उनके किरदारों को भी पहचान मिल रही थी। इसी दौरान आई वो फिल्म जिसने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की सफलता पाने के लंबे इंतजार को खत्म किया। ये फिल्म थी गैंग्स ऑफ

नवाज को गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 ने जितनी पहचान दिलाई उससे ज्यादा तारीफ उन्हें मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में। उनके किरदार फैजल खान ने घर घर में अपनी पहचान बना ली। ये वो समय था जब नवाज भीड़ से अलग नजर आने लगे थे और उन्हें देखने के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। साल 2012 में ही उन्हें उनका पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। स्पेशल ज्यूरी पुरस्कार श्रेणी में नवाज को उनकी फिल्म देख इंडियन सर्कस, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, कहानी और तलाश के लिए ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया।

नवाज को भले ही देश में उनके काम के लिए सराहना मिलने में देर लगी, लेकिन इसके पहले से ही उन्हें अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स के जरिए विदेशों में कई पुरस्कार मिलने लगे थे। वो एक ऐसे अभिनेता के रूप में पहचाने जाने लगे थे जो अपने अभिनय, हाव भाव और संवाद अदायगी से किसी भी किरदार को वास्तविक बनाने का मादा रखता है। वो आज भी कई ऐसी फिल्में करते हैं जिन्हें फिल्म उत्सवों में सराहा जाता है।

समय आ चुका था जब न सिर्फ नवाज के किरदारों को पसंद किया जा रहा था बल्कि उनके डायलॉग्स भी लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा गया उनका डायलॉग, बाप का दादा का सबका बदला लेगा फैजल। किक में बोला गया उनका डायलॉग, टक से मौत को छूकर वापस आ सकता हूँ, या जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, या कभी कभी लगता है अपनिच भगवान है। ये सारे संवाद नवाज के अंदाज से खास बन जाते हैं। हालांकि नवाज ये कहते हैं कि उनके जो भी डायलॉग्स फेमस हुए हैं उनमें उन्हें अपनी एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई है, लेकिन लोगों को वो खासे पसंद आने लगे।

नवाज अपने अभिनय को सबसे ऊपर मानते हैं। उनका मानना है कि जब वो किसी किरदार को निभा रहे हैं तो उनके मन की सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें उस किरदार को जीवंत करने में मदद करती है। लंच बॉक्स फिल्म के एक छोटे से किरदार में भी वो अपनी सोच से रंग भरते हैं। वहीं मोतीचूर चकनाचूर में वो बेहद संजीदा नजर आते हैं। उनके किरदारों को देखा जाए तो वो सिर्फ संवाद ही नहीं बोलते बल्कि आंखों के जरिए उस किरदार के मन के भावों को भी सामने ले आते हैं। यही बात उनके हर किरदार को उनसे जुदा करती है और आप पर्दे पर नवाज को नहीं बल्कि उस किरदार को ही पाते।

नवाज अपने किरदार में किस कदर रम जाते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण उनका किरदार रमन है, जो नजर आया फिल्म रमन राघव 2.0 में। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साइको रमन नाम से रिलीज किया गया। नवाज एक सीरियल किलर की भूमिका में थे। फिल्म में एक सीन में 10 मिनट का मोनोलॉग था, जिसे अलग अलग तरह से शूट करने के कारण नवाज को उसी एक जगह पर खड़े रहना पड़ा और तकरीबन वो 300 मिनट तक वही डायलॉग बोलते रहे। फिल्म के शूट के दौरान वो बेहोश भी हो गए थे और अस्पताल के बेड में बेहोशी की हालत में भी अपने डायलॉग्स बोल रहे थे। डॉक्टर ने उन्हें इस किरदार से बाहर निकलने की सलाह दी थी, लेकिन नवाज लोगों के दिलों में बस चुके थे।

बाज अपने हर किरदार के लिए भरपूर तैयारी करते हैं। स्ट्रगल के दिनों में घर के पास के सब्जी वाले को लगता था कि नवाज देख नहीं सकते, जबकि एक दूसरे दुकानदार से वो हकलाकर बात करते, एक से तुतलाकर तो एक के सामने वो लंगड़ाकर चलते। ये दुनिया ही उनके लिए मानो रंगमंच हो। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपने किरदार के दर्द को बयान करने के लिए वो आंखों में ग्लिसरीन लगाए घूमते थे ताकि उनकी आंखें लाल ही रहें। बदलापुर में वो अपनी हंसी से ही आपको किरदार से नफरत करने पर मजबूर कर देते हैं।

नवाज के बेहतरीन किरदारों में से यहाँ कुछ किरदारों की बात करते हैं। दशरथ मांझी के किरदार में फिल्म मांझी द माउंटेन मैन में नवाज का बिल्कुल अलग रूप नजर आया। यहाँ वो पहाड़ से बातें करते हैं तो लगता है जैसे फिल्मी पर्दे पर थिएटर की दुनिया जी उठी हो। सआदत हसन मंटो के किरदार को भी उन्होंने खूब निभाया और जब ठाकरे में बाल ठाकरे के रूप में सामने आए तो खुद को ऐसे बदला कि फर्क करना मुश्किल सा लगा। हड्डी फिल्म में एक ट्रांसजेंडर के रूप में ढलने के लिए नवाज ने मानो खुद को पूरी तरह बदल दिया। वहीं ब्रिटिश क्राइम ड्रामा मैक माफिया में उनके किरदार ने सबका दिल जीता तो सेक्रेट गेम्स में उनके किरदार गणेश गायतोंडे ने अपना रुतबा कायम किया। ओटीटी पर रिलीज फिल्मों ने उनके प्रशंसकों में लगातार बढ़ोतरी की है। साल 2025 में आई फिल्म कोस्टा फर्नांडिस को भी लोगों ने काफी पसंद किया।

नवाज कहते हैं कि उन्हें फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और ऐशो आराम से कहीं ज्यादा अपने अभिनय से प्यार है। वो सारी जिंदगी सिर्फ अभिनय करना चाहते हैं। देश विदेश में कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए जिंदगी एक सच्चाई का नाम है और वो ये मानते हैं कि जब तक एक इंसान में सच्चाई है तभी तक वो बेहतरीन अभिनय कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी किरदार को जीते हैं तभी आप लोगों के दिलों तक पहुँचते हैं।

कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जो भी हासिल किया वो अपनी मेहनत और लगन के बल पर ही पाया। वो उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों से कम संसाधनों के साथ आते हैं। नवाज ये सिखाते हैं कि अगर आप में हुनर है और लगन है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। नवाज के निभाए किरदारों में जितनी ईमानदारी है उतनी ही ईमानदारी और निश्चलता उनकी मुस्कान में भी झलकती है। हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी

0: आज के फनकार। कार्यक्रम आज केंद्रित था मेहनत और जुनून से कामयाबी की ऊंचाई छूने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम FM 101.4 MHz पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

कार्यक्रम है चांदी रातें और स्वागत है हमारे तमाम सुनने वालों का, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार ज्योतिष्मा की ओर से कार्यक्रम चांदी रातें, जिसमें आपकी भेजी हुई फरमाइशें हैं, नामों की फहरिस्त है, हाजिर हैं हम सभी के साथ। और कार्यक्रम में जो पहला जो संदेश व्हाट्सएप संदेश हमें मिल रहा है वो है हमारे आप सभी श्रोताओं की ओर से, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू। अगला मैसेज है हमारे आप सभी श्रोताओं का, दाऊद से आए सहनपुर से हमें साबरी शर्मा, साबरी मदद से मुजाकिर अजरी अंसारी, मोहल्ला हलवाइयान शेरपुर जिला बिजनौर से हमें फरीदी इकबाल फरीदी, सितारा नसीम परवीन रोजी बहरीन मिट्टू भैया साजरानी और साथ हैं हिना कौशल। अगला फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज है हमारे पास मानपुर साबरी जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान अताउर रहमान हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंचोलिया की फरमाइश है ग्राम पंजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। अगला मैसेज है गंगोगढ़ उत्तर प्रदेश के श्रोताओं का, जिसमें शामिल है मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजी शेख, दानिश शेख और अमन आफरीदी। अगला व्हाट्सएप संदेश है ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे, संचित प्रथमेश, प्रणाली सरवत और कुमारी सानवी देश। अगला मैसेज नजर आ रहा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीवीएस नमाकर, निर्मला विशाल नमाकर, मलकापुर से नारायण इंगे, राजकुमार खर्चे और आशीष मुरहेकर। गांव व डागर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से फरमाइश आई है जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर की ओर से। अगला व्हाट्सएप संदेश हमें नजर आ रहा है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से है आप सभी श्रोता, विनोद पुरी, वीपी रंजू, अशोक पुरी, सुशील पुरी, बीके पुरी, कैलाश, नीलम, रमन, रमा पाली और सुनील पाठक। और अगला व्हाट्सएप संदेश है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही महाराज जहाँ का आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म एजेंट विनोद का गीत, जिसमें आवाज देखते हैं अभी जिसमें गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत भी अमिताभ भट्टाचार्य का है। सुनते हैं फिल्म एजेंट विनोद का गीत।

दोस्तों, इस गीत में आवाज़ थी सुनिधि चौहान की। और अगले गीत को सुनने के लिए हैं आप सभी ख्वाहिशमंद श्रोता हमारे अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। अगला मैसेज है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता और केशु, और साथ हैं रिधान खुराना। अगला व्हाट्सएप संदेश हमारे पास है लाल माता सुदामा नगर रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान के श्रोता हैं हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, काना, मनोहर भाई बागरी और प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रतलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी। और मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोता हैं अभिजीत गवहाणकर, राही, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश और टुकटुक गवहाणकर। अगला फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज है हमारे पास गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामणि शेंडे, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने की फरमाइश आई है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब गाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। अगला फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज हमें नज़र आ रहा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से हैं बबलेश पमार, डैनी पमार और मनीष पमार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से हैं खुदा बख्श खलीफा, मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा, हिना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि की फरमाइश आई है। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून। अस्तुपुरा जिला मऊ से फरमाइश भेजने वाले श्रोता हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आज़ाद की फरमाइश पहुंची है। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से हैं बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार चिंडालिया। अगला वर्ड फरमाइशी मैसेज है शेरवानी स्कूल गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। अगले मैसेज को हम तलक पहुंचाया है मुंदी चक भागलपुर से दिलीप कुमार सोनी, फाजिल का पंजाब से हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी टिवानसी, वाणी खेड़ा, आरवी खेड़ा, जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। नई बस्ती गोइंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, तैमूर और कलीम अंसारी। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत की फरमाइश आई है। गांव हरुडी चांडिल झारखंड से हैं तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा, मनमोहिनी महतो और दीन बिंदु महतो। गंजुड़वारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान, यासीन और शमशुल कमर राही की फरमाइश आई है। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला, सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख। और आप सब ने फरमाइश भेजी है ऐतराज़ फिल्म के गीत के लिए जिसमें आवाज़ है अदनान सामी और सुनिधि चौहान की। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अगले गीत को सुनने के लिए ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी। तालुका निवासा खुपटी महाराष्ट्र से हैं बंडू लोहार पोपलघट, माया शिवांश चंद्रकला और देवीदास पोपलघट। अगला मैसेज है हमारे पास खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल और डुगू भाविक सिक्का। आदर्श नगर मलोट पंजाब से फरमाइश पहुंची है राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मंडी, सौरव और साइना शर्मा और साथ है निवान शर्मा। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा की फरमाइश आई है। नर्मदा पार्क मंगलवेढ़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राविया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख। और अगले मैसेज को पहुँचाया है भावी निमगांव महाराष्ट्र से हैं श्रीराम गोंधली, उषा वैष्णवी, पूनम और युवराज गोंधली। भोकर महाराष्ट्र से श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं हरिभाव बिड़वे, श्रावण, अनीता बिड़वे। अगला व्हाट्सएप संदेश है मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद और प्रदीप येमेकर की ओर से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी नमारहरा दरवाज़ा एटा से हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, रसीद सुहेल हसन, अनम अब्बासी और यशफ अम्बासी अब्बासी। सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। अगले व्हाट्सएप संदेश को आप सभी ने भेजा है अजीता कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली, ज़िला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। दुर्गा कॉलोनी हांसी के श्रोता हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और साथ हैं बब्बू और डब्बू। मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से हैं जाकिर मुलानी, सुमैया सुबान, समीर, सलमा मुमताज, दिलशाद नसीर, बानुबी मुलानी और बादशाह मुलानी और साथ ही है पूरा मुलानी परिवार। बीड शहर महाराष्ट्र से हैं नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टउल और पी वी कुलथे। पाकुड़ झारखंड से फरमाइश आई है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु अर्णव और सत्यमानंद की आर से। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत और साथ हैं गुड्डी भगत। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी। झारखंड बड़ा बाम्बू सुपाई गांव साई गांव से देवेंद्र तांती, राकेश और प्रकाश तांती की फरमाइश पहुंची है। पूर्णा जंगल जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना और चेतन और सुलोचना भगत ने अपनी फरमाइश लिख भेजी है। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से हैं उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म अजनबी में कुमार सानू और सुनिधि चौहान की आवाज़ में गीत, समीर के बोल हैं और अनु मलिक का है संगीत।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अगले गीत को सुनने के लिए आप सभी ने हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है। करणवीर हाउस भूचो कैंचियां भटिंडा पंजाब से हैं। प्रेम सिंह जोड़ा मंजीत कौर करणवीर करण दीपेंद्र वरिंदर कुलदीप सिमू एकम दमन और अभिजोत मोहल्ला हलवाइयन शेरकोट जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से हैं। मोहम्मद वकार फरीदी इकबाल फरीदी सितारा बेगम नसरीन परवीन रोजी परवीन बिट्टू भैया साजदारानी और साथ हैं हिना कौसर। और अगला मैसेज है, अब देखिए जो नाम अभी पढ़े वो दूसरे नंबर से साथ ही साथ दूसरे नंबर से मैसेज आ रहा है। फुलगांव निज़ामाबाद तेलंगाना से हैं मोहम्मद वाहिद रुमानी मोहम्मद ज़मीर फसी जुनैद ज़ुबैर मुकरम नोमान मुकर फुरकान जाकिर फाजिल। और अगले व्हाट्सएप संदेश को पहुंचाया है चौहलदा बागपत से हैं संजय ढींगिया नमन और अपार ढींगिया। अगले फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज में हैं आप सभी श्रोता हमारे। अब देखिए उन्होंने फरमाइश तो लिख भेजी है मेरठ कैंट से हैं दिग्दर्शन और कविता। मालियान सरधना मेरठ से हैं अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन और साथ हैं मास्टर जिव्यम जैन। खांडवी बुढ़ाना से हैं दीपारी राम धाड़े और स्वराज राम धाड़े। नगर वड़ारी शिवाजी नगर वड़ारी देशमुख से राजेश खोबर खेड़े शिवसागर इंदिरा ताई और छकुली ताई खोबर खेड़े। थिलोरी दरियापुर से हैं सुनैना पवन भोंडे और तनुज पवन भोंडे। अगले व्हाट्सएप संदेश को हम तलक पहुँचाया है जेवरा हिसार से हैं वीरेंद्र भयाण शमशेर सुरेंद्र मनोज भयाण। और अगला संदेश है हमारे पास हमारे आप सभी श्रोताओं का गोंदर करनाल से हैं किरणपाल बुम्बक तेजपाल कृष्णपाल सुमन पूनम सोनिया रोशनी देवी और भगत सिंह बुम्बक। गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज पिंकी वंश और भुवेश कुमार काम्बोज। छोटा बाजार कुरुक्षेत्र थानेसर से हैं श्याम शर्मा मिली चिराग राघव तनुज पलक मास्टर उदेश शर्मा। और चकला बाजार समाना शहर पंजाब से हैं पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू महक खुशदिल सुनीता रानी जिंदल आरजू पप्पू खुशदिल हंसमुख लाल जिंदल बुलबुल शक्ति खुशदिल संजीव बंटी जिंदल और पूरा ही खुशदिल परिवार। ग्राम बेहरामपुर टेमा जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं तिलोक चंद्र वर्मा भागवत वर्मा अभिषेक सीमा डॉक्टर अमित वर्मा सचिन मास्टर समर राज आर्यन बेबी आरोही ऐशिका अंजलि श्वेता वर्मा। और गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन वीना मस्किन आशीष राजा चैतन्य मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचिता और केशु खुराना। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं मुकेश बाता नीलम बाता नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक और वंश बाता। अगला फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज हमें नज़र आ रहा है गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा के श्रोता हैं राजेंद्र कुमार मलकीत कौर आरती रानी राघव हरमन और उनके परिवार के सभी सदस्य। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से फरमाइश पहुंची है रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरु कीरत और गुरु शबद सिंह राहुल। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। मुगलपुरा बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से हैं विकास बंसोड़े रेखा आदिति और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश और प्रिया सरोदे। जिला करता फरमाइश करता है गांव कलाना भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं विक्रम कड़वासरा सचिन सतीश योगेश कड़वासरा और युद्धव कड़वासरा। और आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म ब्रह्मचारी का गीत आशा मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें। गीत को लिखा है असरत जयपुरी ने और संगीत है शंकर जयकिशन का।

अगले गीत के लिए फरमाइशी व्हाट्सएप संदेश भेजने वाले हैं हमारे आप सभी श्रोता। गांव जगोड़ी जिला यमुनानगर से हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजो, गौरव, परवीन, युगम, वीरेन और मनराज। जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बरबीर सिंह। कलानौर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ पर बड़ी महाराष्ट्र से फरमाइश पहुंची है रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा ही संघई परिवार की ओर से। अगला मैसेज है हमारे पास वडिंग खेड़ा पंजाब से है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गम्भरिया जमशेदपुर से रोहन और आर्य जयसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू और देवंती, बबूरी बाजार चंदौली से हैं विजय और सरोज, चकिया बाजार चंदौली से ही हैं सुंदर और सुमन जयसवाल। अगला फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार और भानुप्रिया की ओर से। दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत और सादिया। जय विहार नजफगढ़ से शाहरुख, फारूक, शबनम और शहनाज। अगला व्हाट्सएप संदेश हमारे पास है छोटी बलिया मुंबई करजत से हैं अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूलवाले, कॉपसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हैं आमना नसरीन बागवान, आसमा परी, राबिया मंताशा, आशु अहमद फूलवाले, लखमीनिया। जिला बेगूसराय से हैं शमीम अहमद, राइन अखलाक अहमद फूलवाले और समस्त फूलवाले परिवार। सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण और साथ हैं प्रतीक चौहान। अब देखिए यही नंबर दूसरे यही नाम जो है ये दूसरे नंबर से भी हमारे पास पहुंचे हुए हैं। एमएलवी रोड ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और एस के पप्पी खुराना। कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवाशहर से हैं सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित, रितेश, शिखा, प्रीतेशा संधू और मैक्स। अगला फरमाइशी व्हाट्सएप मैसेज है एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम का गुमला झारखंड से। पद्मपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। अगला व्हाट्सएप संदेश है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और निखिल कांगड़ा, तन्वी बोत और अंकित कांगड़ा की ओर से। और आप सबका ये मैसेज है एकता कॉलोनी रोहतक से। धनौरी तेलीवाला से है निसार सलमानी, नौशाद, बेबी आलिया और आयन बाबू। अगला व्हाट्सएप संदेश है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला, आसमा, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार। काटा रोड वाशी महाराष्ट्र से है मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा परिधि और मायरा सुरोशे। और आप सभी ने सुना चाहा है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार को फिल्म है बेताब। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अगले गीत के लिए हैं आप सभी ख्वाहिशमंद श्रोता। गांव खरकड़ा 24 से हैं गोलू कांगड़ा, सागर सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोत और तमन्ना कांगड़ा। अगला मैसेज है चौटाला हरियाणा से हैं दारा पंडित, संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा। सुधाकर गायकवाड़, विकास गायकवाड़, प्रीति गायकवाड़, दीपांजलि, दिशा बाघमारे, शशांक बाघमारे का मैसेज आया है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से। अगले ख्वाहिशमंद श्रोता हैं आप सभी जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े। जमशेदपुर झारखंड सुपाही साई गांव से हैं निशा कुमारी, रेशमा कुमारी और देवेन। मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से ये मैसेज हम पहले शामिल कर चुके हैं। गांव सिली कलां जिला यमुनानगर हरियाणा से हैं जय सिंह काम्बोज, विजयन सिंह काम्बोज, रिदम निश्चय सिंह काम्बोज और जयपाल धीमान। अगला व्हाट्सएप संदेश है हीरामणि वर्मा, पारसमणि और पुष्पेंद्र मणि वर्मा और साथ है नोखेलाल वर्मा, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं आप सभी। अगला मैसेज है सीतामणि बिहार से, नूरमेर महसौल से हैं मुसर्रत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरहत जहां, रिफत जहां, नुजरत नुजहत जहां, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी शेख नूरी नाज। नलेश्वर नवर ये मैसेज भी पहले जा चुका है। खारिया ढाणी सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया का मैसेज आया है। अनारकली बाजार जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी और जयपाल यादव। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश से उमंग, आकांक्षा और माही मलिक। भटिंडा रोड मंडी डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित लकी और तानिया नारंग। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से ये मैसेज भी पहले शामिल हो चुका है। कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा और साथ हैं सिटी दीवाना। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज और तिरुपति साहू। शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र के श्रोते हैं संतोष भाकरे, सुनयना, सुकन्या और सविता भाकरे। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबे राही महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं आप सभी। हीरा वाली फाजिल का पंजाब से मैसेज आया है सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा की ओर से। ये सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद और कुमार गौरव और साथ हैं आरव और अर्पिता, डाबकी रोड अकोला के हैं आप सभी श्रोता।

जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो का मैसेज आया है जनकपुरी सहारनपुर से। आर्य नगर कोहका भिलाई के श्रोता हैं उत्तम सिंह जंघेल, मौरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। और आप सभी ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म है अलग अलग। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात सुनिएगा अंग्रेजी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलुओं पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

0: सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका।